0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले. रेडिओ
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं. सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं,

0: सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है, अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा, होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत.
3: दादी भोळी माझी आई.
0: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रोते हो, कहते हैं हमारे मन में असीम शक्तियां हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में है. मन की शक्तियों को जगाए कैसे? मन जिसे दौड़ने वाले घोड़े की उपाधि दी गई है, इस पर लगाम लगाए कैसे? मन पर अधिकार जमाए कैसे? मन वही करे जो मैं आत्मा इसे आदेश दूं, पर यह होगा कैसे? मन है तो बहुत शक्तिशाली. मन का काम ही है विचार करना. हम मन को विचार करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में है मन विचार करता ही रहेगा. मन के विचारों को कम किया जा सकता है, इसे सकारात्मकता की ओर, अच्छे विचारों की ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके विचारों को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता. मन में कम से कम विचार हो और सिर्फ अच्छे यानी सकारात्मक विचार हो, तो समझ लेना हम मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्वस्थ हैं. लेकिन मन में बहुत ज्यादा निगेटिव विचार चल रहे हैं, तो समझ लेना मन रूपी घोड़ा गलत पटरी पर भाग रहा है. इस पर परमात्मा की श्रीमत रूपी लगाम कसकर इसे सही रास्ते पर, सकारात्मक रास्ते पर दौड़ाने की जरूरत है. जब मन रूपी घोड़ा सकारात्मक रास्ते पर दौड़ता है, तो इसके अंदर उठने वाले विचारों की संख्या भी कम होती है, जिससे हमारी आत्मा की शक्ति खर्च नहीं होती, बल्कि सकारात्मक अच्छे विचारों की वजह से यह शक्ति बढ़ती है. लेकिन जब मन रूपी घोड़ा नकारात्मकता के रास्ते पर दौड़ता है, तो विचारों की संख्या ज्यादा होती है और निगेटिव विचारों से आत्मा की शक्ति घटती है. निगेटिव विचार आखिर है क्या जिससे हमारी शक्ति घटती है? निगेटिव विचार वो है जो विकारों से जुड़े हैं. जब भी मन में काम वासना के विचार आते हैं, या क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत के विचार आते हैं, यह सब विचार हमें निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा के रास्ते पर दौड़ाते हैं, जिससे आत्मा कमजोर हो जाती है. जब मन पर चिंतन करने लगता है, पर दर्शन करने लगता है, लोगों के अवगुणों को देखने लगता है, तब मन रूपी घोड़ा नकारात्मकता के रास्ते पर भागता है. जब हम लोगों के गलत कर्मों की चर्चा करते हैं, तब हमारी बहुत सारी शक्ति वेस्ट होती है, जिससे हम कमजोर हो जाते हैं, आत्मा की शक्ति घटती है. कमजोर होने से हमसे भी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आत्मा जितनी ज्यादा कमजोर होगी, उतनी ज्यादा गलतियां करेगी. हमें ये एहसास भी नहीं होता कि परचिंतन, परदर्शन हमारे लिए कितना घातक है. ये हमें पल पल कमजोर कर रहा है। हम अपना कितना समय दूसरों के संस्कारों का, कर्मों का वर्णन करने में वेस्ट कर रहे हैं। दूसरों की गलतियां निकालते रहने से हम अपनी ऊर्जा को निगेटिविटी की ओर मोड़ देते हैं, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ निगेटिविटी के तरफ होगा, ऐसी आत्मा खुश कैसे रहेगी, शांत कैसे रहेगी। दिन भर लोगों के कर्मों का, संस्कारों का चिंतन करके हम सुखी नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते। मन तो गलत दिशा में भाग रहा है, उस रास्ते पर खुशी है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। खुशी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए तो मन रूपी घोड़े को लगाम लगाकर सकारात्मकता के रास्ते पर मोड़ना होगा, क्योंकि इन्हीं राहों पर खुशियां, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता की प्राप्ति होती है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, हमें ये तो समझ आ गया कि नकारात्मक अंधेरों से घिरा हुआ रास्ता कौन सा है और रोशनी से भरा हुआ सकारात्मकता का रास्ता कौन सा है। जब हम परदर्शन पर चिंतन छोड़ स्वचिंतन परमात्म चिंतन करते हैं, तब मन रूपी घोड़ा सकारात्मकता के रास्ते पर दौड़ने लगता है। इसी रास्तों पर वो असीम सुख शांति का अनुभव करता है। जब तक मन दूसरों को देखते रहेगा, तब तक कमजोर रहेगा, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा औरों के गलत कर्मों को देखने में खर्च हो रही है। लेकिन जब मन स्वयं को देखना शुरू करेगा, परमात्मा को देखना शुरू करेगा, तब उसमें शक्ति भरेगी। स्वचिंतन अर्थात आत्मा के सातों गुणों का चिंतन, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता। परमात्म चिंतन अर्थात परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, गुणों का चिंतन, परमात्मा के कर्तव्य का चिंतन, परमात्मा से हमारे संबंध का चिंतन। जैसे हम शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली आत्मा है, ऊर्जा है, उसी तरह आत्माओं के पिता परमात्मा भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो सभी में श्रेष्ठ है, परम है, इसीलिए हम उन्हें परम आत्मा कहकर बुलाते हैं। और वो सभी के पिता है, इसीलिए हम उन्हें परम पिता भी कहते हैं। जैसे हम आत्मा, प्रकाश पुंज, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का बिंदु है, उसी तरह हमारे पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का बिंदु, ज्योतिर्बिंदु है, इसीलिए तो हम उन्हें परम आत्मा कहते हैं। जब हम उस परमात्मा को निहारते हैं अपने मन बुद्धि की आंखों से, जो ज्ञान का सागर है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता का सागर है, उसके गुणों का चिंतन करते हैं, परमात्मा के कर्तव्य का चिंतन करते हैं। परमात्मा का कर्तव्य है सभी को विकारों से मुक्त करना, पतितों को पावन बनाना, सभी का कल्याण करना, हम सभी को दुखों से छुड़ाकर सुखों का रास्ता बताना, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, हमारी सद्गति करना, हमें पवित्र बनाने का कर्तव्य परमात्मा के अलावा कोई कर नहीं सकता। जन्मों जन्म काम वासना के दलदल में गोता खाकर आत्मा कमजोर हो गई है, ऐसे पतित आत्मा को पावन बनाने का कर्तव्य सिर्फ पतित पावन परमात्मा ही कर सकता है। कोई भी देहधारी मनुष्य पतित आत्माओं को पावन नहीं बना सकता, पतितों को पावन बनाने का सामर्थ्य केवल एक परमात्मा में ही है। जब मन स्वचिंतन परमात्म चिंतन करता है तब मन रूपी घोड़ा सकारात्मकता की पटरी पर दौड़ता है। हम क्या दूसरों के अवगुणों का चिंतन वर्णन करें, अभी तो हमारे अंदर ही कितनी कमियां खामियां हैं। दूसरों को ही देखते रहेंगे तो अपने अंदर की कमियों को कब मिटाएंगे? परदर्शन परचिंतन तब तक नहीं छूट सकता जब तक आप दूसरों को क्षमा न कर दो। जब आप क्षमा करना सीख जाते हो तब आध्यात्मिकता की पहली स्टेज पर चढ़ते हो। क्षमा भी हम तभी कर पाएंगे जब हमें कर्मों का ज्ञान होगा। बिना किसी हिसाब किताब के हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। हमने ही हिसाब किताब बनाए ना, हमें ही चुकतु करने हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं, हमारे कर्म ही हमें

प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, हमारा मन कौन से रास्ते पर है ये हमें हमारी भावनाओं के जरिए पता चलता है। नकारात्मकता के रास्ते पर होगा तो मन में नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, काम, मोह, अहंकार की भावनाएं उठेगी, और सकारात्मकता की राह पर होगा तो मन में क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, सुख, शांति, आनंद, सद्भावना, शुभ भावनाएं उठेगी। रास्तों का पता तो चल गया, लेकिन जो मन कई जन्मों से निगेटिविटी के रास्तों पर दौड़ रहा है उसे लगाम लगाएं कैसे, यह प्रश्न है। उसे निगेटिव सोचने से रोके कैसे, सकारात्मकता की तरफ मोड़े कैसे। मन का लगाम है क्या? परमात्मा कहते हैं मन का लगाम है श्रीमत। श्रीमत यानी जो मत परमात्मा द्वारा प्राप्त होती है वही मन का लगाम है। श्रीमत मिलेगी ज्ञान को रोज स्टडी करने से। ज्ञान से ही परमात्मा मन हमें प्राप्त होती है। ज्ञान अर्थात कथाएं, कहानियां सुनना सुनाना नहीं है। ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, विश्व ड्रामा का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, परमात्मा द्वारा प्राप्त सच्चा गीता ज्ञान। इसके अभ्यास से ही हमें परमात्मा श्रीमत पता चलती है, और यही है मन रूपी घोड़े का लगाम। परमात्मा कहते हैं जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, और जो होगा वो भी सही होगा कर्मों के हिसाब किताब अनुसार। परमात्मा कहते हैं हम परिस्थिति में कल्याण समाया हुआ है। अभी हमें अगर कल्याण नजर भी नहीं आ रहा तो भी अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण समाया है। हर परिस्थिति में कल्याण है। अगर आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो तो आपको वो मिलेगा जो आपके लिए सही होगा, जिसमें आपका कल्याण समाया होगा। मन का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो परमात्मा के मन का होगा और उसमें आपका कल्याण ही होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। पायलट बनने के लिए उन्होंने अपने बहन के कंगन बेच दिए, लेकिन पायलट के इंटरव्यू में वे फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए। उनके मन में ख्याल आया कि अब वापस कैसे जाऊं, बहन के कंगन बेचकर यहां तक आया लेकिन रिजेक्ट हो गया। उनके मन में आत्महत्या का भी ख्याल आया, लेकिन उसी समय स्वामी शिवानंद ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा अपनी असफलताओं पर विलाप करना बंद करो, यह स्वीकार करो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर और बड़ा सोच रखा है। अपनी नियति को खोजो और आगे बढ़ो। नियति पूर्व निर्धारित है। इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने कलाम साहब की दिशा बदल दी। उन्होंने अपनी हताशा को त्याग दिया। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से जुड़ गए। इसके बाद वे भारत के महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन बने। हमारा भविष्य पूर्व निर्धारित यानी पहले से ही तय है। इसे हमने ही तय किया है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से, फिर चिंता किस बात की। परमात्मा ने इस विश्व ड्रामा को कल्याणकारी भव का वरदान दिया है। जो होगा कल्याण ही होगा। दुख भी आया तो यही सोचना है पूर्व जन्मों से चले आ रहे हिसाब किताब चुक्त हो रहे हैं, बोझ खत्म हो रहे हैं, फिर दुखी क्यों होना।
बोझ उतर रहा है तो अच्छी बात है। भगवान साथ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुते हो, आध्यात्मिकता के राहों पर जब हमें परमात्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तब मन में विचार सागर मंथन चलता है। कई जन्मों के आसुरी संस्कारों को और ज्ञान से जन्मे दैवी संस्कारों के बीच मंथन चलता है। कभी आसुरी संस्कारों, विकारी संस्कारों के तरफ मन का खिंचाव होता है तो कभी दैवी संस्कार, जो ज्ञान से जागृत हुए हैं, उनकी ओर मन का खिंचाव होता है। और इस तरह मन के समंदर में आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच विचार सागर मंथन होता है। जब मन आसुरी विकारी संस्कारों की ओर मुड़ता है तब इस विचार सागर मंथन से जहर निकलता है। ऐसा जहर जिसे नष्ट करने की ताकत सिवाय परमात्मा शिव के अलावा किसी में नहीं है। परमात्मा शिव कहते हैं, बच्चे जब जब मन में ये आसुरी भावनाओं का जहर निकलेगा तब तब ये भावनाएं, ये जहर मुझे अर्पण कर दो, मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। इसीलिए हम परमात्मा शिव पर धोतरे का फूल भी चढ़ाते हैं। धोतरे का फूल हमारे अंदर उठने वाले नकारात्मक भावनाओं के जहर का प्रतीक है, जो शिव के अलावा कोई और स्वीकार कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो हम शिव को भोलानाथ कहते हैं, जो हमारे अंदर के कमी कमजोरियों को स्वीकार कर हमें जहर से मुक्त करता है। जब मन दैवी संस्कारों के ओर मुड़ता है तब विचार सागर मंथन से अमृत निकलता है। जब इस विचार सागर मंथन से अमृत निकलता है तब मेरा भोलानाथ शिव ये अमृत हमें पिलाकर हमारे अंदर के देवत्व को जगाते हैं। कितना भोला है मेरा परमात्मा, हमारे अंदर के जहर को स्वयं स्वीकार करता है और अमृत हमें पिलाता है। ज्ञान के विचार सागर मंथन से अनेक रत्न निकलते हैं। ये ज्ञान के रत्न हैं जिसे धारण करने से हम पद्मा पदम भाग्यवान बनते हैं। इस सागर मंथन से कामधेनु गाय निकलती है, अर्थात हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होकर हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, अर्थात अब कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती, इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस विचार सागर मंथन से उच्चे श्रवा घोड़ा अर्थात सात मुख वाला सफेद रंग का जादुई घोड़ा प्राप्त होता है। इसका वास्तविक अर्थ है इस मंथन से हम आत्मा के अंदर के 7 गुण ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, आनंद, पवित्रता को जागृत करते हैं। विचार सागर मंथन से हमें ऐरावत हाथी भी प्राप्त होता है, अर्थात सतयुगी स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त होता है। इस मंथन से कौस्तुभ मणि भी प्राप्त होता है, अर्थात कौस्तुभ मणि माना एक अत्यंत बेशकीमती और चमकीला रत्न जिसे विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। इसका वास्तविक अर्थ है, जब ज्ञान चिंतन से हमारी आत्मा एक बेदाग मणि बन जाती है, तब हम विष्णु के गले की माला बनते हैं, अर्थात सतयुग में विष्णुपुरी में जन्म लेते हैं। सागर मंथन से कल्प वृक्ष की भी प्राप्ति होती है, अर्थात सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले हम कल्प वृक्ष समान बन जाते हैं। सागर

मंथन से अप्सरा निकली ऐसा दिखाया गया है। इसी का अर्थ है, जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, तब हम स्वर्ग की परियों के समान बन जाते हैं। सागर मंथन से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है, ज्ञान विचार सागर मंथन से हमें सौभाग्य धन की प्राप्ति होती है। जिसके पास ज्ञान रत्न होंगे, उसके पास स्थूल धन आपे ही आ जाएगा। सागर मंथन से चंद्रमा निकला, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसका अर्थ है, जब हम ज्ञान से चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएंगे, तब हम परमात्मा के मस्तक में मस्तक मणि की तरह चमकेंगे। सागर मंथन से परिजात वृक्ष निकला है, अर्थात बहुत ही सुगंधित और कभी न मुरझाने वाला दिव्य फूल। इसका वास्तविक अर्थ है, जब हम रोज ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, तब हमारे अंदर दिव्य गुणों के फूल मुस्काएंगे और हम कभी भी परिस्थितियों से मुरझाएंगे नहीं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि रोज हम ज्ञान सुने, उसका मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें। सागर मंथन से पांचजन्य शंख निकला, अर्थात विष्णु का दिव्य और पवित्र शंख, जो युद्ध और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसका वास्तविक अर्थ है, ज्ञान के मंथन से हमें जीवन के हर युद्ध में, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होती है। जब जब हम ज्ञान को याद करेंगे, ज्ञान का शंख बजाएंगे, अर्थात जीवन के परिस्थितियों में ज्ञान को यूज करेंगे, तब तब हमारी विजय होगी। सागर मंथन से धन्वंतरी वैद्य की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है, ज्ञान के मंथन से मन नकारात्मक विचार भावनाओं से मुक्त होने के कारण हमें शारीरिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। सागर मंथन से अमृत निकलता है, अर्थात ज्ञान मंथन से हमें सतयुगी अमरलोक के वासी बनने का अमृतत्व का वरदान मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सतयुग में किसी की मृत्यु नहीं होगी। नहीं, मृत्यु तो होगी, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होगी। दीर्घायुष्य मिलेगा, मृत्यु का दुख नहीं होगा, अल्पायु नहीं होगी। स्व के प्रति और परमात्मा के प्रति विचार सागर मंथन करने से खुशी शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान मंथन से मन शीतल हो जाता है, मन का दिव्य परिवर्तन होता है। मन में उठने वाले व्यर्थ विचारों को सकारात्मक और श्रेष्ठ विचारों में बदलना ही असली मंथन है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। पति पत्नी के प्यारे से मीठे से उस रिश्ते को हम तलाश रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा आ गया है कि आज वो मिठास कड़वाहट में बदलती जा रही है, इतनी दरारें क्यों पड़ गई हैं। और इन रिश्तों में हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं ओनरशिप हमें खुद लेनी पड़ेगी, चाहे वो रिश्ता किसी दूसरी आत्मा के साथ है लेकिन वो मुझसे होकर गुजरता है, इसीलिए दायित्व मेरा हो जाता है कि उस रिश्ते को मैं क्या मोड़ दे रही हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को थोड़ा और छानते हैं, खंगालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, उस रिश्ते को हम देख रहे हैं अब, जो कि कहा जाए कि नींव है, हर घर की नींव होती है या समाज की नींव भी मानी जाती है, एक गृहस्थ जीवन, एक पति पत्नी का जीवन, और वही आज कहीं क्वेश्चन मार्क पर है। आज तो वक्त ये आ गया कि लोग कहने लग गए हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज ऑब्सोलीट, इट शुड बी फिनिश्ड, लेकिन अभी भी धुरी वही है, पहली सीढ़ी उसे ही माना जाता है। इवन सक्सेस का भी या सफलता की भी बात करते हैं, उसे हमने कई रूपों में देखा, कई तरह से देखा कि किस तरह से रिस्पेक्ट को हम अलग तरीके परिपेक्ष में देख रहे हैं। और हमने पिछली बार बात की थी कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन को एक बार थोड़ा सा और हम छूना चाहेंगे, क्योंकि हमने पिछले कड़ी में उसको काफी उस पर बात की थी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जहां हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें हर बार शायद हम अपनी आवाज को ही सुनना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन?
1: इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दूसरे की बात को सुनना इस भाव से कि दूसरा भी सही कह रहा है,
0: अपने परिपेक्ष में
1: अपना थिंकिंग पहले बिल्कुल रेडी कीजिए, अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए फॉर दैट कम्युनिकेशन, और फिर उसी पर्सपेक्टिव से सुनिए कि वो अपने पर्सपेक्टिव से राइट कह रहे हैं, तो उस भाव से उस बात को पूरा सुनना। और कभी भी कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं ना ब्रेकडाउन, वो कभी नहीं होना चाहिए। घरों में कई बार होता है आर्ग्यूमेंट हो गई, डिस्कशन हो गई, झगड़ा भी हो गया शायद, फिर उसके बाद बोलचाल बंद हो जाती है। अब किसी के घर में कुछ घंटों तक बंद रहती है, लेकिन कई परिवारों में ऐसा पाया जाता है स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कि कई दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती है, मतलब बिल्कुल बोलचाल नहीं है। एंड इसमें क्या हो रहा है कि ईच इज वेटिंग कि दूसरा आकर पहले बात करेगा, क्योंकि दोनों यही सोचते हैं कि दूसरे की गलती है, तो जिसकी गलती थी उसी को तो आकर बात करनी चाहिए, तो दोनों वेट करते रहते हैं। एंड इस प्रोसेस में कई दिन, कई बार एक एक महीना, तो जैसे ही बात हुई, डिस्कशन हुई, भले बड़ा से बड़ा आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन इट्स फाइन, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू, वी हैव टू, योर इट इज अ हैव टू, बिकॉज इफ यू वांट टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, हैव टू,
0: एंड वी वांट टू आल्सो,
1: या इवन इफ, आई मीन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इवन इफ यू डोंट वांट टू, लेकिन अगर आपके परिवार के लिए वो ही हेल्दी है, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन होता है ये हमारे आपस के रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट करता है और बच्चों पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि इतने दिन तक बात नहीं करना ये बहुत अनहेल्दी,
0: वेरी डिफिकल्ट, बहुत स्ट्रेनुअस भी हो जाता है, पूरा माहौल इतना स्ट्रेनुअस रहता है कि आप भागते हैं।
1: और इसमें कई बार ये भी हो जाता है कि पहले कौन बात करेगा, और इस प्रोसेस में एक्चुअली इतने

0: गुजर जाते हैं. तो आई थिंक इन दिस ब्यूटिफुल क्लोज रिलेशनशिप हमें वेट नहीं करना चाहिए कि दूसरा बात करे, मेरी गलती थी या सामने वाले की गलती थी. हाउ डज इट मैटर, दिस इज नॉट ऑफिस. इवन ऑफिस में अभी हमें इस तरह की चीजों पर नहीं वेट करना चाहिए, लेकिन ये तो परिवार है हमारा.
1: और जितनी हम देर करते जाएंगे उतनी रिजेंटमेंट बढ़ते जाती है, और कहानी अपने अंदर हम कुछ ना कुछ
0: और उतनी नेगेटिव एनर्जी हम एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं. हार्मनी इन रिलेशनशिप हम कहते हैं, हार्मनी यू नो इसको हम लोग बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि मैंने हार मानी, कोई बात नहीं. हार मानी, जहां एक ने हार मानी तो रिलेशनशिप्स में वो हार्मनी हो जाएगी, नहीं तो.
1: लेकिन अगेन हार मानना यहीं से पड़ेगा. ये एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, एक बार अगर टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता, अगर गांठ पड़ जाए तो वो गांठ ही पड़ती है. लेकिन हर बार हम ये कहते हैं कि रॉन्ग बिलीफ पे हम अपना जो है थॉट क्रिएट करते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू बिलीव इन दैट?
0: जस्ट वन थॉट अवे आपका वो धागा खुलना, जस्ट वन थॉट अवे. इनफैक्ट हमें किसी का फोन भी आया और उन्होंने यही एपिसोड्स देखकर और कहा कि हमारी तो इतने साल से रिश्ता खराब है, यू नो बिल्कुल ही हम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल अब वापस आना. वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि कितना इजी है वापस वो नजदीकी लाना, क्योंकि वो हमें दूसरे को नहीं परिवर्तन करना ना. तो वन थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे, बट यू हैव टू डू इट एंड सी इट. इस पर अगर हम सोचते रहेंगे कि कैसे नहीं हो सकता, इतनी बिटरनेस थी, इतनी दूरियां थी, कैसे हो सकता है, नहीं. वन थॉट एंड इट्स डन, एब्सोल्युटली.
1: अगेन वही एक थॉट, एक माइंडसेट का शिफ्ट जो है
0: अभी तक हम उनको गलत समझ रहे हैं. सामने वाले व्यक्ति को गलत समझ रहे हैं, बस वो गलत को सही आप जब कर लेंगे और इंटरनली कन्विंस होकर ऊपर से बोलने के लिए कि नहीं वो अपने दृष्टिकोण से सही थे, आपका धागा बिल्कुल सुलझ जाएगा, वो गांठ खत्म हो जाएगी. क्योंकि जब आपको लगा ये सही थे तो फिर आपके अगेंस्ट कोई, मेरे अंदर मन में कोई हैवीनेस नहीं आ सकती है. And everything is sorted out.
1: That's beautiful. But आप समझ लेंगे, सामने वाला समझेगा या नहीं?
0: No, only one person needs to do it first. अगर हम वेट करते रहेंगे कि दूसरा भी कब करे, चलो मैं तो कर लूं, लेकिन वो तो नहीं करेंगे. एक ने ही करना है, दूसरा तो वैसे ही रेडी बैठा है. एक्चुअली दोनों रेडी बैठे होते हैं, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स अ गुड रिलेशनशिप, लेकिन वो ये कौन पहले करे. और हर एक ये सोच रहा है कि मैं करूं तो पता नहीं वो रेडी हो या नहीं. तो एक जना करके देखो, आप करें, दूसरा रेडी बैठा है, जस्ट वेटिंग टू कम फॉरवर्ड. जस्ट मूव योर हैंड फॉरवर्ड एंड आपको वो दूसरा हाथ वहां से आता हुआ दिखाई देगा.
1: बिल्कुल शिवानी, आज के इस दौर की जो बात हम कर रहे हैं कि जब घर से बाहर हम ज्यादा वक्त गुजार रहे होते हैं या कहीं ना कहीं वहां बाहर रिलेशनशिप ज्यादा आसान लग जाता है क्योंकि वहां इतना बोझिल हो चुका होता है, तो ये सबसे ज्यादा देखा गया है जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दिया जा रहा है. समाज के हर एस्पेक्ट में हमें वो नजर आ रहा है. एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना ज्यादा है, ये क्यों इतना सहज हो गया है, हमने सारे आदर्श सारी मान्यताएं क्यों ताक पर रख दी. और दूसरी बात ये कि वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसे कभी भी मैरिज में कन्वर्ट करने वाली बात नहीं आती है. It has to be retained. Marriage is being retained. क्यों हम इतने हो गए हैं कि दो चेहरे उड़कर ही हम रहना चाहते हैं? क्या हम इतने कहीं depleted हैं?
0: हाँ, एक तो आत्माएं हम बहुत कमजोर हो गई हैं वर्तमान समय. और क्यों हमारा झुकाव दूसरी तरफ बाहर जा रहा है? क्योंकि हमने एक इमेज बनाई है. See, we said every relationship, हम अपनी कॉन्शियसनेस में एक इमेज क्रिएट करते हैं. तो फॉर अ हस्बैंड और फॉर अ वाइफ स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके माइंड में एक इमेज है कि मेरी वाइफ इस तरह से होनी चाहिए और दिया दो बिराउंड. अब व्यक्ति कोई और उसमें होंगे प्लस एंड माइनस, तो कुछ चीजें आप एक्सेप्ट तो कर लेते हैं एंड आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, चल रही है ठीक से, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी उनको चेंज करके अपने इमेज की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा उतना ज्यादा रेडी नहीं है चेंज होने के लिए. अब कहीं ना कहीं चलते हुए अगर आपको कोई मिल जाता है जो आपकी इमेज के साथ ज्यादा मैच करता है,
1: पूरा वो भी नहीं करेगा,
0: पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कोई एक मिल जाए ऐसे व्यक्ति बाहर जो आपकी इमेज से मैच करता है, तो देन यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, यू नो, बिकॉज अच्छा ये था मेरे माइंड में एक्चुअली. This is how my wife should be, or this is how my husband should be. And तब थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस की जो इमेज है उसके साथ वो हो रहा है। हम ज्यादातर चाहते हैं कि हमें ये सारे रिलेशनशिप हो भी रहा है क्यों कॉम्प्लिकेटेड, हम लोगों से खुशी चाहते हैं, हम लोगों से प्यार चाहते हैं। हमने पहले ही देखा कि आत्माएं सारी बहुत कमजोर हो चुकी हैं। सबसे पहले ये बिलीफ सिस्टम चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें किसी और से खुशी मिलती है या खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है। नाउ द हस्बैंड वांट्स हैप्पीनेस फ्रॉम द वाइफ, ही डजंट रियलाइज कि हैप्पीनेस इज माय ओन क्रिएशन, आई कैन क्रिएट इट। अब अगर वाइफ से नहीं मिली वो हैप्पीनेस, इट मीन्स स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप, वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन किसी और से मिलने से शायद वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट कर पा रहे हैं, और उनका बिलीफ ये बन रहा है कि मुझे इनसे खुशी मिल रही है, मिल उनसे भी नहीं रही है। ये सिर्फ ये है कि मैं उस व्यक्ति से मिलने से अपने अंदर वो खुशी क्रिएट कर पा रहा हूँ, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग इट एंड आई कुड हैव क्रिएटेड इट इवन हियर, but I'm creating it there, and then I start thinking that I'm getting it from that person. And तब हम कहते हैं जो मुझे आपसे नहीं मिला
1: वो वहां से मिल रहा
0: है, वो वहां से मिल रहा है,
1: मिला एक्चुअली अपने आप से ही,
0: मिला अपने आप से,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड हो गया कि मेरी इमेज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो मुझे मिल गया।
0: Right. तो मिला अपने आप से है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है। मैं अगर इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहूँ तो मैं इसमें रहकर भी उसको क्रिएट कर सकता हूँ, बट अगेन देन आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ माय मैकेनिज्म वर्क्स। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, एक तो आपका रिलेशनशिप चूज करके हुआ, इट्स आउट ऑफ चॉइस, एंड सम रिलेशनशिप्स विच आर नॉट विद चॉइस। अब ये जो मैरिज का रिलेशनशिप है ये तो ऑलरेडी बन चुका है ना, उसके बाद आगे परिवार भी है, तो ये रिलेशनशिप को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं यू गॉट अ चॉइस टू ऑल्सो स्पेंड मोर टाइम विद समबडी एल्स, तो आपने वो भी करना शुरू कर दिया। एंड इट स्टार्ट्स विद जस्ट यू नो यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद अनदर पर्सन, क्यों, क्योंकि शायद आप अपनी वो वाली, अगेन दिस इज कमिंग बिकॉज घर पे लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है। अगर मैं आपसे अपनी कोई बात शेयर करना चाहता हूँ लेकिन पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे कोई और चाहिए जिससे मैं वो शेयर करूँ, सोचते हैं कि मुझे कोई और चाहिए, तो फिर हम किसी और से शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरे को तो डजंट हैव टू स्पेंड द लाइफ विद मी, तो वो हमें एक्सेप्ट करता रहता है, करता जाता है, करता जाता है, और जो हमें एक्सेप्ट करेगा ये नॉर्मल है, आत्मा का संस्कार, ये जो हमें एक्सेप्ट करेगा हम उसकी तरफ ड्रॉन होते हुए चले जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी फील एक्सेप्टेंस इज द फंडामेंटल ऑफ एवरी रिलेशनशिप। अगर आप घर के अंदर, इवन जो आपने कहा था ना पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चे फ्रेंड्स की तरफ क्यों चले जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है, पेरेंट्स से नहीं मिलता है। अगर पेरेंट्स से मिले फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो बॉन्डिंग होगी ये कभी नहीं टूटेगी। सेम विद द हस्बैंड वाइफ, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, किसी और से वो एक्सेप्टेंस मिल रहा, अपने आप झुकाव हो जाएगा, फिर आप अपनी हर बात वहां शेयर करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहां होगा, और जहां वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुआ तो घर वाला जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा कमजोर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। बट इसमें भी बहुत इजी है ऑपोजिट पर्सन के लिए, अगर आप चाहें तो आप अपने रिलेशनशिप को फिर से जोड़ सकते हैं। डू नॉट गिव अप, क्योंकि ये जो जुड़ता है बाहर रिलेशनशिप, ये बहुत एक मोमेंट्री रिलेशनशिप है, ये सिर्फ इसको एक, ये फ्रेंडशिप है, ये एक फ्रेंडशिप है एंड इट्स फाइन। ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, अगर इसको हम वो राइट फाउंडेशन पे ले आएंगे तो वो एक फ्रेंडशिप ही रहेगी, और फ्रेंडशिप इज फाइन, दिस विल ऑल गेट बेटर। हम ज्यादातर डिस्टर्ब इस चीज से हो जाते हैं कि हम उस रिश्ते को कैसे तोड़े, हम ये नहीं समझते हम इस रिश्ते को कैसे जोड़े,
1: जो ये पुराना रिश्ता था, जो रिश्ता था ऑलरेडी, जो एक्चुअल में रिश्ता है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसको जिया होता है और एक पूरा परिवार खड़ा किया है, सो दैट इज माय स्ट्रांग बॉन्डिंग एक्चुअली।
0: राइट, बट व्हेन वी कम टू नो कि ईदर माय हस्बैंड और वाइफ इज हैविंग अ रिलेशनशिप आउटसाइड, माय ऑल माय एनर्जी, फर्स्ट आई हेट द पर्सन, सेकंड आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, यू नो आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, तो आप एक क्रिमिनल हैं, आपने ये गलत किया, तीसरा पूरा थिंकिंग

0: only focus on jo hai fine, isko kaise joda jaye. We'll have to understand ke jab hame hamesha lagta hai ki unki galti thi, isiliye they are having this relationship. I have to remember that if my husband or wife goes into a relationship, problem is here. क्यों गया व्यक्ति घर की तरफ छोड़कर दूसरी तरफ क्यों जाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ वो बॉन्डिंग नहीं थी ना. बॉन्ड एक ही जगह जुड़ेगा. अगर यहाँ जुड़ा हुआ होता ठीक से, फिर तो दूसरी तरफ ना जाता. तो ये बॉन्डिंग को क्यों ना स्ट्रॉन्ग कर ले. अगर कुछ हुआ है, द पर्सन हैज गॉन एंड हैड अनदर फ्रेंडशिप आउटसाइड, नो प्रॉब्लम. हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए दे फाउंड द नीड टू टॉक टू समबडी एल्स. कैन आई हील दिस बैक? And now, what is needed is instead of nafrat dena, itni, you know, upset hokar wo negative energy throw karna, aapko bilkul opposite dena padega. Kyunki aap wo bond ko, if you want it to work. Again, isme aapke paas do choice hai. Ya to aap jo rishta thoda sa bana hua hai, usko puri tarah se tod de. But agar jodna chahe, to easy hai. Bahut easy hai. Lekin andar se bahut clean ye thought chahiye. एकदम क्लीन विदाउट एनी बिटरनेस के इट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग, नाउ आई विल क्रिएट इट. मैं शायद उतना वो रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं दे पाई, तो अब वो एनर्जी देना. लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम उस टाइम इतनी नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर कि वो रिलेशनशिप और दूर हो जाता है. तो हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा, एक चीज कमजोर है, एक कड़ी कमजोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको और ही क्यों खींच रहे हैं? उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो उसको डालो. एनीवन ट्राइज दिस, इट विल वर्क.
1: लेकिन वो व्यक्ति जो किसी और रिलेशनशिप में है, वो वापस कैसे आएगा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है वहाँ.
0: मेरा थॉट ही ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसे टूटेगा. सी, अपनी एनर्जी को हम एक ही जगह लगा सकते हैं. अगर हम अपनी एनर्जी को इस एंगल पर लगाएं कि वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो वापस कैसे आएंगे, नो. मुझे क्या देना है, आप देते जाइए, वो खिंचकर वापस आ जाएंगे. क्योंकि इट्स अ लॉ कि जहां वो पॉजिटिव एनर्जी, जहां वो प्यार जाएगा, वो आत्मा वापस खींची हुई आ जाएगी. इट इज डेफिनेट. लेकिन इट हैज टू बी वेरी क्लीन एंड वेरी प्योर एंड वेरी पॉजिटिव. ये जो विच इज लिटिल प्रैक्टिस, ये चाहिए डेफिनेटली कि आप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहिए कि आपके अंदर बिल्कुल बिटरनेस नहीं हो, आपके अंदर ये थॉट नहीं हो कि पाप कर दिया है, यू नो, ऐसा कुछ कर दिया है. आपकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे. रिस्पेक्ट थी कि आई थिंक आई लाइक दिस पर्सन एज द पर्सन इज, वो इंटैक्ट रहे. गिव सो मच लव, जस्ट वेट एंड सी, मैजिक विल हैपन. नॉर्मली बहुत लोग वापस घर की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी श्योर कि उनको घर पे वो वायुमंडल वैसा मिलेगा, परिवार से वो एक्सेप्टेंस मिलेगी. क्योंकि नॉर्मली घर में सारे लोग उनकी तरफ इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जैसे कि पता नहीं क्या करके आए हैं. तो वो दृष्टिकोण इतनी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ फेंकता है कि वो उस घर से पास आने की बजाय और दूर हो जाते हैं. तो घर का वातावरण इतना वेलकमिंग हो कि कुछ भी नहीं हुआ है, यू आर फैमिली एंड वी आर फैमिली एंड एवरीथिंग इज फाइन, दैट पर्सन विल वॉन्ट टू कम बैक होम
1: डेफिनेटली. यू नो, टू एक्सेप्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इवन इफ यू एक्सेप्ट
0: वन थॉट अवे, one thought away to accept, kuch nahi hai,
1: it will happen again.
0: These are questions. I want to make this relationship work. Mujhe, I want to make this relationship work and I will accept. Jaise hum sara din mein choti moti bahut sari galtiyan karte hain, ek galti aur ho gayi thi, that's all. But I want to make this relationship work. I'll be waiting, absolutely. And uske baad जब वो व्यक्ति वापस घर की तरफ आ जाते हैं, इट शुड बी वेरी पॉजिटिव. ये नहीं, यू नो, कई बार हमने देखा कि द वाइफ फॉरगिव्स द हस्बैंड, लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि यू नो, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है आपके ऊपर, आपको फॉरगिव करके. नो, एंड देन शी कीप ऑन रबिंग इट इन, यू नो, बार बार रब इन करेंगे कि नहीं, आपको, आपने ये किया था, आपने ये किया
1: था. फॉरगेट तो नहीं हुआ. हाँ,
0: तो बार बार याद दिलाने की कोशिश करेगी कि मैं क्यों ट्रस्ट करूं, मैं क्यों ट्रस्ट करूं, आपने तो. सो दैट इज डैमेजिंग. आप जोड़ रहे हैं एक

0: रिश्ते को, एक्चुअली उस इंसिडेंट को उसके बाद थॉट में भी आना नहीं चाहिए, बिकॉज
1: लेकिन वो विक्टिम बनने का जो हमारा
0: वो हम अपना काम निकलवाने के लिए करते हैं. इफ आई वॉन्ट टू गेट यू नो थिंग्स माई वे, तो मुझे दूसरे को नीचे गिराना पड़ता है ना, तब तो मेरी सुप्रीमेसी हो जाती है उसके ऊपर. तो जैसे ही दूसरे की गलती दिखाकर दूसरे को नीचे किया, तो मेरी बात मानी जाती है. तो आई यूज इट एज अ वेपन विच इज वेरी हार्मफुल.
1: And in fact, it's much more important not to remember, but it's the most difficult part. But again, when you said about healing, you know, meditation is the only process we know which actually can heal. Because I think somewhere the person who has been waiting needs to heal more.
0: Absolutely.
1: You know, she has to be, or he, whoever, needs to be much, much more stronger themselves.
0: तो उन्हें ये जब रियलाइज हो जाएगा ना कि इट्स ओके, इट्स अगेन अ कार्मिक अकाउंट विच पुल्ड, एक कार्मिक अकाउंट ही था जो अपनी तरफ खींच के ले गया, वापस आ गए हैं. और जितना हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपनी शक्तियों को फिर से बढ़ाएंगे, तो जो चीज लगती बहुत मुश्किल है, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती नहीं है. हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये साउंड कर रही होंगी शायद कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, और ये एक्चुअली डिस्कस करने जैसी भी बात नहीं है, इसको बस कर दीजिए. They are so simple when you start doing it. करना बहुत मुश्किल नहीं होता, यहाँ स्वीकार कर लेना सिर्फ मुश्किल होता है.
1: सिस्टर शिवानी, बात वही आती है कि जब कोई भी बाहर से किसी रिश्ते से लौटता है, तो क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं उसे स्वीकारने को?
0: Do we have a choice? I have to ask myself that. That's what. मुझे अपने आप के साथ कैसे फील करना है, और मैं इस रिलेशनशिप को या इस रिलेशनशिप में कितना और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, दैट पर्सनल डिसीजन आई विल टेक. फॉरगिविंग और नॉट फॉरगिविंग इज नॉट समथिंग वेरी बिग आई एम डूइंग. बात सिर्फ ये है कि इफ आई से आई एम फॉरगिविंग, तो सबसे पहले मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपकी की हुई किसी बात को जो मुझे तकलीफ देती है, अगर मैं उसको होल्ड बैक करके रखती हूँ, तो मेरा वो मनन उस पर चलता रहता है, तो वो मुझे तकलीफ देती है. और अगर मैं उसको लेट गो कर सकती हूँ कि ठीक है, मेरे लिए ये एपिसोड एक था जो कि फिनिश हो गया, नाउ आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, इट्स ओवर, तो मैं अपने आप को हल्का कर सकती हूँ. तो इट्स मोर अबाउट मैं अपने आप को कितना पेन देना चाहती हूँ. सो इट्स फॉरगिविंग बेसिकली, व्हेनेवर वी फॉरगिव समबडी एल्स फॉर द बिगेस्ट थिंग दैट दे हैव डन, इट्स फॉरगिविंग माय सेल्फ. Because when I say I've forgiven you, means I have just taken it out from here. And थोड़ी देर रोज अपने आप को empower करने के लिए समय निकालें. और ये बहुत ज्यादा expect नहीं करें कि जो व्यक्ति वापस घर आया है वो बहुत ज्यादा आपके लिए कुछ कर सकेगा उसमें, क्योंकि वो खुद बहुत दर्द से गुजर रहा है. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, क्योंकि यहाँ गिल्ट है, फिर यहाँ लग रहा है कि सब लोग सोच रहे होंगे मैं गलत करके आया हूँ, फिर एक जो बाहर एक अटैचमेंट हो गई थी, तो अटैचमेंट से किनारा करके आए हैं,
1: तो वहां का
0: वो दर्द है, फिर उस रिश्ते को ठुकरा दिया, वो गिल्ट है, सो मेनी थिंग्स. एंड प्लस अपने अंदर कॉन्शियसनेस कि राइट किया या रॉन्ग किया, किसके साथ राइट किया, इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट पर्सन. अब उसको क्या चाहिए? सो मच हीलिंग पावर. उससे उस हालत में हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये कुछ तो करे, इतनी गलती करके वापस घर आए, ये इस रिश्ते को जोड़े. नहीं, वो उस हालत में नहीं है, वो बिल्कुल जैसे डिस्चार्ज टोटली गिरे हुए हैं यहाँ पे मेंटली. सो मच हीलिंग इज नीडेड. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. यस, वी आर इन लॉट ऑफ पेन, बट द पर्सन हु हैज कम बैक इज इन मच मच मच मोर पेन, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज्यादा और फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं. तो ही नीड्स लॉट ऑफ, ही और शी needs lot of love and healing. तो उसके लिए हमें खुद को empower करना पड़ेगा.
1: Meditation
0: उसमें बहुत मदद करेगी.
1: Meditation की technique एक बार फिर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा एक और सवाल कि जब हम इस बाहर कहीं pull है, attraction है, जैसे कि आपने अभी कहा कि उस रिश्ते में भी जब हम जा रहे होते हैं, जैसे आप वापस लौटे हैं तब भी guilt है, जब जा रहे होते हैं, जब वो pull है, तभी तो कहीं ना कहीं हमें मालूम होता है
0: गिल्ट है,
1: कुछ गलत करने जा रहे हैं.
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली पता है कि हम गलत करने जा रहे हैं. लेकिन वही है ना, जैसे जब कोई कुछ भी हम काम करने जाते हैं, हमें अंदर एक आवाज तो आती है, आवाज भी मतलब क्या, मन में दो प्रकार के थॉट्स चलते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे डिसाइड करके यू डोंट गो इन टू अ रिलेशनशिप, वो शुरू कैसे होगी? धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे ज्यादा कुछ शेयर करना, फिर और ज्यादा बहुत सारी बातें शेयर करना, दैट्स हाउ अ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. यू डोंट गो एंड हैव अ बॉन्डिंग लाइक दिस, दैट्स नॉट अ बॉन्डिंग, दिस वी आर टॉकिंग ऑफ अ बॉन्डिंग. तो वो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है. तो शायद हमने इंटेलेक्ट को बहुत ज्यादा उस दौरान यूज नहीं किया, और इंटेलेक्ट अगर कहीं ना कहीं जजमेंट दे भी रही थी कि ये रॉन्ग है, लेकिन हमें वो चीज अच्छी लग रही. और सोल कॉन्शियसनेस जब हमें समझ में आता, तो रिलेशनशिप्स है क्या, आत्मा का आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज, वी विल नॉट हैव टू यू नो देन compartmentalize it, this relationship and that relationship. It's a soul-to-soul exchange. And purity. मैं आत्मा का original स्वरूप purity है. तो वो purity इतनी emerge होती जाएगी कि impurity का trace भी थोड़ा सा furnish हो जाएगा. लेकिन रोज की अपनी checking. सवेरे introspection, talking to yourself and talking to God, definitely. And रात को सोने से पहले अगर आप अपनी दिनचर्या को चेक करें, तो आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म हो जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, ये हो नहीं सकता. क्योंकि रोज की चेकिंग हो रही है ना, पछताते तो हैं हम बहुत समय बाद कि ये मेरे साथ क्यों हो गया,
1: क्योंकि वो निकल चुका होता है.
0: यू नो अ लॉट ऑफ पीपल दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप, दे नो यू नो इट्स गॉन रॉन्ग, एंड देन दे विल से बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप.
1: हियर आई वांट टू आस्क यू बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग. There might be many people who are still involved. They want to come back. What to do? How to get out?
0: One thought away again. If they want to come back. Agar wo mentally bilkul ready hai to come back. Matlab kya? Ek attachment hai jisse apne aapko kinara karna padega. Aur wapis jo apni zimmewariyan hai, jo sambandhiyan hai, unki taraf wapis aana hoga.
1: Aur unka kya jiske saath apne sambandh joda tha?
0: Again, you will have to talk and discuss it out. But it is in the long run beneficial even for the opposite person. Na? To aap koi kisi ke saath galat nahi kar rahe, lekin it is all, because ye rishte ka bhi to koi future nahi hai. Bilkul koi future nahi hai. To jab already pata hai, कि जिस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, जिसमें अभी शायद लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जाकर दर्द ही दर्द है, तो उसको और ज्यादा बढ़ाने का कहां तक बहुत ज्यादा फायदा होगा. तो उसको अगर आप अभी भी रियलाइज कर लेते हैं, टॉक इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट, बिकॉज इट्स पॉसिबल, एंड आप खुद बहुत हल्के हो जाएंगे उसके बाद. वो व्यक्ति भी बहुत हल्के, मे बी अ लिटिल पेन, यस, हो सकता है कि थोड़ा समय एक पीरियड बीच में आएगा जो बहुत यू नो दर्द वाला होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो फिर भी बेनिफिशियल होगा, इवन फ्रॉम दैट पर्सन फ्रॉम होम यू हैव टू ब्रेक अवे, इवन फॉर दैट पर्सन इट इज बेनिफिशियल.
1: सचिन शिवानी, आज वो पर्सपेक्टिव हमने लिया जिससे कहीं ना कहीं पूरी नींव समाज की हिली हुई है, और इतनी आसानी से एक थॉट, हर बार आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक संकल्प है जो वापस ला सकता है उस नींव को, उतना ही पुख्ता कर सकता है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: परिवार की इस धुरी पर हमारी सारी जिंदगी घूमती है. वो रिश्ता जो हमें सभी रिश्तों से प्यारा लगता है, हम उसके लिए अपनी जान लगा देते हैं, उस रिश्ते को जीवन भर तलाशते भी रहते हैं, और जब उस रिश्ते में हम जी रहे होते हैं, तो शायद खुद ही इतनी गलतियां कर जाते हैं कि उस रिश्ते में ही दूरियां बढ़ जाती हैं. बातचीत का दौर, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी मत छोड़िए अपने किसी भी रिश्ते में. और अगर कहीं ट्रस्ट की बात है, तो वो आपकी अपनी फैकल्टी है, आपको अच्छा लगता है कि आप ट्रस्ट करें, ये सब बातें भी याद रखें. कहीं बाहर कोई ऐसा पुल है, कोई ऐसा अट्रैक्शन है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो उसे एक कार्मिक अकाउंट समझ के ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और एक दोस्ती में बदला जा सकता है. जो जिम्मेदारी हमारी अपनी है उस परिवार के प्रति जो हमने खुद खड़ा किया है, वो जिम्मेदारी हम अपनाएंगे. यही एक शक्तिशाली आत्मा का स्वरूप है, यही उसकी पहचान है. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. रिश्तों को कुछ नए पैमानों पर देखेंगे, एक नए अंदाज में देखने की कोशिश हम करते रहेंगे. मुलाकात होगी अगली कड़ी में. दीजिए इजाजत. ओम शांति।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

पुनेरी आवास 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। भागती दौड़ती हमारी जिंदगी में कई बार हम जान ही नहीं पाते कि किस दिशा में भाग रहे हैं, और फिर एक लम्हे को एक पड़ाव पर रुकते हैं और पूछते हैं तुझे क्या चाहिए जिंदगी। जानते हैं कि क्या चाहिए हमें नहीं, लेकिन यही तलाश है जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। और इसमें आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। शिवानी जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। भाग तो हम रहे हैं, कोई करियर के लिए भाग रहा है, कोई मोहब्बत के लिए भाग रहा है, कोई जिंदगी में यूं ही भाग रहा है,
1: शायद पता नहीं किस तरफ भाग
0: किस
1: रहे
0: तरफ
1: हैं।
0: भाग रहे हैं सच में, लेकिन क्या हम जान पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए?
1: एक्चुअली हमें पता है शायद कहाँ क्या चाहिए, लेकिन कई बार हमारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि हमें क्या चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन बीच बीच में रुक करके देखना पड़ेगा कि क्या हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जो चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है एंड आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें बीच में रुक कर पूछना पड़ेगा कि एम आई ऑन द राइट वे। लेकिन अगर हम ये कहें कि मुझे रुक कर पूछने के लिए टाइम नहीं है,
0: मैं भागता ही जाऊंगा,
1: हाँ मेरे पास पूछने के लिए ही टाइम नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि हम जाना चाहते थे कहीं और पहुंचते हैं कहीं और फिर बाय देन इट्स टू लेट,
0: यस
1: यू नो। एंड देन समटाइम्स टुवर्ड्स द फैग एंड हम कहते थे कि मुझे तो ये चाहिए था, ये चाहिए था, मुझे तो जीवन में बस ये चाहिए था, बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जो चाहिए था वो शायद अभी भी तलाश कायम है।
0: बिल्कुल। और अगर हम इस भागदौड़ की बात करें और इस इन छोटी छोटी मंजिलों की बात करें या अचीवमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहली जो अचीवमेंट अगर हम स्थूल रूप में देखते हैं तो वो ये कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे फिर पैसा चाहिए। ये जो
1: एक्चुअली एवरी स्टेप पर ना हमारा जो चाहिए का डेफिनेशन है वो चेंज होता है, विच इज नेचुरल। एक स्कूल गोइंग बच्चे के लिए है कि मुझे 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए, देन इट्स योर 12, देन ग्रेजुएशन, देन इट्स योर जॉब, फिर आपको है फैमिली, फिर फैमिली शुरू हो गई तो इट्स अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सब तो है ही और वो सब चलता भी रहेगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन ये सब कुछ करते हुए लेट्स से सपोज आपसे ही अभी पूछे कि डोंट थिंक टू मच, बहुत लॉजिकली एनालाइज मत कीजिए अपनी लाइफ को, लेकिन वैसे ही अगर आप अपने आप से पूछो कि एट द एंड ऑफ इट मुझे क्या चाहिए, या इवन राइट नाउ मुझे क्या चाहिए,
0: I'll say happiness.
1: खुशी आपने कहा, तो खुशी इज एक स्पॉन्टेनियस जो निकलता है हमारे अंदर से, बिकॉज हर एक को वो चाहिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो रिटायर्ड है, चाहे वो उसके बीच वाली जर्नी में है, लेकिन खुशी, शांति, प्यार, ये हम सब कुछ चाहिए। एंड हम जो कुछ कर भी रहे हैं ना, इट इज फॉर दैट ओनली। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सुबह से निकलते हैं, अपना करियर बना रहे हैं, आप भले सैलरी कहें उसको, डेजिग्नेशन कहें, स्टेटस कहें, लेकिन वो सब भी किस लिए चाहिए लोगों को?
0: हैप्पीनेस के लिए,
1: बिकॉज चाहिए हैप्पीनेस के लिए, एंड समवेयर वी थॉट कि इन चीजों से हैप्पीनेस मिल जाएगी, तो हम इसलिए इन चीजों के पीछे हम चलते गए। और होना एक्चुअली ये हो सकता है कि हम ये सब कुछ जो हमें प्राप्त करना है, जो हमारे माइलस्टोन्स हैं लाइफ के, ये हमें सब चाहिए एंड वो स्टेप बाय स्टेप मिलते भी जाएंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान हैप्पीनेस हमारे साथ रहनी चाहिए।
0: ओके, यू सी, लाइक इट्स अ जर्नी,
1: इट्स अ
0: जर्नी जो आप ये कह रहे हैं कि एक पूरा सफर है।
1: यू वी हैव हर्ड आल्सो सो मेनी टाइम्स, हमने इतने सारे कोटेशंस पढ़े हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी, बट इसका भाव क्या है? यू नो, जैसे ट्रेन से भी ट्रैवल करें या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो हर एक पे लिखा जाता है वी होप यू हैव अ प्लेजेंट जर्नी, इट्स नॉट रिटन के वी होप दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन एनी हाउ। You see, suppose both of us are traveling together, तो ऐसा नहीं है कि जर्नी में कितनी भी मुश्किल हो बस किसी भी तरह हम बॉम्बे पहुंच जाए, दैट्स नॉट द फन। द फन इज कि हमारी पूरी जर्नी बहुत अच्छी गुजरे, हंसते खेलते बात करते, देन वी एंजॉय द प्रोसेस। इट्स लाइक एक स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल लाइफ इज अ वेरी नाइस लाइफ, तो इट्स नॉट कि व्हेन आई फिनिश 10th स्टैंडर्ड आई विल बी हैप्पी, बट उस पूरी स्कूलिंग के दौरान आई शुड बी हैप्पी। You know, it's not that when I get my job, then I will be happy.
0: इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें शिवानी की, अगर मैंने एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, मैंने एक एमएससी में नौकरी करना चाह रही थी, अच्छी पोस्ट पे, वहां मैं पहुंच गई और वो अचीव कर लिया, या कुछ और कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज थी और मुझे लगता है कि मुझे उससे वो मेरे खुशी का लम्हा होगा। वो खुशी मैंने पाई भी, उस लम्हे मैंने पाया उसे, लेकिन वो इतना क्षण भंगुर है, अगले ही पल कोई भी ऐसी खबर मेरी उस खुशी को दुख में बदल सकती है।
1: बिकॉज वो रियली खुशी नहीं है, इट इज एन अचीवमेंट एंड इट इज, हमने एक लक्ष्य रखा कि मुझे ये करना है, एंड जैसे ही वो लक्ष्य को प्राप्त हुआ, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, लेकिन उसको हम खुशी के साथ नहीं मिक्स कर सकते।
0: हेल और हैप्पीनेस के बीच में मैं से क्यों कैसे जुड़ सकते हैं?
1: एक जर्नी है जैसे, और ये जैसे आपने कहा ना, जो साधन भी है कि हमने गाड़ी खरीद ली या हमने जो भी कुछ खरीद लिया, ये साधन भी पहली बात हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये साधन हमें खुशी दे रहे हैं, क्योंकि हम ये साधनों को बटोरने की होड़ में जो लगे हुए हैं, यू नो, एक के बाद एक चीज, आप देखो घर में भी एक लिस्ट बनी रहती है, ये लेना है उसके बाद ये लेना, तो यू डोंट इवन गेट टाइम टू पॉज। आप एक चीज लेते हैं तो बाय दैट टाइम यू हैव अनदर लिस्ट रेडी, विच इज ओके, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन क्या ये चीजें हमें खुशी दे रही है, या इट इज इट द फीलिंग कि मैंने ये चीज प्राप्त कर ली जो मैंने डिसाइड की थी, वो हमें खुशी दे रही है। तो खुशी हमें वो चीज से नहीं मिल रही है, खुशी उस चीज को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को पूरा करने की खुशी मिल रही है। दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो इसका मतलब खुशी मेरी अपनी जेनरेशन थी, मैंने अपने आप उसको क्रिएट किया, क्योंकि मुझे लगा मैंने लक्ष्य रखा, वो पूरा हुआ, मुझे खुशी हुई, लेकिन वो चीज खुशी नहीं लेकर आई थी अपने साथ।
0: अगेन आई वांट टू आस्क, इज लाइक हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली,
1: इट इज एनर्जी, इट इज अ फीलिंग। सी, हैप्पीनेस इज अ फीलिंग। अगर मैं कहूं कि ये रिंग पहनी है, दिस इज गिविंग हैप्पीनेस, इट्स नॉट ट्रू, ये दे नहीं सकती है, चाहे ये सिल्वर की हो, गोल्ड की हो, इसमें एक डायमंड हो या दस लगे हो, ये खुशी नहीं दे सकती है। बट वी फील के ये पहनने से खुशी मिलेगी, बहुत अच्छी साड़ी पहनने से खुशी मिलेगी, बहुत अच्छे सोफे पे बैठे हैं तो खुशी मिलेगी। हियर समवेयर वी आर गोइंग अ लिटिल, यू नो, रॉन्ग, बिकॉज इसलिए आप देखो कि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं इन चीजों को बटोरने में, तो आज दिन ब दिन हमारी मेहनत बढ़ती जा रही है लाइफ, जैसे आपने कहा हम भाग रहे हैं क्योंकि एफर्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या खुशी भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ रही है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, यू नो, लाइक डेफिनेटली हम भाग तो इतनी ज्यादा तेज स्पीड से रहे हैं, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे पिछले जनरेशन आराम से जिंदगी जीते हुए ज्यादा खुश थे, ज्यादा सैटिस्फाइड थे,
1: राइट? तो हाँ, तो द एफर्ट हैज इंक्रीज्ड, लेकिन द रिजल्ट, रिजल्ट भी तो उतना ही बढ़ना चाहिए था, एफर्ट बढ़ा तो रिजल्ट भी बढ़ना चाहिए। और आज अगर हम देखें कि खुशी बढ़ने की बजाय और ही शायद
0: घट रही है,
1: घटती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज हमने कहीं दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। आप मेहनत एक चीज के लिए कर रहे हैं तो प्राप्त भी वही चीज होगी, आप ये नहीं समझे कि मैं मेहनत ये करूं प्राप्त दूसरी चीज हो। हम मेहनत अपने करियर में कर रहे हैं तो हमें एक अच्छी पे पैकेज, अच्छी सारी पर्क्स जो मिलनी चाहिए वो सारी मिल रही है, एंड इफ यू सी इन द लास्ट 10 years वी हैव रियली प्रोग्रेस्ड, जिस तरह के सैलरी स्ट्रक्चर्स और ये सब चीजें आज हमें मिल रही हैं, तो फिर वो 10 साल पहले नहीं थी, क्योंकि हमने एफर्ट किया। तो एफर्ट का हमेशा रिजल्ट मिलेगा, ये हो नहीं सकता, लेकिन क्या हमने खुशी के लिए एफर्ट किया? नहीं, हमने इन मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए एफर्ट किया। और आज अगर आप धीरे धीरे देखें, हम सबके घरों में ऑलमोस्ट सारी चीजें आई गई हैं,
0: लेकिन अगेन वी आर बिकमिंग डिसिल्यूजन, यू नो, एफर्ट के बाद हमें रिजल्ट मिलने के बावजूद, मे बी बिकॉज वी हैवंट रियलाइज्ड, दैट्स
1: बिकॉज द एफर्ट वाज फॉर समथिंग एल्स एक्चुअली, यू नो, इट्स लाइक मैंने चाहे थी खुशी, एफर्ट किया मैंने धन के लिए, धन तो मिल गया लेकिन खुशी तो मिली नहीं साथ में,
0: फिर से
1: लेकिन मैं एफर्ट तो खुशी के लिए कर रही थी, लेकिन मैंने एक जो कनेक्शन बीच में जोड़ दिया था कि जितना धन उतनी खुशी, जितने साधन उतनी खुशी, वो मेरी अपनी क्रिएशन थी, विच इज नॉट ट्रू। किसी भी गाड़ी के साथ, किसी भी मकान के साथ ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि यू नो दिस विल गिव यू हैप्पीनेस। आप गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस पढ़ लो, इट विल टेल यू व्हाट ऑल इट विल गिव यू, नोवेयर इज इट रिटन कि ये आपको खुशी देगा। इस सोफे को हमने लिया, हमने स्पेंड किया होगा ना इसको लेने पे, ये हमें आराम देगा, ये हमें खुशी नहीं दे सकता, हमने सोचा ये हमें खुशी देगा, फिर जब इसने हमें नहीं दी तो हम डिसिल्यूजन हो गए,
0: फिर हम और कि
1: हमने इतनी मेहनत, फिर हमने सोचा ये सोफे ने तो खुशी नहीं दी, अब हम कुछ और खरीदते हैं, हम कुछ और, सो इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन,
0: इट मींस वी आर मूविंग इन सर्कल्स, यू नो, देयर इज अ टोटल विशियस सर्कल,
1: वी वोंट रीच एनीवेयर, बिकॉज हमें ये भी नहीं पता कि हम किस चीज की खोज में लगे हुए हैं। हमें चाहिए खुशी, हम खरीद रहे हैं आराम के साधन, आराम के साधन हमें आराम देंगे, विच इज फाइन, वो भी तो चाहिए, फिजिकल कंफर्ट चाहिए, हम इस पे कितने आराम से बैठे हैं अभी, लेकिन जरूरी नहीं है हम खुश हैं अंदर। हो सकता है हम जमीन पे बैठे हो, आई वुड प्रोबली नॉट बी एबल टू सिट इफ माई लेग इज हर्टिंग, बट हो सकता है आई कैन स्टिल बी हैप्पी. सो वी पॉन एंड मिक्स्ड द टू थिंग्स. तो फिजिकल चीज हमें फिजिकल कम्फर्ट देगी,
0: हैप्पीनेस नहीं,
1: हमें आंतरिक खुशी नहीं देगी. खुशी इज इंटरनल, इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट कम्फर्ट. वी मिक्स द टू थिंग्स. अब क्या, जैसे आपका ये मकान है, आपका एक गार्डन इस तरफ है, एक गार्डन इस तरफ है, अगर आपको दोनों गार्डन इक्वली फ्लरिश होते हुए दिखाई देने, यू विल हैव टू स्पेंड इक्वल टाइम ऑन बोथ ऑफ देम ना, यू वॉटर बोथ द साइड्स. अगर आप कहें कि मैं एक तरफ पानी डालू और दोनों गार्डन बने, तो ये नहीं. अब इसी तरह हमें फिजिकल कंफर्ट भी चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, हमें खुशी भी चाहिए, शांति भी चाहिए. दे टू डिफरेंट थिंग्स. हमने अपने 24 घंटे इस वाले तरफ लगा दिए और हमने ये सोचा इस तरफ जाते जाएंगे ये वाली चीज अपने आप आ जाएगी, ये वाला साइड सूख गया, ये वाला साइड बहुत फ्लरिश हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
0: वंडरफुल, बिकॉज यू नो इट एक्चुअली क्लियर्स अप द थिंग्स.
1: या सो जिस पर आप एफर्ट करोगे यू विल गेट दैट. वी शुड नॉट थिंक कि यू नो हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा. इस पे कर रहे हो ये मिल रहा है, इस पे थोड़ा सा करेंगे ये भी मिल जाएगा.
0: बहुत सुंदर. अच्छा तो मतलब
1: दैट इज द थिंग,
0: हम दूसरे गार्डन की तरफ भी बढ़ेंगे लेकिन पहले हमने ये बात, तो सबसे बहुत अच्छी बात हमने जो रियलाइज की वो ये कि जिन कंफर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस फिजिकल कंफर्ट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इच्छा
1: रख रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट.
0: नो डेफिनेटली
1: देयर इज नथिंग. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इसका मतलब यू नो ज्ञान योग मेडिटेशन मीन्स कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. फिजिकल कंफर्ट है तो भी बहुत अच्छा, नहीं है कल को तो भी इट्स नॉट एन इश्यू.
0: हाँ, वो उस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं लेकिन अगर है
1: उसको यूज करते हैं, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये दो डिफरेंट चीज हो जाएंगे. यू नो आज मोबाइल है, हम यूज कर रहे हैं, आप किसी को देखो उसका मोबाइल थोड़ी देर आउट ऑफ रेंज हो जाए या यू नो नहीं चल रहा, डिस्चार्ज हो जाए, पैनिक होने लगते हैं. ये जो डिपेंडेंसी है दैट इज देन ड्रेनिंग अस आउट टोटली.
0: Okay, that's a nice way of actually handling the problems and realizing that what actually हम किसके लिए भाग रहे हैं. अब हमने एक बात तो ये कि जो फिजिकल अचीवमेंट्स हम ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम अपने परिवार की बात करें, हैप्पीनेस की, अगर हम एक्चुअली रियल सेंस में हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो हमने ये बात समझी कि फिजिकल अचीवमेंट्स या इन एट्रीब्यूट को अचीव कर लेना हमें हैप्पीनेस की तरफ नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हमने रियलाइज किया ये बात. दूसरा हमारा एस्पेक्ट होता है जब हम घूमने जाते हैं, यू नो हम एब्रॉड जा रहे हैं, ट्रिप्स लगा रहे हैं, हम फैमिली के साथ पिकनिक्स पे भी जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि यू नो वी आर रियली हैप्पी, वी आर एंजॉयिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कुछ आते ही हम फिर डिसिल्यूजन हो जाते हैं.
1: क्योंकि ये भी जो हम कर रहे हैं, गोइंग फॉर एन आउटिंग या एक पार्टी में जाना, डिनर पे जाना, थिएटर में जाना, ये एक मोमेंट्री फेज है ना. वापस तो हमें फिर उसी रूटीन में आना ही है. इसमें हमें जाने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारा रूटीन है वो थोड़ा सा बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेनियस है. तो दिस इज अ चेंज, इट्स नॉट हैप्पीनेस अगेन, इट्स अ चेंज फ्रॉम माई रूटीन. रोज वही खाना खा रहे हैं, रोज वही खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ डिफरेंट खाएंगे तो वो खुशी देगा. इट्स अ चेंज. लेकिन ये जो है पार्टी में जाना या इस तरह से करना, ये एक एक्साइटमेंट जनरेट करता है. इवन इफ यू सी द एनवायरमेंट इस तरह के लोग, इट्स एक्साइटमेंट, इट इज प्लेजर. एक होता है ये जो कर्म इंद्रिया हमारी, जिसको हम कहेंगे सेंशुअल प्लेजर, देखा कुछ मूवी देखी, बहुत अच्छा गीत सुना, बहुत टेस्टी कुछ खाया, इन सेंसेस से मिलने वाला सुख, ये सेंशुअल है, ये अभी है, अभी चला जाएगा. आप कुछ बहुत टेस्टी खा रहे हैं, आपकी इधर ही है अभी वो मुख पे, यू आर लाइकिंग द टेस्ट. कुछ अभी गलत सुन लिया, कुछ हो गया अचानक, कहाँ जाएगा वो टेस्ट सर, अभी तो मुख पे ही पड़ा है, अंदर भी नहीं गया अभी. एंड उसका टेस्ट भी आप कितनी देर एंजॉय करते हैं, जस्ट टिल इट इज ऑन योर टंग, आफ्टर दैट इज फिनिश्ड, इट्स ओवर. लेकिन वो टंग पे अभी है और अभी आपने सुन लिया कि अचानक कुछ हो गया है गायब, तो वो चीज आपको खुशी तो नहीं दे रही.
0: तो यस, बिकॉज हम सुनते आ रहे हैं सदियों से कि खुशी जो है वो इटर्नल है, यू नो इट हैज टू बी परमानेंट.
1: इट्स अ फीलिंग, इट इज एन इंटरनल फीलिंग. और ये जो चीजें हम जिसको उसके साथ मिक्स कर दिया, ये है प्लेजर्स, ये है एक्साइटमेंट, ये है फन, आप इसको फन कह सकते हैं, लेकिन ये इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है. और कई बार ये भी हो सकता है हम हॉलीडे पर भी जाके आ जाएं, बट वी वर नॉट इवन हैप्पी एट द हॉलीडे. हम हॉलीडे पे गए द फैमिली, बट हस्बैंड एंड वाइफ के वहां भी आपस में
0: डिफरेंस,
1: झगड़ा हो रहा है. आप डिनर पे रेस्टोरेंट में चले गए, वहां भी आपकी ओपिनियन क्लैश हो गई और सारा सब कुछ हो रहा. तो खुशी का
0: जी,
1: तो खुशी एक एक्चुअली हमें अपने आप से पूछना होगा कि मेरे लिए खुशी क्या है, बिकॉज हम सब पूरी यात्रा में उसके लिए चल रहे हैं, द होल जर्नी इज फॉर
0: एक और लाइफ की अगर हम जर्नी की बात करते हैं, एक और एस्पेक्ट जिसे हम हैप्पीनेस से जुड़े हैं. एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज लाइक अल्टीमेटली व्हाट हैप्पीनेस इज, बट उससे पहले हम ये जानते जाएं कि जिसे हम खुशी मान रहे हैं, क्योंकि वो हमें खुशी दे नहीं रही, हम अभी भी भाग रहे हैं. अगर हमें खुशी मिल जाए तो हम शांत हो जाए ना, हम रुक जाए, हम रुक नहीं रहे हैं, हम कंटिन्यूस उसको तलाश रहे हैं. सो एक हमने ये जाना कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, फिजिकल अचीवमेंट्स, वो हमें खुशी नहीं दे रही, वो कम्फर्ट देती है. तो ये तरफ इस तरह की एक्साइटमेंट दे रही है, इस तरह की आउटिंग्स, एवरीथिंग, बट अगेन हैप्पीनेस इज समवेयर, यू नो, वी आर,
1: दीज आर ऑल्सो राइट, अगेन नन ऑफ देम आर रॉन्ग. सी, क्योंकि हो सकता है कि आप एक नॉर्मल रोज एक दिनचर्या करते हुए आपको एक चेंज चाहिए, गो फॉर द चेंज. But don't go with an illusion.
0: That's what I'm saying. You know, these are the that's illusions.
1: That's important. Go for the change, but not with the illusion that, oh, that's happiness.
0: Again, another illusion which we are all living. I'm saying, we take it as that this is सच्चाई ही है, और वो है love, relationship. You know, उसमें हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं, उससे बढ़कर खुशी नहीं मिल सकती, उससे ज्यादा खुशी नहीं, और वो एक इंडिविजुअल, यू नो, सारी मेरी खुशी उसके ऊपर डिपेंड करती है. वो मेरे लिए, मतलब वो खुश है तो मैं खुश हूं तो वो खुश, ऐसा एक कॉम्बिनेशन. बट समवेयर आगे चलते हैं, अगर वो रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाता, मतलब वो मोहब्बत एक कन्वर्ट होती है रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप ही चलता है, वो भी हमें तकलीफ दे रहा है, हमें खुशी नहीं दे रहा.
1: संबंधों में भी, चाहे जो भी तरह का आप संबंध लो, चाहे एक पेरेंट चाइल्ड का भी आज एक रिलेशनशिप है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार से, इतनी मेहनत से बड़ा करते हैं, खुशी मिलती है उसमें भी, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन बाद में अगर वो बच्चा अपनी साइड ऑफ द रोल नहीं प्ले कर पाया, या अपनी जिम्मेवारी नहीं प्ले कर पाया, और वो कहीं अलग रहने लगा या किसी कंट्री से बाहर चला गया, तो वही पेरेंट्स दुखी होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं, उसी बच्चे के वजह से भी उदास होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये निकल आएगा, मैंने आपके लिए इतना किया, आपने इन रिटर्न मेरे लिए क्या किया. तो सारे रिलेशनशिप्स हमारे कंडीशनल हो गए, और कोई भी चीज जब कंडीशनल होगी वो हमें खुशी नहीं देगी. आप एक कर दो, रोड क्रॉस करते करते किसी को रोड क्रॉस करवा दो सिर्फ, ठीक है, समबडी इज ओल्ड या ब्लाइंड, एंड देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी. इट विल बी नॉट कि वो कुछ करेगा आपको, लेकिन आप खुद को एक अच्छी फीलिंग अंदर जनरेट होती है, बिकॉज आपने कुछ ऐसा किया जिसमें यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. लेकिन जहां एक एक्सपेक्टेशन फैक्टर आ जाता है, मुझे आपसे खुशी चाहिए, यू नो, हमारे रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा इशू वो ही हो रहा है कि मुझे उनसे प्यार चाहिए, मुझे उनसे खुशी चाहिए. लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा उनके पास है क्या वो.
0: बिल्कुल,
1: आप खुद अपने अपसेट हो, सपोज इस टाइम आप खुद परेशान हैं बिल्कुल, और मैं वेट कर रही हूँ सुबह से कि मैं कनुप्रिया से मिलूंगी मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं मिलूंगी मुझे बहुत खुशी मिलेगी. यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट टू गिव इट टू मी. द रिलेशनशिप शुड बी मोर ऑफ गिविंग रादर देन ऑलवेज टेकिंग, क्योंकि इस समय वो समय ही नहीं चल रहा जो हम एक्सपेक्ट करें हमें औरों से कुछ मिलना चाहिए. हमारे पास वो चीज ऑलरेडी है, हमें अब वो औरों को बांटनी है.
0: Beautiful.
1: अगर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मुझे खुशी मिल रही है, तो वो खुशी सामने वाले व्यक्ति से नहीं मिलती, मुझे उस व्यक्ति से इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है तो वो मुझे खुशी होती.
0: तो वो मैं ही कहीं इंटरनलाइज्ड, यू नो, ये पूरा
1: जो दुख भी मुझे मिलता है वो भी मुझे खुद ही मिलता है.
0: हाँ,
1: सामने वाला ना मुझे खुशी दे रहा है ना दुख दे रहा है, मुझे उससे मिलकर, उससे बात करके, उससे इंटरेक्ट करके जो जेनरेट करना है वो मैं खुद जेनरेट.
0: लेकिन हम ब्लेम गेम में तो कंटिन्यूस रहते हैं, यू नो, लाइक कि खासकर रिश्तों की अगर हम बात करें, हमने दो एस्पेक्ट्स तो जान लिए कि वो कुछ कुछ चीजें दे रहे हैं हमें, लेकिन खुशी हमें नहीं दे रहे हैं.
1: खुशी हम अपने इंटरेक्शंस में खुशी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सी, बट ये नहीं हम कह सकते कि उनसे हमें खुशी मिलेगी या वो ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी. फिर उससे क्या होगा, मेरी खुशी हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति पे या किसी ना किसी परिस्थिति पे डिपेंडेंट हो गई,
0: निर्भर हो जाएगी,
1: कंडीशनल हो जाएंगे. ये होगा तो खुशी होगी, ये इसने ऐसा किया तो खुशी होगी, उन्होंने अगर इस तरह मेरे से बात की तो खुशी होगी, आज अगर उन्होंने अच्छी तरह से बात की तो खुशी है, कल नहीं बात की गम.
0: बिल्कुल,
1: आपने मेरी महिमा कर दी तो खुशी है, आपने थोड़ी सी निंदा कर दी तो उदासी है. मतलब फिर मेरी खुशी तो सारा दिन
0: अप डाउन्स में रही ना.
1: But that's not really happiness, isn't it?
0: In fact, that's what I wanted to ask. We have negated a lot of things, you know. We realized achieving, you know, these achievements.
1: True.
0: या physical जो aspects हम ले रहे हैं उन्हें achieve करना, उन्हें पा लेना, या फिर आपने कहा कि excitement, parties में जाना, या दूसरी तरफ रिश्तों में भी.
1: Right.
0: खुशी जो है वो हमें तीनों में अभी तक नहीं मिली है. तो खुशी क्या है?
1: कई बार ऐसे नहीं होता
0: हम.
1: कई बार ऐसे नहीं होता, पॉकेट में अपनी चाबी पड़ी होती है, हम पूरे घर में ढूंढते हैं, घर में भी नहीं मिलेगी, ऑफिस में जाके ढूंढेंगे, और फिर कई बार हमारा पूरा परिवार हमारे साथ ज्वाइन कर लेता है कि आखिर वो कहाँ है. राइट. एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ. एक छोटा सा बच्चा किसी लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होके कुछ ढूंढ रहा था. तो एक बुजुर्ग भाई वहां से आए, कहा आप कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? तो कहा मेरी चाबी घूम गई है यहाँ पे. तो वो भी उसको ज्वाइन किया और उसके साथ ढूंढने लगे. दोनों जने ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था. साथ में और एक कपल वॉक करते आया, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया. इस तरह से आफ्टर सम टाइम 7-8 लोग उस बच्चे को मदद कर रहे थे उसकी चाबी ढूंढने में. थोड़ी देर बाद एक बहुत ही अनुभवी माता जी वो आई वहां पे, कहा आप लोग सब इतनी मेहनत करके क्या ढूंढ रहे हो? तो कहा इन बच्चे की चाबी गुम गई है, वो ढूंढ रहे हैं. तो माता जी बहुत अनुभवी थी, उन्होंने बच्चे को कहा यहीं पे गिराई थी क्या पक्का? तो कहा नहीं माता जी, गिराई तो अंदर थी उधर. तो माता जी ने कहा यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो फिर? वहां बहुत अंधेरा है, यहाँ लैम्प पोस्ट थी ना, इसलिए हम यहाँ ढूंढ रहे थे.
0: ओके. तो जहाँ रोशनी दिखी जहाँ चकाचौंध, बहुत सुंदर बात.
1: तो जहाँ हमें रोशनी दिखी हम वहां ढूंढना शुरू कर दिया, और हम ढूंढते ढूंढते हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज हमारे साथ जुड़ गया उस चीज को ढूंढने में. लेकिन वो एक्चुअली जहां पर है शायद हमने वहां नहीं देखा, क्योंकि हमें वहां देखने में भी डर लग रहा है,
0: क्योंकि वहां अंधेरा है.
1: वहां अंधेरा है, बहुत समय हुआ वहां देखा नहीं है. बट इट्स हियर, इट्स क्लोजेस्ट टू मी एंड इट्स इजिएस्ट टू लुक फॉर. वो मेरी अपनी चीज है. व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? आपके लिए क्या होगी खुशी?
0: इट्स सो डिफिकल्ट टू से. हैप्पीनेस इज लाइक इफ I can get what I want, and say at that time today whatever I want, if I get, I think that will be happy.
1: Again, that will become conditional, na?
0: हाँ.
1: देखा conditional हो गया कि अगर मुझे वो मिला तो खुशी है, नहीं मिला तो नहीं खुशी है. अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि आप सारे जो अपने conditions रखोगे वो पूरी होंगे. For me, happiness would be कि ये मुझे चाहिए, और इसको ढूंढने के दौरान या इसको प्राप्त करने के दौरान मुझे खुशी से इसको प्राप्त करना.
0: Journey भी. जर्नी है.
1: बिकॉज खुशी वो प्राप्त करने में नहीं मिल रही है. खुशी एक आंतरिक स्थिरता है, स्टेबिलिटी. शांति भी क्या है? वही है. हम कहते हैं ना ऐसा कुछ हुआ मेरी शांति भंग हो गई, मतलब शांति थी भंग हो गई. खुशी हम अभी आज हम कहते हैं खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए. कहाँ मिलेगी? मॉल्स में चले जाओ, लंदन घूमा, कहीं भी चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, ओशन में चले जाओ, नहीं मिलने वाली. इट्स समथिंग इनसाइड मी, इट्स ऑलरेडी देयर. एक्चुअली राजयोग मेडिटेशन जब हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो जो सबसे प्रोफाउंड रियलाइजेशन थी वो ये थी कि ये जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं, चाहे वो खुशी है चाहे शांति है, ये एक्चुअली चाहिए नहीं, ये एक्चुअली ऑलरेडी है. अब क्या करना? सिर्फ उसको मेंटेन करना, उसको पहले रिकग्नाइज करना, उसको अपनी अवेयरनेस में लाना है और उसको मेंटेन करना है. ये ध्यान रखना है कि वो गुम ना हो, लीकेज ना हो किसी भी तरह.
0: कैसे जाने? ये आपने बहुत सुंदर बात ये कही कि कस्तूरी गंध अपनी ही थी, लाइक
1: समवेयर, इट्स दैट.
0: लेकिन वो कहाँ है?
1: पहली बात तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना पड़ता है. अभी हम कहते रहेंगे मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, ढूंढते रहेंगे तो उसी स्थिति में रहेंगे. अब समझ में आ गया कि खुशी तो है ही ना. व्हाट एम आई राइट नाउ? क्या है? खुश तो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब ध्यान क्या रखना है? सिर्फ कि अगर कनुप्रिया ने कोई ऐसा शब्द कह दिया जो मुझे ठीक नहीं लगा, मैं अपसेट ना हो जाऊं, क्योंकि फिर वो जो खुशी मेरे पास है वो शायद थोड़ी सी लीकेज हो जाएगी. एक ग्लास है, हम कहते रहते हैं जी मैं खाली हूं अंदर, मुझे भरना है, खुशी से भरना है. बट वी हैव रियलाइज नाउ कि वो ग्लास एक्चुअली ऑलरेडी भरा हुआ है, वो फुल है. वी आर फुल ऑफ लव, वी आर फुल ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन हम बहुत छोटी छोटी बातों से उसको लीक होने देते हैं,
0: उसके छेद करते जा रहे हैं.
1: बिल्कुल. ये परिस्थिति ऐसी हुई, मैं अशांत हो गया, ये ऐसा हुआ, मेरा मन परेशान हो गया, हम उसको लीकेज बहुत जल्दी
0: तो
1: होने देते
0: इतने
1: हैं।
0: सालों में कहीं हम, क्योंकि हमने अवेयर ही नहीं हुए, आज अगर मैं अपने आप को देखती हूँ या बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, कि इतने सालों में हमने इतनी लीकेज तो नहीं कर ली कि कहीं वो सब निकल गई है
1: नहीं
0: कुछ।
1: ऐसा नहीं है, इट्स अगेन जस्ट गोइंग बैक टू द अवेयरनेस, बिकॉज वो ऑलरेडी है, वी आर फुल इनसाइड। आप देखो, खुशी चाहिए भी क्यों, पहली बात, शांति चाहिए भी क्यों, क्योंकि एक्चुअली शांति हमारी अपनी ओरिजिनल नेचर है, वी लाइक पीस। हम कितना भी गुस्सा कर दे सारा दिन में, हमें फिर भी गुस्सा पसंद नहीं आता, हमें शांति पसंद आती है। जैसे ये शरीर 5 तत्वों का बना है, पानी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका। हम भाग कर आएंगे, हम कहेंगे पानी पिला दो, पानी चाहिए, उस समय 4 लिक्विड्स और कोई पड़े हो, नहीं, पानी, एनीथिंग टू डू विद वॉटर, क्योंकि वॉटर का लेवल कम हुआ ना, तो वॉटर ही तो चाहिए फिर उसके लिए। तो अब शांति का लेवल कहीं कम लग रहा है, तो सारा दिन कह रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, क्यों, क्योंकि हम शांति के बने हुए हैं। आई एम पीसफुल, तभी आज फील हो रहा है कि शांति चाहिए। अगर इफ आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट पीस, आई वुडंट इवन नो व्हाट पीस
0: तो
1: इज।
0: मेरा मूल में जो है वो खुशी
1: दैट्स माई
0: और
1: ओरिजिनल नेचर, दैट्स माई ओरिजिनल संस्कार। अगर आप अभी 1 मिनट भी सिर्फ बैठो और अपने आप से कहो कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, क्या है, आई एम पीसफुल, दैट इट सेल्फ, जस्ट दैट थॉट दैट आई एम अ पीसफुल बींग, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एंड अभी तक हम बोलते थे मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, तो जो चीज की अवेयरनेस में हम रहेंगे और उसको बार बार बार बार रिपीट करेंगे, वो री इन्फोर्स हो जाएगा। हम बार बार कहे मैं हूं ही गुस्से वाली, मैं हूं ही गुस्से वाली, तो वो गुस्से का संस्कार और पक्का हो जाएगा।
0: बिल्कुल
1: मेडिटेशन मीन्स रोज अपने आप से बात करके अपने आप को याद दिलाना कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, दैट इज माई नेचर,
0: मैं हूँ ही हैप्पीनेस, यू नो, विद इन,
1: एब्सोल्युटली
0: लाइक
1: आनंद का स्वरूप हूं मैं, हैप्पीनेस इज माई नेचर, आई डोंट वॉन्ट हैप्पीनेस, आई एम मेड आउट ऑफ इट, इट्स माई ओरिजिनल क्वालिटी।
0: वंडरफुल। सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें खुशी का सही स्वरूप दिखाने के लिए। आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज इस पूरी श्रृंखला में हम खुद को तलाशेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हमारे अपने ही अंदर है। आज हमने जाना कि खुशी हमारे अपने पास है। अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो खुशी को हमसे दूर ले जा सकती है और कैसे हम उसे अपने अंदर कायम रख सकते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इस श्रृंखला का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666555। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में खुशी को फिर तलाशेंगे साथ मिलकर। नमस्कार।

0: दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: कभी आपने काउंट किया है, कभी गिना है? हम में से कुछ लोग दिन में 2 बार भोजन करते ही हैं, कुछ शायद उससे ज्यादा करते हैं। कई तो भोजन के साथ ऐसा रिश्ता निभाते हैं जैसा जन्म जन्म का साथ है, एक पल भी नहीं छूटता भोजन के साथ रिश्ता। और कई ऐसे होते हैं जिनको भोजन मिलता ही नहीं है। लेकिन इन सब में एक बात तो कॉमन होती है, और वो क्या? ये भोजन हम तक पहुंचाता कौन है? जी हाँ, आप में से कईयों ने सही जवाब दिया, ये भोजन हम तक पहुंचाने वाले हैं हमारे किसान भाई। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के हमारे कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपके बीच में हमारे एक ऐसे किसान भाई को लेकर के आया हूं जिन्हें वर्ष 2022 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आज हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सेठपाल सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जगह से हैं। दोस्तों, मेरा और आपका हम सबका रिश्ता भोजन के साथ कैसा गहरा होता है? किसी किसी का दिन में 2 बार, किसी किसी का दिन में कई बार, और किसी किसी को शायद दिन में 1 बार भी भोजन नसीब नहीं होता। लेकिन इस भोजन के रिश्ते में जो सबसे बड़ा अहम भूमिका जिसने सबसे बड़ी निभाई हुई होती है वो कौन है? आपका जवाब सही है, एक किसान। एक किसान ही वो अन्नदाता होता है जिसके परिश्रम से भोजन मुझ तक, आप तक, हम सब तक पहुंचता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में एक ऐसे ही अन्नदाता को लेकर के आया हूं जिन्हें वर्ष 2022 में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। आज यशस्वी भारत के हमारे कार्यक्रम में रेडियो मधुबन सुन रहे आप सभी श्रोताओं के लिए हम लेकर के आए हैं श्री सेठपाल सिंह जी को, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नंदी फिरोजपुर जिले से हैं। सेठपाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में हमें समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत भी है।
4: संतरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
3: सेठपाल जी, पहले तो आपको मुबारक हो कि आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मैं समझता हूँ एक आपके अकेले का सम्मान नहीं, पूरे किसान वर्ग का सम्मान है। जहां पर कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी को पूछा जाए आप क्या करते हैं या आपके पिताजी क्या करते हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलने से कतराते हैं कि मेरे पिता किसान हैं या हमारा कृषि से संबंध है, क्योंकि लोग तो सम्मान शायद उन्हीं व्यवसायों को देते हैं जो कि या तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं आदि। किसान को सम्मान शायद आज तक उतना नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?
4: ये शांतनु जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद अदा करने अपने भारत सरकार को, अपने प्रधानमंत्री जी को, जब सब बने हैं उन्होंने किसानों के बारे में बात करनी शुरू की है। और उसमें भी मैं उस समस्त किसान बिरादरी का, एक अकेले सेठपाल का सम्मान नहीं है, ये पूरे गांव का, अक्षेत्र का, मेरे पूरे किसान समाज का एक सम्मान है जिसमें पद्मश्री, एक किसान को भी पद्मश्री मिल सकता है। ये तो एक सपना था और हम लोगों ने कभी इसके लिए सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को भी ये सम्मान, कभी हमको समझते भी नहीं थे हम लोग, तो एक वास्तव में ये मेरा नहीं, मेरे पूरे गांव का, क्षेत्र का, समाज का, मेरे पूरे किसान बिरादरी का सम्मान है, और इससे ज्यादा गौरवान्वित किसान नहीं हो सकता। आज किसान का बेटा भी ये कहे कि मैं किसान का बेटा हूं, चूंकि कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है, कृषि सबको भोजन देती है, पर्यावरण का संरक्षण करती है, जल के बारे में संतुलन और तमाम तरह के करती है, उत्तम भोजन देती है, पौष्टिकता देती है, तो इस कृषि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भोजन सबको चाहिए, अच्छे गुणवत्ता युक्त चाहिए, तो ये वास्तव में एक मैं पूरे किसान समाज का सम्मान है। और पद्मश्री मिलने के बाद तो हम अपने आप को किसान समुदाय बहुत भाग्यशाली समझते हैं।
3: हम आपकी कहानी में और गहराई से जाना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक कड़ा सवाल पूछना चाहूंगा कि कभी आपके सामने ऐसा कोई मौका आया है या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि जब आपके परिवार में या आपके बच्चे या कोई और को आपने ऐसा हिचकते हुए देखा है कि वो अपने को किसानी से या कृषि से जोड़ने में थोड़ा हिचक रहे हो, कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है?
4: नहीं, ये निश्चित रूप से हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। जब हम, ये एक बहुत संघर्ष की कहानी है, हमको तो लोग बाग ये बोलते थे ये तो बेवकूफ है, पागल है, और जब कहीं जाकर के भी ये कहते हैं हम किसान, तो वास्तव में उस किसान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान की दृष्टि से लोग बाग नहीं देखते, तो ये बड़ा, ये तो कटु सत्य है, और इसका कई बार सामना हम लोगों को करना पड़ता था। वास्तव में जैसे बताया, किसान का बेटा अपने आप को ये कहने से शर्माता है कि मैं किसान का, ये तो सच्चाई है।
3: तो जब आपके सामने इस प्रकार की सच्चाई आती है सामने, तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? आप अपने को क्या दिलासा देते हैं या क्या वो सेल्फ टॉक करते हैं आप अपने साथ, जिससे आपका आत्मसम्मान बना रहे? क्योंकि मैं समझता हूँ ये बाकी किसानों के लिए या उनके बच्चों के लिए जानना भी जरूरी है कि जब आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो कौन सा वो चीज, कौन सी वो बात हमें याद रखनी चाहिए जिससे हम हमारे आत्मसम्मान को गिरने न दे?
4: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है, और एक पहले कहावत है राजस्थान कवि की, उत्तम खेती मध्यम बाग निषिद्ध चाकरी भीख निदान, और उसके बाद भी आगे जो हल जोते खेती

0: इन और नहीं तो जाके ताके। तो जो किसान हल जोतता है, धरती माता का सीना चीर करके अन्न उत्पन्न करता है और तमाम चीज सबको अच्छा भोजन और उसके बारे में, तो उस किसान से ज्यादा सम्मान, उससे ज्यादा स्वाभिमानी और उससे ज्यादा ईमानदार तो मैं दूसरे व्यवसाय को बिल्कुल भी नहीं समझता। तो ये तो सबसे उत्तम व्यवसाय है। और जब तक हमारा देश का आम जनमानस किसान के प्रति ये सोच नहीं रखेगा कि वास्तव में हमारी जो जरूरत है, हमारा जो तमाम तरह का स्ट्रक्चर है वो केवल किसान से ही संभव है, तो तब तक हम उसमें वो सम्मान पाने के हकदार जो किसान को मिलना चाहिए उससे हम वंचित हैं। और ये हम लोगों को अपने आप को गौरव होता है कि हम भी भारत के किसान हैं।
1: तो दोस्तों आपने सुना सेठपाल जी ने क्या कहा कि हमेशा ये याद रखना है कि उत्तम कृषि, सो कृषि जैसा उत्तम व्यवसाय कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि कृषि के द्वारा ही हम तक भोजन पहुंचाने का उत्तम श्रेष्ठ कर्तव्य हमारे सभी किसान भाई बहन निभाते हैं। तो आज से आपके सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसका दिल से जरूर सम्मान कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारी इस चर्चा में। सेठपाल जी, शुरुआत करते हैं आपके जीवन से कि कहां से आपके दिल में ख्याल है कि आपको कृषि के साथ ही जुड़े रहना है, क्योंकि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने अपने आसपास में कई प्रकार के व्यवसायों को उपजते देखा है, कई लोगों को कृषि छोड़कर के कई अन्य व्यवसाय में जाकर के बहुत लाभ पाते हुए देखा है। तो ऐसे में कभी आपको मन नहीं किया कि मैं ये व्यवसाय छोड़ करके कुछ और करता हूँ?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है संतनु जी। मेरा जो पृष्ठभूमि है किसान की, मेरे पिताजी ताऊ जी सब खेती करते हैं और हम लोग छह भाई हैं। उन छह भाइयों में मैं दूसरे नंबर का हूँ। और हमारी जो पढ़ाई है, प्राइमरी पढ़ाई हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मलिपुर में हुई है और उसमें हम धमोला नदी में से निकल करके जाते हैं। और मैं आपको बड़े उससे कहता हूँ कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक हमने कभी जूते नहीं पहने, क्योंकि आते भी और जाते भी उस धमोले में उनको निकल के जाना पड़ता था, पगडंडी का रास्ता था। उसके बाद 8वीं पास करने के बाद हमारे पिताजी ने, हमारे पिताजी ताऊ जी बिल्कुल अनपढ़ थे, हमारे परिवार में कोई भी माताजी कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हम अपने पिताजी का ताऊ जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने हमको सहारनपुर में पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का BEMS का 3 साल का कोर्स किया, 1 साल उसमें MD किया। इसको करने के बाद 92 में गांव में मैं वापिस आया पढ़ाई पूरी करने के बाद। चूंकि किसान थे तो किसान के स्कूल की जब छुट्टियां चल जाती तो हम अपने गाय चुराने भी जाते थे, अपना खेत में काम तो हम कंटिन्यूस करते ही थे। तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। प्रैक्टिस स्टार्ट के बाद 95 का एक पंचायत का चुनाव आया और उसमें ग्राम वासियों ने कही भाई हम आपको ग्राम प्रधान बनाए। महिला सीट थी, हमने अपने भाभी जी, जो हमारी भाभी जी ग्रेजुएट थी उस टाइम, हमारे भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस करते थे, तो हमने उनका प्रचार करवा दिया और वो प्रधान चुनी गई। इस क्रम में जब चूंकि सब लोगों का आना जाना, उससे पहले हम ABCD कुछ भी नहीं जानते थे, तो हमारे बीच में एक इंद्रपाल सिंह तोमर किसान सहायक एक पोस्ट है हमारी कृषि विभाग में, वो आए और उन्होंने आने के बाद कहा भाई आप जो ये गन्ना गेहूं धान की खेती करते हैं इसे आप कृषि विविधीकरण की तरफ लेकर जाएगा। तो हम लोगों ने उनकी, वो इतने अच्छे थे, हमारे खेत पे जाना समय समय पे पूरा कुछ बना। सबसे पहले मैंने 2 बीघा फ्रेंच बीन की खेती से स्टार्ट किया, हमने गांव के बराबर में था, जब हम उसमें निराई गुराई काम करते थे तो लोग बाग मजाक बनाते थे, अरे प्रधान जी आप लोग ये क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसमें कभी भी कोई हिमाकत इंसल्ट महसूस नहीं किया। उसके बाद फिर उसमें कीट पतंगों की समस्या आई तो वो लोग हमको कृषि विभाग में लेकर के गए, उद्यान विभाग में हम लोग गए, फिर हमारा संपर्क आया कृषि विज्ञान केंद्र से, जो कृषि विज्ञान केंद्र जो एक तकनीकी का केंद्र है, और वहां से जो हमारे KVK की टीम थी, डॉक्टर RN यादव जी, डॉक्टर PK सिंह जी, डॉक्टर AK मिश्रा जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, वो बहुत ही ज्यादा उन लोगों का इतना लगाव था, जब भी हम कोई भी बात करते थे तो हमको तुरंत उसमें सबमिट करते थे, गांव में आते थे। उसी क्रम में हम लोगों ने कृषि विभाग में गोष्ठी के माध्यम से, किसान मेले के माध्यम से, उद्यान विभाग में, फिर गन्ना विभाग में, मत्स्य विभाग में, सब विभागों से हमारा आना जाना हुआ, संपर्क हुआ। वहां के कर्मचारी, वहां के अधिकारी हमारे गांव में आने लगे। फिर एक योजना चली भारत उत्तर प्रदेश सरकार की, किसान मित्र योजना, तो मुझे उसमें किसान मित्र बनाया गया। और उसी दौरान 1995 से लेकर के 2000 तक सहारनपुर में एक कृषि विविधीकरण की एक परियोजना चली। हालांकि जो हमारा ब्लॉक था बलियाखेड़ी, वो उस योजना में सम्मिलित नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग उनके मेलों में, गोष्ठी में जाते रहे और उस चीज को हम फॉलो करते रहे। फिर हमने अपने खेत को इस तरह से बांटा, गन्ना भी हो, गेहूं भी हो, धान भी हो, बागवानी भी हो, और सब्जी की खेती भी हो, पशुपालन भी हो, फिशरीज भी हो। तो हम लोगों ने उसको फिर इस तरीके से फैला ताकि किसान की रोज आमदनी होती रहे। हम लोगों ने अपने प्लेन खेत में मात्र 1 फीट पानी में सिंघाड़ा की खेती हम लोग करते हैं, जो लोग बाग एक वास्तव में आश्चर्य से कम नहीं समझते। और जब हम लोग सिंघाड़े की खेती करते हैं तो लोग बाग देखने आते थे। हमारा पूरा मॉडल को लोगों ने किया। इसके अंदर भी हम लोगों ने रासायनिक खाद की का प्रयोग कम हो, फसल अवशेष प्रबंधन हम लोगों ने अपनाया, जो जैव उर्वरक है हमारे उसको अपनाया, फसल चक्र अपनाया, दलहन तिलहन का समावेश किया, और उसमें जितने भी हमारे, चाहे ट्राइकोडर्मा हो, चाहे ब्यूवेरिया बेसियाना हो, सुडोमोनास हो, वो तमाम तरह के जो हम जैव उर्वरक है, उन सबको हमने अपनाया। हम लोगों ने अपने खेत में फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल किया, ट्राइकोग्रामा कार्ड का इस्तेमाल किया, और फेरोमेन ट्रैप का इस्तेमाल किया। और उन तमाम चीजों को अपनाने के बाद जो हमारा उत्पादन गुणवत्ता युक्त हुआ, उसके बाद जो हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ी है, आज जब हम जैविक आहार की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, उसके पीछे का जो मूल आधार है वो जीवांश कार्बन है। यदि हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारे जो हमें रासायनिक खादों के ऊपर उपलब्धता हमारी कम होगी, और हमारा जो उत्पादन होगा वो गुणवत्ता युक्त होगा, उसमें कीट पतंगों की समस्या कम आएगी। तो उस तमाम उसको हम लोग सीजनली, जैसे सर्दी में मशरूम की खेती भी कर लेते हैं हम, थोड़ा सा जब हमारा देखते हैं भाई मार्केट वैल्यू कम है तो हम वैल्यू एडिशन भी कर लेते हैं। तो उस तमाम चीजों को अपना करके हमने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है जिससे किसान की रोज आमदनी, चाहे वो मशरूम के माध्यम से, चाहे सब्जी के माध्यम से, चाहे फ्लोरिकल्चर के माध्यम से, चाहे पशुपालन के माध्यम से, तो उस चीज को लग करके। और जैसा आपने कहा, उसके बाद लोग मजाक भी बनाते हैं, हम केंचुआ पालन भी करते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आपसे बड़ा इंटरेस्ट है। पद्मश्री मिलने के बाद हमारे एक अधिकारी दिल्ली से गांव में मिलने के लिए आए। जब वो गांव में घुस रहे तो उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, भाई हमें सेठ पालने के यहाँ जाना है। तो वो बताते हैं कि पीछे से एक आवाज आई और एक बुजुर्ग ने कहा, किसके यहाँ जाना? कि सेठ पाल के यहाँ। अरे वो तो कहीं गोबर में केंचुए ढूंढ रहा होगा। तो इस तरीके से, चूंकि हम केंचुआ पालन करते हैं, तो लोग बाग हमारा उपहास भी करते थे। अभी भी लोग बाग तरह तरह की बात, लेकिन हमने कभी उनका परवाह नहीं किया, और हमने अपने मिशन को। और सबसे बड़ी, जब इसी क्रम में मुझे, मैं आपसे बताऊं, 96 में हमने सबसे पहले जीरो टिलेज का हमने धान के खेत में इस्तेमाल किया। और जीरो टिलेज में जब हमने सड़क के किनारे खेत था, जब धान का ठूट एक एक 1.5 फीट का हो और उसमें हमने गेहूं की बिजाई कर दी, तो घर वालों ने भी विरोध किया, भाई तुम क्या कर रहे हो। और जो लोग आने जाने वाले थे समय के किनारे, वो कहते थे भाई ये तो बेवकूफ हो गए, इसके ये इसमें खाएंगे गेहूं। लेकिन उसके बाद जर्मिनेशन हुआ, पहला पलेवा लगाया, यूजा की टॉप ड्रेसिंग की, खरपतवार की दवाई डालने के बाद, जब सेकंड पानी देने के बाद भी, तो उस टाइम हमारा गेहूं का उत्पादन 0 टिलेज से 4.5 क्विंटल प्रति बीघा आया है, जो उस टाइम का एक रिकॉर्ड उत्पादन है। और उसमें मुझे हमारे जनपद डीएम साहब ने कृषि विभाग की तरफ से क्रॉप कटिंग के बाद मुझे किसान सम्मान का एक प्रशस्ति पत्र दिया था, 6,000 रुपये नगद मुझे इनाम दिए थे। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले गए, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और मुझे जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, गन्ना विभाग के माध्यम से हो, या उद्यान विभाग के माध्यम से हो, तमाम पुरस्कार हम लोगों को मिले हैं। और गन्ने के साथ हम लोगों ने सह फसली ट्रेंच मेथड को सबसे पहले हमने अपनाया। मैं आपसे बताऊं, जब हम लोगों ने ट्रेंच से सिंगल बर्ड से हम लोगों ने गन्ने की बिजाई की, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट थी, और सिंगल बर्ड से आंख की दूरी 1 से 1.5 फीट थी, तो तब भी हमें लोगों ने देखो रहे हमें, क्यों खेत खराब कर रहे हैं आप, इन्हें मतलब। लेकिन जहां लोग 5 से 6 क्विंटल बीज प्रति बीघा इस्तेमाल करते हैं, वहां हम लोगों ने 80 से 85 केजी सीड का इस्तेमाल करके, और जो उत्पादन बढ़ाया है हमने उसके ट्रेंच की जो पैदावार है वो 100 क्विंटल प्लस लियर। उसके बाद में चाहे हमने उसके बीच में हम लोगों ने चाहे सरसों की खेती, आलू की खेती, प्याज की खेती, लहसुन की खेती, चाहे सब्जी की खेती, खीरा, ककड़ी, लौकी, टिंडा, और इन तमाम चीजों को हम लोगों ने अपना करके अपना जहाँ फसल चक्र भी अपनाया गया है, जीवांश कार्बन की मात्रा भी बढ़ी है, दलहन तिलहन का समावेश भी हुआ है, तो उस सब को लेकर के हमने, इसके बाद मुझे 2010 में प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड आईसीआर ने दिया, 2012 में हमें इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड आईआरआई नई दिल्ली में दिया, उसके बाद 2015 में जगजीवन राम कृषक अभिनव पुरस्कार और 50,000 रुपये की राशि की उस वक्त वो दिया गया, और 2022 में ही पद्मश्री अनाउंस के बाद एनजी रंगा डाइवर्सिफाइड फार्मर अवार्ड वो पहले भर दिया था हम लोगों ने, उससे भी हमें भारत सरकार ने आईसीआर ने सम्मानित किया है। तो मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने किसान दादाजी को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम लोगों ने एक नीरस व्यवसाय जिससे लोग भागते हैं, बच्चा किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता, एक सच्चाई और भी है, यदि 50 बीघा किसान का बच्चा खेती करने लग जाए तो हमारे समाज में उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते लोग बाग, उससे पहले एक चपरासी लग जाए उसकी शादी ज्यादा करने लगते हैं। तो ये एक जो दुविधा है, ये एक गलत सोच है, इसको भी हमें बदलने की जरूरत है। और किसान कृषि इतना बड़ा है जिसमें हजारों स्किल हो सकते हैं, हजारों प्रयोग हो सकते हैं, उसमें असीम संभावनाएं हैं। और जब तक मेरे युवा, पढ़े लिखे युवा हमारे, पोस्ट ग्रेजुएट चाहे हॉर्टिकल्चर से चाहे एक्सटेंशन से, वो पढ़ करके कृषि विभाग में आएंगे, तो तब तक एक नई क्रांति लाने की जरूरत है, क्योंकि कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है। और आज के परिवेश में गुणवत्तायुक्त भोजन हर मनुष्य की चाहत है और जरूरत है। तो मैं इसी उसके साथ में, चूंकि कृषि एक बहुत पुण्य व्यवसाय है, इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, बीज लगेगा।
1: ये जो आपने कहा कि कृषि एक बहुत पुण्य व्यवसाय है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आजकल जमाना ही फास्ट फूड का है, लोग भोजन भी शॉर्टकट में करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो शॉर्टकट मानसिकता है, शॉर्टकट में हमको सक्सेस मिल जाए, शॉर्टकट में हमें रिद्धि सिद्धि मिल जाए, शॉर्टकट में हमें सफलता मिल जाए, शॉर्टकट में हम परीक्षा से पास हो जाए, शॉर्टकट में हमें नौकरी मिल जाए, शॉर्टकट हर चीज का हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि कृषि का तो कोई शॉर्टकट है नहीं, लेकिन कृषि में आपने ये भी बताया कि बहुत उन्नत व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, बहुत इनोवेशन किया जा सकता है, बहुत नवीनता लाई जा सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है, क्या क्या कारण है कि देश का किसान जो है आपके जैसा नहीं सोच पा रहा? कौन से कारणों की वजह से देश का किसान जो है आज भी वो पुराने तकनीकों से काम कर रहा है या जूझ रहा है सफलता पाने में, लाभ पाने में? क्यों बहुत गिने चुने, मतलब मैं समझता हूँ मैं उंगलियों में, मुट्ठी भर भी नहीं कह सकेंगे, उंगलियों के रेखाओं में गिना जा सकता है, इतने ही कम हैं ऐसे किसान जो कि रिस्क लेना जानते हैं, कुछ नया करना जानते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
0: देखिए अंतुल जी, बिना रिस्क के कोई भी व्यवसाय हो, चाहे चाहे कृषि का है, वो नहीं हो सकता। और जब हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान है, किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को अपना करके हम ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता युक्त उत्पादन कर सकते हैं, तो उसी को हम लोगों ने फॉलो किया है। जब तक उन तमाम तकनीकों को अपना करके, छोटे छोटे प्रयोग करके, उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज को ला करके, समय का बहुत ज्यादा, कृषि में समय का बहुत ज्यादा महत्व है, उसको अपना करके, मिट्टी की जांच करा करके, और जब तक, मेरा ये विश्वास है, हमारा किसान जब तक कृषि विविधीकरण को नहीं अपनाएगा, तब तक उनका भला होने वाला नहीं। चूंकि हम गन्ना गेहूं धान ये फसल करते हैं, सरकार से MSP की मांग हम करते हैं, हमारा कहना ये है, जिस दिन मेरे देश का किसान कृषि विविधीकरण को अपनाएगा, तो वो अपना उत्पाद MSP पर नहीं, हर व्यक्ति अपने माल को MRP में बेचता है। तो हम अपने माल को MRP पे किस तरह से बेच पाए, इसके बाद में बैठ कर उसे चिंतन करना होगा,
1: ये
0: बात
1: आपने एक
0: करना।
1: बहुत अच्छी बात बताई है सेठपाल जी, कि हर किसान जब तक कृषि विविधीकरण नहीं समझ लेता और उसको अपनाता नहीं है, तब तक सफलता उससे दूर है। हमारे श्रोता साथियों में कई ऐसे किसान भी हैं, कई ऐसे हैं जो कृषि से थोड़े दूर हैं। उनके सुविधा के लिए अगर आप इसको बहुत सहज भाषा में समझाना चाहें कि कृषि विविधता क्या है या कृषि विविधीकरण क्या है, तो उसका हम बहुत बहुत आभारी होंगे।
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया है। कृषि विविधीकरण, अगर मेरे पास 10 बीघा जमीन है, तो मुझे उस 10 बीघा जमीन को बैठ करके मुझे उसके ऊपर चर्चा करनी है। मेरे खेत में गन्ना भी हो, गेहूं भी हो, धान भी हो, दलहन तिलहन भी हो, सब्जी भी हो, एक कोने में हल्दी भी हो, मिर्च भी हो, लहसुन भी हो, प्याज भी हो, आलू भी हो, सब कुछ। हम तो एक बैठ करके, हम लोगों ने, मेरा अगर गेहूं कटेगा, गेहूं के साथ में मैं सरसों भी काटूंगा, उसके बाद में ये फसल लगाऊंगा, इसके बीच में मुझे ये फसल लेनी है, तो उसको बैठ करके हम लोगों ने एक अपने पहले से रणनीति तैयार करनी हो। और जब देखिए, मार्केट में मांग और आपूर्ति का नियम, हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की सत्ता का रास्ता किसान के खेत और खलियानों से होकर के गुजरता है। हमारा एक और रास्ता है, हमारा किसान को अपनी दूरदृष्टिता अब उस बात पर रखनी चाहिए, बाजार के ऊपर किस चीज की मांग है, किस चीज की आपूर्ति, और मांग और आपूर्ति का नियम है। तो जिस दिन हमारा किसान ये ठान लेगा अपने मन में कि मुझे ये संतुलन बनाना है, उस दिन हम सबसे श्रेष्ठ किसान होंगे, हमारी आमदनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपसे बताऊं, जब राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा हमें अवार्ड देने के बाद, अशोका हॉल की गैलरी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमसे मिलने के लिए आए, तो मैंने उनसे कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने आपके विजन को आगे बढ़ाया है, आपकी जो सोच है वह किसान की आमदनी कैसे बढ़े, तो उन्होंने मुझसे पलट करके कहा था, नहीं सेठपाल जी, आप तो छोटे किसानों की चिंता करने वाले इंसान हैं। सर जब मुझे समझ में आया है कि वास्तव में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इस मॉडल को इतना ज्यादा प्रधानमंत्री जी गहराई से लेकर के जाएंगे, तो वास्तव में मैं समझता हूँ हमारा छोटे से छोटा किसान इस मॉडल को अपना करके तो निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छी आमदनी उसमें कर सकते हैं और देश के और राष्ट्र निर्माण में हम महान योगदान दे सकते।
1: ये जो आपने बात कही कि देश के और राष्ट्र के निर्माण में हम छोटे से छोटा भी हो लेकिन योगदान हमें जरूर देना चाहिए, चाहे मैं किसान हूँ, चाहे मैं रिक्शा चलाता हूँ, चाहे मैं आरजे हूँ, या चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं घर में गृहिणी हूँ, हम में से हर कोई देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में आपकी मान्यता के हिसाब से आज वो बच्चे जो चाहे हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं या कृषि विज्ञान की तरफ पढ़ रहे हैं, या ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कृषि का संस्कार है किसी न किसी रूप में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी किसी न किसी तरीके से कृषि के साथ जुड़ करके देश का और कृषि का मान बढ़ा सकते हैं?
0: देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मेरे युवा साथी हैं, किसान के बेटे हैं, जो एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर से तमाम चीजों से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, वही तो किसान की रीढ़ है। जब वो बच्चे सरकारी नौकरी की भागम भाग को छोड़ करके उन तमाम टेक्नोलॉजी को, उस ज्ञान को जब कृषि के क्षेत्र में लेकर के जाएंगे गहनता के साथ में, जो वो आइडियल बनेंगे और वो तमाम तरह के स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तमाम तरह की वैल्यू एडिशन करेंगे, तो वो निश्चित रूप से हम रोजगार देने वाले बनेंगे, हम रोजगार लेने वाले नहीं बनेंगे। और कृषि में इतनी अपार संभावनाएं हैं, मैंने पहले भी कहा है, वो कभी कम नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा। उसी से हमारे कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आए और लोगों
1: ये
0: के
1: जो
0: बच्चों का
1: ये
0: जीवन।
1: आपने जो बताया कि हम रोजगार देने वाले बने ना कि लेने वाले, ये एक बहुत बड़ा मंत्र बन सकता है किसी भी युवा साथी के लिए जो सुन रहा है। लेकिन आपने ही अपने अनुभव में पहले भी कहा कि कृषि जो है ना वो सरलता से करने वाला कार्य नहीं है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है। और आज का जो समाज है उसको अगर आप देखें तो लोगों को आराम करना कुछ ज्यादा ही भाने लगा है, फोन पे ही लगे रहना, सोशल मीडिया पे लगे रहना, तो एक ऐसा आराम पसंद जिंदगी लुभाने लगा है आज की युवा पीढ़ी को कि खेत में उतर के धूप छांव से गुजरते हुए मेहनत करना शायद थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या किया जा सकता है ऐसे में?
0: देखिएगा, यदि हम मेहनत की बात करते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, या हम दुकानदार के, वो दुकानदार भी हमारा सुबह 9 बजे से खोल करके रात को 10 बजे तक दुकान खोलता है, पूरा समय अपने उस पर देता है। किसान का जो समय है उसके पास में ना दिन है ना रात। एक टाइम पे वो जून की गर्मी के में 12 बजे भी खेत में होता है, और जब जनवरी और दिसंबर की कड़ाके की ठंड, रात को 12 बजे तक भी उसको खेत में, तो उसके पैर में चप्पल भी नहीं है, उसके सर पर कपड़ा भी नहीं है, वो पानी में भी घुस रहा है, वो सब कुछ करता है, लेकिन वो एक जुनून होता है। और जुनून जब आदमी के मन में आता है तो किसी भी कार्य को पर गुजरता है। यही जुनून किसान के अंदर जब आता है तो वो उस सब को भूल करके, उस सब ऐसो आराम को भूल करके, वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत है। आज के समय में मजदूर की समस्या है, हमारे खुद के बेटे, किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो उसमें तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन लगानी पड़ेगी, जुनून बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको एक कारगर रूप दे सकते हैं।
1: मतलब चाहे कोई भी कार्य हो, भले किसानी हो या कुछ भी हो, उसमें जुनून तो जरूर चाहिए। जुनून और हौसला अगर नहीं है तो कोई भी कार्य में हम सक्षम या सफल नहीं हो सकते। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने बताया कि किसान का बेटा या किसान के बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही किसान का रीढ़ है, क्योंकि वो उस नवीनता को कृषि में ला सकते हैं। मैं तो समझता हूँ सिर्फ किसान का बेटा नहीं, बेटी भी ये कार्य कर सकती है। और शायद कहीं ना कहीं ये जो हमारे समाज की सोच है कि केवल जो है एक प्रकार का वर्ग ही हमारे जीवन को आगे लेके जाएगा, तो तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, वो घर को भी संभालती हैं। और अगर एक जमीन का टुकड़ा एक बेटी को दिया जाए और एक जमीन का टुकड़ा एक बेटे को दिया जाए और दोनों में एक हेल्दी कंपटीशन हो कि देखते हैं तुम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा करता है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत हेल्दी कंपटीशन में बहुत अच्छा वातावरण डेवलप होगा। और बेटियों को भी जरूरत होगी इस प्रकार के एक रुझान की, बेटियों को भी आवश्यकता होगी इस प्रकार के एक शिक्षा दीक्षा की, जहां पर उन्हें भी एक मौका मिले कि कृषि में वो क्या कर सकती हैं। क्योंकि देखा जाए धरती भी माँ है, तो कहीं ना कहीं माँ बेटियों बहनों को भी अगर मौका मिले तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा कुछ कमाल कर सकती है। आपका क्या कहना है इस मामले में?
0: देखिए, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। वो बेटी वास्तव में उस बेटे से ज्यादा संस्कारित है। और मैं आपसे बताता हूँ, जितनी भी हमारे यहाँ खेतों में काम करती हैं वो मैक्सिमम बेटियां और महिला ही है। पुरुष काम करता है, बेटियां भवे हमारी जो है महिलाएं वो ज्यादा काम करती हैं। तो इसमें कोई बिल्कुल भी दो राय नहीं है। बेटियां भी आज किसी मोहताज नहीं है, वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के खेत में अपने को संभालती है, काम करती है। तो वो तो हमारे भारत की एक रीढ़ है, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो बेटियां भी हमारे लिए उतनी है जितना बेटा, और वो भी कृषि क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं
1: तो
0: है।
1: मैं समझता हूँ सेठपाल जी, आपने जिस प्रकार से कृषि में विविधीकरण किया और कई किसानों के जीवन को बदलने का आपने एक बहुत सुंदर रास्ता शुरू किया है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप ही वो एक यशस्वी किसान हो सकते हैं जो कि महिलाओं को उनका हक धरती पे, जमीनी हक जो है, या कृषि से रिलेटेड जो उनको ज्ञान चाहिए या मोटिवेशन चाहिए, वो दिलाने में आप एक अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।
0: देखिए, इसके लिए जितना भी प्रयास बहन बेटियों को ज्यादा से ज्यादा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो और कृषि क्षेत्र में, चूंकि कृषि एक जीवन का आधार है, कृषि एक स्वास्थ्य का आधार है। कृषि, जैसे मैंने पहले कहा है, हमारे समस्त ब्रह्मांड को जोड़ने वाला, उसको एक ऊंचा नया आयाम देने वाला एक पेशा है। तो उसमें जो महिलाओं को है, यदि कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ चढ़ करके उन अपनी बहन बेटियों के लिए काम करेंगे और उनको एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरणा।
1: सेठपाल जी, आपकी इस बात का और आपके इस वचन का मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों पे बहुत बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि हमारे कई श्रोता साथी ऐसे हैं जो कि सुन रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी थोड़ा सा किसानी में कुछ जानता, कुछ कर पाता या कर पाती। और मैं समझता हूँ सेठपाल जी का ये वचन कि जो भी महिला बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं कृषि के क्षेत्र में, उन्हें वो बहुत सहयोग देंगे। तो मैं समझता हूँ साथियों, आपका ये मौका है, सोचिए अगर आप कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसा अच्छा मेंटर है जो कि आपको मदद कर सकते हैं। सेठपाल जी, उत्तर प्रदेश की भूमि तो बहुत मैं कहूंगा सौभाग्यशाली भूमि है, क्योंकि गंगा यमुना का उसमें बहुत सारा वरदान है और भी कई चीजें हैं जहां पर आप शायद कृषि के विविधीकरण को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी जगह है जैसे राजस्थान या गुजरात के, कई ऐसी जगह है जहाँ विविधीकरण करना थोड़ा इतना सरल नहीं होगा। जैसे हम जहाँ रहते हैं माउंट आबू में, हमारे आसपास में किसानों के लिए वही भौगोलिक परिस्थितियां शायद नहीं होंगी जो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में भी अगर कोई किसान विविधीकरण करना चाहे तो कौन सी चीजों को उसको ख्याल में रखना चाहिए?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। गंगा यमुना का जो दुआब है हमारा, हम लोग गंगा यमुना के दुआब में रहते हैं। वास्तव में यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी है और हम सब फसलें यहाँ कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने राजस्थान के बारे में, माउंट आबू के, गुजरात के, या कई चीजों के, अभी हम लोग वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं और उसमें मोटा अनाज, श्री अन्न का जिसमें हमें संज्ञा दी गई है, और ये जो मोटे अनाज है ये हमारे पानी की कम जरूरत है, उनको उनको सिंचाई की कम जरूरत है, खाद की कम जरूरत है। वो हमारे पौराणिक इतिहास में जो विलुप्त प्रजातियां होने की कगार पे थी, उन सबको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके अंदर पोषकता ज्यादा है, तो हम उन तमाम चीजों को श्री अन्न के रूप में मोटे अनाजों को क्षेत्र वाइज उगा करके नई नई प्रजातियों को मतलब इकट्ठा करके हम उसके चीज में हम अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में हम विविधीकरण को अपना सकते हैं। क्योंकि अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रूफ है, किसी को पानी ज्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए। तो जो हमारे मिलेट्स हैं, श्रीअन्न जो मोटे अनाज हैं, उनमें हम एक बहुत अच्छा उत्पादन करके, गुणवत्ता युक्त उत्पादन करके, और जो सरकार की प्राकृतिक खेती की जो धारणा है उसको हम मूर्त रूप से हम साक्षात रूप में उसको कर सकते हैं।
1: तो साथियों, आपने सुना, सेठपाल जी ने एक बहुत अच्छा हमें रास्ता बताया कि अगर आप सोच रहे हैं कि विविधीकरण कैसे की जाए, तो श्री अन्न या मोटा अन्न उगा करके भी आप विविधीकरण कर सकते हैं, जिसमें मेहनत उतना नहीं लगता, पानी उतना नहीं लगता, उपज बहुत अच्छा आता है, और सबसे बड़ी बात, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आज आप मार्केट में जाएं तो चावल, दाल, गेहूं, इनसे भी ज्यादा दाम श्री अन्न का होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये चीज अब पता चल चुका है कि मिलेट्स खा करके आप आपके सेहत पर ज्यादा नियंत्रण कर सकते हैं। तो भारत की ये देन है जो भारत के पास ही है और आपके हाथ में ही है। आप मिलेट्स खाना शुरू करेंगे तो हमारे किसान भाई बहन मिलेट्स उगाना शुरू करेंगे, और जब मिलेट्स को उगाना वो शुरू करेंगे तो धरती माँ के ऊपर जो ये केवल गेहूं और धान को उगाने का जो बोझ है वो भी बहुत हल्का होता जाएगा। तो श्री अन्न एक बहुत अच्छा रास्ता है। अगला सवाल सेठपाल जी आपके साथ, जो आपने अभी बताया कि पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने का एक सूत्र है कृषि, तो आपकी कृषि ने आपको पूरे देश भर में भ्रमण करने का भी अवसर दिया, आप देश के जगह जगह पे गए हैं। कौन सी एक बात आपको ऐसी दिखती है पूरे भारतवर्ष में जो भारत को भारत बनाती है? कोई एक खास बात जो आपने हर जगह एक एक जैसी ही देखी, वो कौन सी एक बात है?
0: देखिए, किसानों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, किसान का प्यार और उसका श्रम एक ऐसा वो है जो आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे, जब किसान किसान से जाकर के मिलता है तो वास्तव में उसके प्रति जो उसका प्रेम है, जो उसका कर्तव्य है, उसका जो बोध होता है, वो भारत को पूरे भारत से एक जोड़ता है। तो एक बहुत किसान का जो आपसी सामंजस्य है, उसका जो आपस का प्यार है, उसका जो काम करने का तरीका है, एक दूसरे की कल्चर को जानने का मौका है, वो सबको पूरे भारत को किसान के माध्यम से जोड़ता है।
1: बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि किसान का किसान के प्रति जो भावना है, चाहे वो प्रेम की हो, सम्मान का हो, या उसके दर्द को समझने की जो भावना है, वो किसान को जोड़ता है, और ना केवल किसान को लेकिन पूरे भारत को भी जोड़ता है। सेठपाल जी, एक चीज मुझे जानना था, जब आप रिस्क लेते हैं, और जरूरी नहीं कि हर बीज से फसल आए ही, तो बीज डालना किसान का काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा का या प्रकृति का या ईश्वर का या जो भी आप नाम दे उस शक्ति का, उसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। आप मानते हैं इस बात को?
0: देखिएगा, ये तो कटु सत्य है। किसान का काम उस भूमि रूपी माता का सीना चीर करके उसमें बीज रोपण का है, उसके बाद तो सब कुछ परमात्मा का है। देखिए, फसल भी किसान के साथ में बातें करती है। एक हम कहते हैं शाश्वत योगी खेती, जिसको जब हम खेत के ऊपर जाते हैं, जरूरी नहीं है जिस बीज को डालेंगे उसमें अंकुरण फूटेंगे, वो हमें पैदावार देंगे, क्योंकि किसान की फसल खुले आसमान में है, गर्मी सर्दी बरसात ओले भी पड़ेंगे, जंगली जानवर भी उसको खाएंगे, लेकिन उन सब के बाद भी चोर भी चोरी करेगा, लेकिन एक कहावत है कि यदि उसमें से गठरी बांध करके ले जाएगा तो केवल किसान ही लेकर के जाएगा। तो ये सब उस परमपिता परमात्मा का ही वो है, वही शक्ति देता है। जब किसान खेत पे जाता है मेड़ पे, तो उसकी फसल लहराती है, वो कहती है कि मेरा मालिक आ गया है, वो बताती है किस तरह से हमें किस चीज की जरूरत है, मैं बीमार हूं, मुझे पानी की जरूरत है, तो वो सब कुछ उस परमात्मा का एक बहुत बड़ा रोल है, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं।
1: ये जो आप अभी अपना अनुभव सुना रहे थे, इसमें आपने शाश्वत योगी खेती का भी नाम लिया, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसके ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा भी चलाया जा रहा है। एक बहुत अच्छा अभियान है जिसमें किसान जो है यौगिक कृषि के माध्यम से, शाश्वत तरीकों के माध्यम से, योग मतलब परमात्मा के साथ अपने मन के तार को जोड़ करके, शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति के द्वारा योग के प्रयोग से कृषि में उन्नति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी इसका कुछ उपयोग किया है या कुछ प्रयोग किया है इसमें?
0: देखिए, इसका मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ और वो एक शाश्वत योगी खेती जो है परमात्मा के आधार पे, वो एक बहुत बड़ी एक अदृश्य शक्ति है जो हमेशा नुकसान से निपटने की शक्ति देती है। हर तरह से वो एक साहस दिलाती है और एक मन में जुनून भी पैदा करती है। तो उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, उसके ऊपर सब कुछ है। वो बहुत बहुत ही ज्यादा कारगर है।
1: आप में बहुत उमंग उत्साह है सेठ पाल जी, आपसे बात करते हुए ये महसूस होता है कि आप बहुत खुश मिजाज भी रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसानी में हैं और बहुत परेशान हैं, लेकिन आपकी फसल में या किसानी की ही किसी एक बात ने आपके उस चिंता को दूर कर दिया हो?
0: देखिए, जब इंसान के साथ में हमेशा कठिनाई भी आती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, नफा नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसान खेत पर जाता है, अपने श्रम को करता है, तो वहां जाकर के वो चाहे उसकी फसल खराब हो रही है, क्योंकि किसान सबसे संतोषी व्यक्ति है। पिछले सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको भूल करके नहीं, तो उसको शक्ति परमात्मा देता है। तो जब अपने खेत में जाता है, अपनी फसल को देखता है, तो सब कुछ भूल जाते हैं।
1: सेठपाल जी, आप अगर पूरे भारत को अगर कुछ उनको एक मैसेज देना चाहते हैं या एक सुझाव देना चाहते हैं या एक प्रेरणा देना चाहते हैं तो वो क्या होगा?
0: देखिए, मैं तो एक किसान हूँ और किसान के माध्यम से मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ। किसान का जो पेशा है वो सबसे पुण्य पेशा है, उसमें कोई लोभ लालच नहीं है। उसमें जो अपने मनोभाव से वो पैदा करता है, गुणवत्ता युक्त पैदा करता है, उसको हमारा पूरा मानव जीवन, पशु, सब लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो उससे जो संतुष्टि मिलती है, जो अन्न उपजा करके, सब्जी उत्पादन करके, जो किसान पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम मैं नहीं समझता, कोई दूसरा पुण्य का काम है।
1: तो साथियों, आपने सुना सेठपाल जी ने एक सुंदर सा छोटा सा मैसेज दिया कि कृषि जैसा पुण्य पेशा दूसरा कोई नहीं, और कृषि के द्वारा जब संतुष्टता के आधार पर, लोभ लालच से परे होकर के किसान जब अन्न उगाता है, उस अन्न को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी तृप्त होता है, धरती माँ भी तृप्त होती है और किसान भी तृप्त होता है। तो लोभ से परे संतुष्टता के साथ, सच्चाई, सफाई, सादगी और सात्विकता के साथ जब हम अपने कार्य को करते हैं तो उस कार्य का हमें भरपूर भरपूर सहयोग प्राप्त होता है, न केवल आसपास से परंतु प्रकृति से भी, परमात्मा से भी हमें उस कार्य के लिए बहुत बल मिलता है। चाहे आप किसान हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में ये सात्विकता जरूर धारण करें। सेठपाल जी, जाते जाते हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में उसका जवाब देना होगा। तो आप तैयार हैं?
0: पूछिए, यदि संभव होगा तो जरूर बताएंगे।
1: जी। तो पहला सवाल, शांति क्या है?
0: अपने मन और चित्त को स्थिर करना और तमाम लोभ लालच को त्याग करके जो संतुष्टि मिलती है वही शांति है, मेरे अपने ख्याल से।
1: बहुत बढ़िया। सेवा क्या है?
0: जब मानवता के प्रति, पशु के पालन के प्रति, पर्यावरण के प्रति, भूमि के प्रति जो समर्पण है वही सेवा है।
1: प्राणी मात्र के लिए जो समर्पण की भावना है वो सेवा है। बहुत सुंदर। खुशी क्या है?
0: जब दूसरे के, मेरी वजह से दूसरे के चेहरे पे प्रसन्नता आती है, तो वही खुशी, आनंद का रूप वही होता
1: बहुत बढ़िया। भारत क्या है?
0: है। भारत विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मौसम, विभिन्न पर्यावरण प्रजातियां सबको मिलकर के जो एक हमारा देश बनाया वही एक भारत है।
1: कृषि क्या है?
0: तमाम तरह की विधाओं को अपने खेत

0: वो हुआ है, लेकिन जितने बड़ा उसमें सबसे जो फेवरेट मेरा वो सिंघाड़ा है।
1: ऐसा
0: सिंघाड़ा जब
1: क्यों?
0: हम उगाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली लोग बाग सिंघाड़े को तालाब में पैदा करते हैं और हम उसको प्लेन खेत में पैदा करते हैं। तालाब में बरसात का गांव का गंदा पानी आता है, उसके कलर उसका गंदा होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। और जो हम खेत में सिंघाड़ा पैदा करते हैं उसमें रोज ट्यूबवेल से ताजा पानी आता है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसका उत्पादन बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो बेल और पत्ते के रूप में जीवांश कार्बन सैकड़ों क्विंटल हमको मिलता है, जो जमीन का भोजन है जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है, तो वो सबसे सबसे प्यारा मेरा फेवरेट।
1: बहुत बढ़िया। 2023-24 के लिए आपने कौन सा नया काम करने का सोचा है?
0: हम कृषि में इतने ज्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते रहते हैं। और इस बार मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, आप लोग आइए देखिए, हम भी कुछ नया करेंगे। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि
1: तो
0: हम
1: आप
0: लोगों में
1: हमको
0: कुछ
1: सरप्राइज देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, तो चलो ठीक है, आपके सरप्राइज को हम अखबारों में पढ़ेंगे, सुर्खियों में देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ भी नया करेंगे वो पूरे देश तक पहुंचेगा जरूर, क्योंकि आप एक यशस्वी भारत के यशस्वी किसान हैं। आखिरी सवाल, सेठपाल जी कौन है?
0: सेठपाल जी तो एक मानव मात्र है, एक साधारण किसान है जो अपने सुबह ही उठते हैं, दिन भर पशु के रूप में, खेतों के रूप में, शाम तक चर करके फिर घर पे सो, फिर सुबह उसी में। तो मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं।
1: सेठपाल जी ने तो कह दिया कि वह एक साधारण किसान है, लेकिन दोस्तों आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, और मैं समझता हूँ हर में से हर एक ने ये समझा कि सेठपाल जी जो है वो किसानों के एक मित्र है। सेठपाल जी जो है यशस्वी भारत के वो यशस्वी बेटे हैं, जिन्होंने भारत माँ के दिल में कई दिलों को जीने का एक जरिया दिया है, कई किसानों को ऐसा रास्ता बताया है जिससे वो अपने जीवन के सभी दुख तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। और कृषि विविधीकरण के एक बहुआयामी, बहुत ही आवश्यक पद्धति के द्वारा उन्होंने न केवल भारत का लेकिन पर्यावरण का भी बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसे यशस्वी भारत के यशस्वी पुत्र सेठपाल जी को आज मैं और आप सुन रहे थे। सेठपाल जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए, हम सबसे बातचीत करने के लिए, और आपके इतने प्यार प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत पूरे धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड से मैंने समझा कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है, हौसला होना बहुत जरूरी है, अपने पे भी विश्वास तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ परमात्मा पर, अपने परिवार पर भी निश्चय होना बहुत जरूरी है। इसी निश्चय के साथ सेठपाल जी ने किसानी में अपना कदम आगे बढ़ाया। और भी किसान थे, लेकिन ये एक ऐसा किसान था जिसने नवीनता को, उन्नतीकरण को कभी भी दूसरा तरीका नहीं समझा, उसे ही पहला तरीका समझा। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कुछ नया करना ही इनके लिए पहला रास्ता था। और इस पहले रास्ते पर चलते हुए सेठपाल जी ने कई बड़े आयाम, कई बड़े नाम अपने नाम पे तो किए ही, लेकिन साथ साथ पूरे किसानों का नाम रोशन किया। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में हम सुन रहे थे सेठपाल सिंह जी को। अगले एपिसोड में हम दोबारा आपके बीच हाजिर होंगे एक और ऐसे नायाब तोहफे के साथ, जिनके जीवन की कहानी से, जिनके परिश्रम से मैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। इस मौके का आप भी इंतजार कीजिएगा, मैं भी इंतजार करूंगा। मिलेंगे एक और एपिसोड में आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
4: ओम शांति.
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
4: थैंक यू सो मच
3: सिस्टर. आज मैं कुछ पढ़ के पहले सुनाना चाहता हूँ.
4: जरूर.
3: लेट योर पास्ट मेक यू इनटू अ बेटर पर्सन, नॉट अ बिटर पर्सन.
4: सो ट्रू.
3: और उसके नीचे एक लाइन ऐड करते हैं. ये तो बहुत बार सुना है लेकिन नीचे की लाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन लेटिंग गो यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम पेन. यू फ्रीइंग योर ओन सेल्फ फ्रॉम पेन बाय लेटिंग गो. एक और पढ़ लू. द मोर एंगर टूवर्ड्स द पास्ट यू कैरी इन योर हार्ट. The more anger towards the past you carry in your heart, the less capable you are of loving in the present.
4: Mantra for life.
3: Mantra for life.
4: Isn't it?
3: Sahi baat hai. Ab hamesha bolte hai, aaj ka mantra, aaj ka, ye to life ka hai.
4: Actually, if you see, most of the times our past makes us a bitter person today.
3: And also we are in pain.
4: Yeah, because we are in pain, that's why it makes us a bitter person. जितने हम दर्द में हैं, उतनी हमारी एनर्जी दर्द वाली कड़वी होती जा रही है ना. क्योंकि पास्ट में अगर मेरे साथ कुछ अनुभव वैसे नहीं हुए और उसको मैंने लेट गो नहीं किया तो आई एम बिकमिंग अ बिटर पर्सन. अब जैसे आपने पिछली बार कहा, लेकिन अगर उन्होंने अगली बार भी ऐसा किया तो, लेकिन वो अगर नहीं सुधरे तो, लेकिन उनके मैनर्स अच्छे नहीं है, इट्स अ फैक्ट, इट्स ओके. लेकिन अगर मैंने वो गुस्सा पकड़ के रखा
3: तो
4: अगली बार तक वो तो बदले नहीं, लेकिन मैं बदल गया,
3: मैं तो बिटर हो गया.
4: इट सेज ना, इफ यू होल्ड द एंगर अबाउट द पास्ट,
3: सो नाउ आई बिकम बिटर, ऑल्सो आई एम इन पेन
4: एंड लेसर लविंग ना.
3: ओह यस,
4: दैट वॉज द लाइन ना, कि अगर आप पुरानी बात के गुस्से को, की नाराजगी को पकड़ के रखते हैं तो आपके प्यार की जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो रही है. तो वो बदले नहीं बदले, वी डोंट नो, बट हम तो बदल गए. इसीलिए टुडे वी सी ना, पहले आई वॉज मोर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, टुडे आई डाउट पीपल. आई वॉज मोर अ लविंग पर्सन, टुडे आई एम अ बिटर पर्सन. क्यों? क्योंकि पास्ट को अभी तक छोड़ा नहीं है. कितनी बड़ी बात है. लेकिन आज क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ा, इतनी बार सुना, सोचा, आज कर देते हैं उसको. करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सोच सोच के, क्योंकि अंदर मन में एक रनिंग कमेंट्री की तरह चलता रहता है. द माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. ये बहुत इम्पोर्टेंट है अवेयर होना कि अंदर कौन सी क्वालिटी चल रही है. क्योंकि मेजोरिटी टाइम्स इफ यू सी कि जो मन में चल रहा है वो पास्ट की बातें हैं, जो बीत गया. बीत गया चाहे कई साल पहले या कुछ क्षण पहले, वो ही मन में चल रहा है. तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि मेजोरिटी समय जो हमारे थॉट्स हैं वो पास्ट के बारे में चल रहे हैं, दूसरी बात हमें ये समझ में आ जाती है कि हमारे थॉट्स से ही हमारा फ्यूचर क्रिएट होने वाला है.
3: क्योंकि कार्मिक अकाउंट एंड प्लस
4: मेरा नेक्स्ट रिस्पॉन्स भी तो मेरी अभी की थॉट के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा ना. तो जो मेरा पास्ट है वो मेरी थॉट्स में चल रहा है, और जैसी मेरी थॉट्स हैं वैसे मेरा फ्यूचर बनने वाला है.
3: मैनिफेस्ट होगी ना थॉट.
4: मैनिफेस्ट होगी थॉट, विच मीन्स मेरा पास्ट ही हर बार मेरा फ्यूचर बन रहा है. इट इज सो इम्पोर्टेंट कि पास्ट की बात को डिलीट करना होगा आज, नहीं तो कई बार हमारा पूरे जीवन की क्वालिटी ही वही बीत जाएगी।
3: फिर हम क्यों नहीं समझते कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है?
4: ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है। एंड ये लाइन इतनी पावरफुल है कि पुरानी बात की नाराजगी पकड़ी रखी, आई बिकम अ लेसर लविंग पर्सन। सपोज मेरे अंदर ये पावर थी, ये क्वालिटी थी प्यार देने की, प्यार करने की, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने की, पर किसी ने मेरे साथ ऐसे किया, कुछ गलत बात की, कुछ गलत व्यवहार किया, आई गॉट हर्ट। इस हर्ट को पकड़ के रखा, मेरी सोच उनके बारे में बदल गई, नेक्स्ट टाइम आपने कहा मेरा व्यवहार भी बदल जाएगा, तो आई बिकेम अ लेसर लविंग पर्सन ना। तो वो नहीं बदले, हम बदल गए, एंड बदल गए उस डायरेक्शन में विच इज नॉट राइट फॉर अस। तो थोड़ी सी अगर मेहनत करें आज अपने साथ, ये सिर्फ बोलने से ही नहीं हो जाएगा, हाँ लेट गो चलो खत्म हुआ, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
3: लेसर लविंग के साथ साथ आई टू बिकम अ पर्सन हु स्टार्ट्स स्लाइटली डिसलाइकिंग द अदर पर्सन। लविंग तो छोड़ दो,
4: yeah.
3: मैं तो और जीरो के भी नीचे आ गया,
4: right. वही लेसर लविंग है ना एक्चुअली।
3: तो बड़ी सॉफ्टली बोल दिया प्यार से इसने, हाँ। तो मैं तो डिसलाइक में आया, स्टार्ट नॉट लाइकिंग दैट पर्सन। नॉट लाइकिंग इज कितना बुरी बात है, नॉट लविंग इज स्टिल ओके, तो जीरो से नीचे आ गया, बॉर्डर से भी नीचे चले गया।
4: मुझे अब वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, लेकिन उसमें
3: और थॉट्स भी उसके साथ साथ चलती है, ये थॉट है और ये मुझे पसंद नहीं आदमी।
4: ओवरऑल आपकी एनर्जी फील्ड भी तो लेसर लविंग होती जाएगी।
3: आपका ऑरा भी गया।
4: और किस लिए? क्योंकि किसी ने ठीक से बात नहीं की थी, किसी ने उल्टा जवाब दे दिया,
3: और गलती उनकी,
4: बात तो उनकी थी, नुकसान हमने अपना कर लिया क्योंकि हमने उस पास्ट के एक्सपीरियंस को लेट को नहीं किया। ये एक शक्ति है जिसको हमें सारा दिन यूज करना, और ये पावर हम सबके पास है। कांस्टेंट वो कमेंट्री जब चलती जाएगी, हमें हर बार स्टॉप करके उसको फुल स्टॉप बोल के उस सोच को बंद करना ही होगा, इवन अगर वो एक फोर्सफुल स्टॉपिंग है।
3: फोर्सफुल स्टॉपिंग को थोड़ा सा आप समझाएंगे?
4: फोर्सफुल स्टॉपिंग मीन्स अगर मेरे अंदर वो कमेंट्री बार बार चल रही है, मैं बार बार मन को अगर सिर्फ कहूँ स्टॉप, स्टॉप, बस हो गई बात, स्टॉप, इवन इफ आई हैव टू से इट 1000
3: टाइम्स। ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलता हूँ स्टॉप इज नॉट अ टॉय।
4: डू यू गिव अप ऑन दैट?
3: नो, जब वो मेरे आईपैड से खेलते हैं तो मैं उनको स्टॉप नॉट अ टॉय,
4: फिर करते
3: फिर नजदीक जाते हैं, नॉट अ टॉय, नॉट अ टॉय, दिस इज नो, दिस इज नानाज, दिस दादाज, दिस लैपटॉप, दिस नॉट अ टॉय,
4: और
3: हजारों बार
4: एंड फाइनली सीख जाएंगे।
3: तो फिर वो दिस नॉट अ टॉय नाना, दिस नॉट अ टॉय दादा, नो दिस नॉट अ टॉय, अभी आपके टॉय भरे पड़े उसमें से खेलो
4: बस।
3: अच्छा, फिर हट जाते।
4: मन एक बच्चा है, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप प्लेइंग विद माई सेल्फ। नहीं कष्ट देना मैंने अपने आप को इतना, नहीं सोचना मैंने बार बार इतना, हो गई बात, खत्म हुई, पूरी हुई।
3: कितना बेटर है देन फीलिंग गिल्टी कि बार बार ना मैं इसको सोचता हूँ, बार बार ना मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल आते, लोग ऐसे बोलते हैं, बार बार ना मेरे मन में बुरे बुरे पुरानी हुई हर्ट आती रहती। अरे उससे अच्छा तो ये स्टॉप,
4: ये सोचना भी तो मेरी पावर को भी डिप्लीट करेगा।
3: हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये कितना बुरा है ये वर्सेस व्हाट यू आर टीचिंग टुडे।
4: स्टॉप मींस अपनी थॉट्स को ब्रेक लगाना ही है,
3: फुल स्टॉप।
4: मेनी टाइम्स वी थिंक दिस इज, ये शक्ति है गाड़ी की, जैसे ब्रेक लगती है। आप देखो गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है, इंजन ऑन है, एक्सेलरेटर पर हमने पैर रखा हुआ है, कंटिन्यूस एनर्जी कंज्यूम हो रही है,
3: इंजन इज रनिंग,
4: ना गाड़ी आगे जा रही है ना गाड़ी पीछे जा रही है, सिर्फ वहीं खड़े हुए चलती जा रही है।
3: इंजन गर्म हो जाता है,
4: यहाँ चलती जा रही है, चलती जा रही है, सोचता ही जा रहा है, सोचता
3: ही, फ्यूल भी जाता है, शक्ति भी जाती है।
4: दैट इज सोल पावर। तो इमीडिएटली पैर कहाँ लगाना पड़ेगा?
3: ब्रेक पे,
4: शिफ्ट द ब्रेक, इवन इफ इट इज फोर्सफुल, स्टॉप, स्टॉप।
3: इंजन स्विच ऑफ नहीं कर सकते?
4: वो तो मेडिटेशन में करेंगे ना, वो अभी वो हम करेंगे ना धीरे धीरे कि कैसे जितना हम माइंड को साइलेंट पिक करते जाएंगे तब तो ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी अभी करनी है। नहीं स्टॉप हो रहा उस समय अपने माइंड को किसी और चीज अच्छी की तरफ लेकर जाए, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा सुने, सोच को बदले, उस सोच को चलने ना दे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी संख्या को तो क्या करते जाए कम कर, नहीं तो बैठे बैठे बैठे बैठे इतना घंटे चल गए।
3: उसको सत्ता ही नहीं देना है, तो उसको पावर ही नहीं देना है,
4: उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं देना है। उसको खत्म करना है। एंड बार बार अगर हम लेट गो को एक मंत्र की तरह भी रिपीट करेंगे ना, ये भी तो थॉट है ना, आई एम गोइंग टू लेट गो, लेट गो, ये भी तो हम माइंड को क्या कर रहे हैं,
3: बोल सकते हैं
4: लेट गो,
3: नाइस मंत्र,
4: रिलीज, लेट इट गो,
3: लेट गो,
4: इस बात को जाने दो। हम मन को सिखा रहे हैं, वो मानेगा। ये देखो, ये जो कॉन्वर्सेशन चलती है ना अंदर, ये एक ऑटोमेटिक मोड में चल रही है, हम कॉन्शियसली क्रिएट नहीं कर रहे, वो क्रिएट क्योंकि स्टोर्ड है, वो पास्ट मेमोरी से चल रही है। प्रेजेंट में हम ये थॉट को कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे, लेट इट गो, जैसे कोई और आपको
3: बोलता है, नॉट ए टॉय, नॉट ए टॉय, बच्चे को बोलता हूँ मैं, जैसे लेट इट गो,
4: रिलीज,
3: रिलीज,
4: एंड लिटरली विजुअलाइज इट
3: गोइंग,
4: इसको विजुअलाइज करें, ये मेरी पास्ट की मेमोरी
3: डिलीट हो रही,
4: पास्ट का मेरा दर्द, पास्ट का मेरा अनुभव, टुडे आई लेट इट गो, इट विल वर्क।
3: बाद में ट्रैश में जाके भी डिलीट कर लेना,
4: सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट, इट्स गोन। परमात्मा से कनेक्ट करें एंड विजुअलाइज करें कि परमात्मा से वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर आ रही है, मुझ आत्मा से मेरे चारों तरफ ये जा रही है, और ये पावरफुल वाइब्रेशन, वो जो पुरानी मेमोरी, वो पुराना दर्द जो मैंने पकड़ के रखा है, इट्स आउट, इट विल वर्क। इसको कॉन्शियसली रोज करना है। इसको अगर हम रोज सुबह करें और जब वो बात याद आए उस क्षण तुरंत उसी टाइम करें।
3: अगर मैं ये थॉट को रोज सुबह याद करके लेट गो बोलता रहूं तो रोज याद रहेगी ना ये बात?
4: कुछ बातें बहुत पावरफुल मेमोरीज हैं।
3: ओके,
4: तो उनके ऊपर कॉन्शियसली वर्क करके उनको लेट गो करना ही है। यू नो, छोटी छोटी बातें नहीं होती, कुछ बड़ी बातें होती हैं कई बार जीवन की, जिसने हमारे ऊपर बहुत डीप प्रभाव डाला होता है, और जिनके बारे में हमें पता है कि मुझे सारा दिन में वो याद आ ही जाती है, तो उसको सुबह एक बार बुलाकर लेट गो करना इज फाइन। क्योंकि जब हम लेट गो कर रहे हैं, हम उस सारी बातों को नहीं याद करने वाले। I'm not going to sit and, you know, rewind that whole conversation of the past, उस दिन फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ, we're not going to do that.
3: पूरे फोल्डर को लेट गो करें।
4: वो सब नहीं हम करने वाले। हम कहेंगे सुबह सिर्फ बैठेंगे और हम कहेंगे वो वाली मेमोरी, वो वाला दर्द, वो वाला अनुभव, लेट गो। आई एम अ पीसफुल पावरफुल सोल, इट विल वर्क। एक ग्रूव में वो वाली थॉट्स चल रही है, अब हम एक नया ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं। नए ग्रूव क्रिएट करने के लिए कॉन्शियसली अटेंशन से थिंकिंग को दूसरी तरफ लेकर जाना है। अगर हम बार बार अपनी सोच के ऊपर इस तरह से वर्क करेंगे, पुरानी मेमोरीज डिलीट होती जाएंगी, नई रिकॉर्डिंग्स बनती जाएंगी। ये लेट गो की पावर आत्मा की शक्ति को कई कई कई गुना ज्यादा बढ़ाती है। इसमें हम पुरानी बातें भी लेकर आ सकते हैं वापस। कई बार बचपन में कुछ हुआ होता है, हम अभी तक नहीं भूले होते उस बात को। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम उसको लेट गो नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो हमें रोज याद नहीं आती अभी, लेकिन पास्ट का कोई दर्द है जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड। कई बार बचपन में किसी के पेरेंट्स ने उनको, यू नो, फ्रेंड्स के सामने या फैमिली के सामने कुछ ऐसा कह दिया होता है विच दे फील वेरी ह्यूमिलेटेड, वो दर्द वो भूल नहीं पाते उस दिन का। किसी बच्चे को टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा बेंच पे खड़े हो जाओ, या कुछ ऐसी बात कह दी विच वॉज ए डीप डीप इंसल्ट। कई बार किसी बच्चे को अब्यूज या कोई ऐसी चीज अनुभव की है जीवन में, दे नॉट एबल टू डिलीट दैट मेमोरी। लेकिन अगर वो सब लेट गो नहीं किया, फिर ऑफकोर्स बड़े होकर जो जीवन में बातें तो आ ही रही हैं, कभी ऑफिस में कुछ हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है
3: जीवन का। सिस्टम मैं एकदम लिविंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस मुझे है आप जो आप कह रहे हैं एंड इट्स आई नो इट मोर देन एनी डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि मेरी मदर को जब पाकिस्तान से भागना पड़ा इस पार्टीशन में, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना ज्वेलरी, अपने सामान, अपने रिश्ता सब, मतलब अटैचमेंट छोड़ के खाली हाथ भागो, तो सारा टाइम उनके ब्रेन में वहां से निकले तो हम तो राज करते थे, वी वर सो रिच, गाड़ी फोर्ड थी, इम्पोर्टेड ये था, बाद में लोगों से शक्कर मांग के रोटी पे खाई, पुत्र मैंने मैम हमारा तो पूरा दिन यही बोलती रही, तो क्या करूं, मेरे थॉट्स चलते रहते, रिश्तेदार इंडिया में रिश्तेदार आए तो उन्होंने हमको वहां सर्वेंट क्वार्टर में सुला दिया, जगह नहीं है बोला, मतलब ऑन एंड ऑन एंड ऑन, फाइनली द मोस्ट हेल्थीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, जो कि 70s 80s में जाके जो नहीं होने वाली चीज ब्लड कैंसर हो गया, थिंकिंग पेन ले लेके
4: कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं
3: डॉक्टर ने शॉट, ये बॉडी इतनी स्ट्रांग, इतनी हेल्दी और वही ब्लड कैंसर,
4: क्योंकि इतना सोचने से इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा ना, इतना कॉन्स्टेंटली अगर यू नो ये एक ऑब्सेसिव थॉट बन जाती है,
3: ये देख के भी मुझे तो सीख लेना चाहिए।
4: एक्चुअली हम क्या सोचते हैं, समय के साथ वो बात अपने आप भूल जाएगी। सी दुनिया में भी कहते टाइम इज द बेस्ट हीलर, मतलब समय बीतने दो वो भूल जाएंगे।
3: होता तो है सिस्टर ये।
4: दर्द अगर रहा नहीं भूलते हैं, फिर समय के साथ बात अगर वो दर्द नहीं हील हुआ तो जैसे आपने कहा ना कि इतने साल तक भी वो वही चीज कहते गए, तो समय तो बीत गया होगा ना उसके बाद कितने साल,
3: और फिर कुछ ऐसी चीज टीवी में देख ली या फिर किसी और से सुन ली तो फिर वापस वो
4: क्योंकि बहुत डोमिनेंट थॉट है ना, वो ऐसे एक्सपीरियंसेस को किसी के लिए वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है, यू नो जैसे पार्टीशन या आज के समय में जैसे हम देखते हैं कोई नेचुरल कैलामिटी,
3: चाइल्ड अब्यूज की भी तो आपने
4: चाइल्ड अब्यूज, मैन मेड डिजास्टर जैसे कोई टेररिस्ट अटैक है, ऐसी चीजें भी आज हो रही हैं, ऐसी चीज को भी जो विटनेस कर लेता है उसके ऊपर बहुत डीप ट्रॉमा है वो। अब किसी के लिए वो चाहे इतनी बड़ी चीज हो, किसी के लिए एक छोटी सी बात भी ट्रॉमा होती है, कि एक सपोज किसी के लिए रिश्ते में रिजेक्शन, किसी के लिए एक ब्रोकन मैरिज, किसी के लिए मैरिज में अब्यूज, किसी के लिए इन लॉज से इंसल्ट, अलग अलग अभी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल।
3: आई मीन लव करके शादी करने के बाद आदमी बोलता है आई डोंट लव यू, आई लव द अदर पर्सन,
4: सो रिजेक्शन
3: कितना बैठ जाते हैं अंदर लेके डीप।
4: अब समय बीत जाएगा, 10 साल आगे बढ़ गए हम, 20 साल आगे बढ़ गए, लेकिन उस बात को अगर लेट को नहीं किया है, कॉन्शियसली उसको अपने चित से, अपनी एनर्जी फील्ड से नहीं निकाला, तब वो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर करेगी। इसलिए मेडिटेशन में ये बहुत पावरफुल टेक्निक है कि हम कॉन्शियसली बैठकर उस चीज को निकालें। यू नो एक तो हम मेडिटेट कर रहे हैं कि आत्मा, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, परमात्मा से पावर, पर कॉन्शियसली उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को निकालना है मुझे, उस पे वर्क करना है एंड वो इट विल गो, इट विल, कोई भी चीज को हम जाने के लिए कहेंगे फाइनली इट विल गो एंड वो करते करते वी विल फाइंड कि थोड़े दिन में।
3: इसमें एक बात पूछती थी, जाने के लिए कहेंगे और नहीं जानता है, क्योंकि हम लोग विलिंगली उसको नहीं जाना चाहते हैं, वी स्टार्ट एंजॉइंग दैट पेन,
4: इट्स नॉट दैट वी एंजॉइंग दैट पेन, वी फील दैट बीइंग इन पेन बिकॉज ऑफ दैट इज नेचुरल।
3: कभी कभी सेल्फ पिटी अच्छी भी लगने लगती है, आदत पड़ जाती है,
4: सेल्फ
3: मेरे साथ जी वो हुआ था जी, मेरे साथ जी ऐसे हुआ था,
4: विक्टिम फीलिंग बेचारा मैं, आई गिव माई सेल्फ द राइट टू बी इन पेन,
3: जो मिला बोले।
4: जितनी बार बोलेंगे, अगर उस इंसिडेंट को बार बार रिपीट करेंगे, तो जितनी बार रिपीट करेंगे तो ग्रूव और भी पक्का होता जाएगा। जो चीज सोचने से इतनी पक्की हो जाती है, वो बार बार वर्णन करने से कितनी पक्की हो जाएगी फिर।
3: ये जो लेटिंग गो वाली, उसके लिए भी विल चाहिए ना कि आई वॉन्ट टू लेट गो।
4: अगर नॉलेज मिल गई कि उससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है, अगर नॉलेज मिल गई कि आई हैव द पावर टू लेट गो।
3: नहीं बट क्या होता है ना, माइंड ऐसा है, समझो मैं बोलूं आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ दिस थॉट, फिर बोलो लेकिन वो आदमी उससे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं उसको माफ तो नहीं करूंगा, चलो मैं लेट गो कर दू, लेकिन
4: आई एम गोइंग टू लेट माई पास्ट मेक मी अ बेटर पर्सन.
3: आई अंडरस्टैंड दैट.
4: सो नाउ लेट मी टेक दैट.
3: आई एम टॉकिंग टू अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ.
4: प्रैक्टिकल लाइफ
3: लोग बोलते हैं मैं उसको माफ तो कर दूंगी लेकिन भूल नहीं पाऊंगी, इसका क्या मतलब?
4: क्योंकि मैंने मतलब उस दर्द को नहीं छोड़ा ना. I have not let go of the pain.
3: So that means let go के लिए भी एक will बनानी पड़ेगी, समझ करनी पड़ेगी कि ये let go क्यों करना है मुझे?
4: Let go करना है क्योंकि आपने ही अभी कहा कि आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ. हमें practical proof दिखता है कि मन के दर्द का असर शरीर पर किस बीमारी के रूप में निकल कर आ जाता है. और ये भी कितनी सारी studies हैं और practical proofs हैं कि मन की सही सोच ने बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया है. It gives the mind-body connection. तो जब हमें इतना कुछ अब समझ में आ रहा है, इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, इतना कुछ हमें हर जगह से मालूम पड़ रहा है, फिर भी हम उस पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे.
3: पता है क्यों? क्योंकि आपके कहने के मुताबिक एक इतना गहरा ग्रूव और पैटर्न और हैबिट और उसको आप क्या कहती हैं संस्कार बन गया है.
4: लेकिन मेडिटेशन वो टेक्निक है कि हम एक नया ग्रूव अब बनाना शुरू करेंगे. पुराना बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी हम हमेशा उसी में रहेंगे.
3: बट मुझे तो हमेशा यही सूट करता है, माई माइंड ऑलवेज आस्क फॉर रीजनिंग. अब रीजनिंग दे दी, ये हुआ मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ, दुनिया के साथ हुआ, और थॉट के
4: साथ बॉडी पे असर पड़ रहा है.
3: के साथ बॉडी पे इतना बुरा असर पड़ता है कि एक थॉट आपने उस दिन बताया था ना, कितने
4: 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन कनेक्टेड टू 10,000, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी. तो कितने कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क तो कितना बड़ा है ना ये पूरा. तो कितना असर, और हम इतना आराम से बैठ के 15 मिनट ऐसे ही सोच लेंगे. अनअवेयर ही बैठे बैठे कितना सोच जाता है. हम कोई कॉन्शियसली बैठ के रीजन करके सोचने नहीं बैठते कि अब मैंने उनके बारे में सोचना है इतनी देर. उतना कॉन्शियसली रीजन करके बैठ
3: नहीं सोचने की बात कर रहा हूँ.
4: उसकी रीजनिंग करनी है.
3: उसकी रीजनिंग होती है कि इसके बारे में मुझे क्यों नहीं सोचना है, क्या नहीं करना है. पूरा पास्ट इज पास्ट, लेट गो लेट गो लेट गो. ये चीज टेक्स सो मच ऑफ टाइम.
4: नेवर माइंड व्हाट डजंट टेक टाइम एंड अटेंशन. व्हाट डजंट टेक टाइम एंड अटेंशन.
3: हमको बड़े होते होते
4: कौन सी चीज बिना मेहनत की बनी है.
3: एक पेड़ पौधे भी
4: आज स्कूल का एग्जाम पास करने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है. तो एक संस्कार बदलने में थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे. आज दिन और रात जागते हैं एक एग्जाम पास करने के लिए. एक संस्कार चेंज करने के लिए रोज 10 मिनट नहीं निकालेंगे अपने ऊपर वर्क करने के लिए.
3: और उस एग्जाम पास करके जो डिग्री मिलेगी, जो नौकरी मिलेगी जहां पर, ये संस्कार चेंज करेंगे तो उसके बिना भी उससे अच्छे लोग प्यार करेंगे. दे वुड वॉन्ट यू.
4: दे वुड वॉन्ट
3: बिकॉज यू विल बी सो लाइक्ड. एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल चीज थॉट आया देखो आपसे ये कि व्हेन यू आर लाइक्ड बाय पीपल, बाय योर फैमिली, बाय योर स्टाफ, पीपल अराउंड यू, व्हाट अ ब्यूटिफुल फीलिंग.
4: That is what we had said, ना कि अगर थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे आपकी पूरी दुनिया बदलेगी. Your world will change. तो हमें ये consciously let go करना ही है. जैसे आपने कहा ना एक ग्रूव बन जाता है. वो पुराने जमाने में वो वाले प्लेयर्स नहीं होते थे तो उसके वो जो एक पिन होता था वो पिन अटक जाती है. तो वो उसी लाइन को चेंज चेंज चेंज करके रिपीट करते जाएंगे
3: और उसका ग्रूव भी स्ट्रॉन्गर बनता जाता था.
4: ये यहाँ हो जाता है.
3: थोड़ा सा उसको टैप करके धक्का मारना
4: पड़ेगा, उठाना पड़ेगा. लेकिन जब तक नहीं उठाया उसने वहीं अटके रहना. कितनी देर वो पिन अटके
3: थोड़ा आगे करते
4: थोड़ा
3: नॉन स्टॉप चलता था वहीं वहीं.
4: कितनी देर चल सकता है वहां पे जब तक उठाएंगे नहीं. इसका मतलब कितनी देर यहाँ चल सकता है जब तक उस ग्रूव से उठाएंगे नहीं. वो चलता रहेगा अपने आप. एंड अब जबकि समझ में आ जाता है कि आत्मा अपने संस्कार लेकर जाती है तो फिर तो इस जीवन काल के बाद भी वो उसी ग्रूव पे चलेगा. वाई टुडे चिल्ड्रन आर एक्सपीरियंसिंग रिजेक्शन. अभी रिसेंटली इस 6 महीने के अंदर ही दिल्ली में हमारे 3 suicide cases चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 13. तीनों केस में इंसिडेंट क्या था, टीचर ने कुछ कह दिया. स्कूल के वॉशरूम में जाकर अपने को इमोलेट किया एक 13 साल की लड़की ने. देखा जाए टीचर ने ऐसा क्या इतना कहा होगा और इतना भी क्या कह दिया होगा जो ये किया. बिकॉज एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट उस दिन वो टीचर ने क्या कहा था.
3: द रिएक्शन
4: वो बहुत पहले का कोई
3: डीप पास्ट
4: डीप रूटेड वूंड है, बहुत डीप, किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा, अनरिजॉल्व्ड इशू, वो पेन, वो वूंड, वो आत्मा कैरी कर रही थी और किसी ने आकर उस वूंड पे ऐसा कुछ ट्रिगर किया है कि आपका उस समय वो रिएक्शन हो गया।
3: जैसे बोलते बबल इतना बड़ा हो गया था, बस पिन लगा और फट गया।
4: बहुत इम्पोर्टेंट है लेट गो करना। ये सिर्फ हमारे इस जीवन में नहीं है, हमारे साथ आगे चलता है, और आगे तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे पास वो संस्कार क्यों है। फिर हम कहेंगे आई ऑलवेज गेट रिजेक्टेड, मुझे ही सब रिजेक्ट करते हैं, आई एम नॉट लव्ड बाय एनीबडी। कई लोग कहते हैं आई एम नॉट वॉन्टेड बाय एनीबडी, नोबडी वॉन्ट्स मी। कोई कहते हैं नोबडी रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि डीप ग्रूव उसी पर अटक गया है वो पिन। उसी पिन पर अटकने से अब उस हर एक्सपीरियंस में वो वही वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कहा, नोबडी रिस्पेक्ट्स मी। थोड़ा सा किसी ने कुछ लाइन कह दी, नोबडी लव्स मी। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आते हैं उनके मन में, क्योंकि वो पिन वहां अटका हुआ है। तो कॉन्शियसली लेट गो, ये करना ही है।
3: चलिए फिर एक मेडिटेशन करते हैं।
4: लेट्स सिट बैक कंफर्टेबली। आई द बींग पावरफुल शक्तिशाली आत्मा, मेरी हर थॉट मेरी चॉइस है। चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ था, बात चाहे कितनी भी बड़ी थी, दर्द उस समय जितना भी गहरा था, आई द सोल हैव द पावर टू डिलीट, release the pain, let go of the experience. Today, इसी क्षण उस बात को, उस सोच को, उस दर्द को let go. It's leaving me and going away. देखें उस नेगेटिव एनर्जी को मुझसे बाहर निकल कर, it's out, it's over, past, full stop. Om Shanti.
3: Om Shanti. Thank you so much.
4: Om Shanti.
3: Om Shanti. Thank you.
5: In letting go of the past, we are freeing ourselves of pain. The more anger towards the past we carry in our heart, the less capable we are of loving in the present. Often we are thinking about the past, which could be many years old or just a few minutes. Our thoughts create our present response and karma, which then influence our future destiny. So, holding on to our past influences our future. When the inner conversation of the past repeats on the mind, consciously create new thoughts. Let go, release, let go. Visualize the past impression, leaving the subconscious mind. This can be done daily and repeatedly when the mind relives the past. Like we teach a child, we need to teach our mind right thinking. Past experiences are recorded as, why did this happen to me? How can I ever be happy? My pain is my destiny. During meditation, connect to God, the ocean of knowledge and love, and replace these impressions with, I am a pure, powerful soul. God loves me. I have the power to forgive. I love every soul.
4: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो स्वागत है हमारी श्रृंखला श्री कृष्णा की 16 कलाएं के दूसरे अध्याय में। आज हम जानेंगे लीला माधुरी, वो कला जो भगवान के अद्भुत क्रीड़ाओं की मधुरता को प्रकट करती है। दोस्तों सोचिए जरा, जब नंदलाल बांसुरी बजाते हैं तो केवल स्वर ही नहीं बल्कि प्रेम और आनंद की धारा बहने लगती है। गोपियों के साथ उनकी रासलीला बाल्य कला की चंचल शरारते और भक्तों के साथ उनका स्नेह, यही है लीला माधुरी का सार। यह कला हमें बताती है कि ईश्वर केवल उपदेशों से नहीं बल्कि अपनी मधुर लीलाओं से भी भक्तों के हृदय को जीतते हैं। हर लीला में छिपा है आनंद, हर क्रीड़ा में छिपा है प्रेम, हर मधुरता में छिपा है भक्ति का अमृत। तो आइए आज के इस अध्याय में डूब जाए उस माधुरी में जो श्री कृष्ण के लीलाओं को अमर बना देती है। तो दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। लीला माधुरी का अर्थ है कृष्ण की लीलाओं का आकर्षण। गोकुल में माखन चोरी, गोपियों से हास्य विनोद और वृंदावन में रास लीला, ये सब केवल बाल क्रीड़ाएं नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय आनंद के दिव्य रूप है। कृष्ण की हर लीला भक्तों के हृदय को आनंद और भक्ति से भर देती है। उनके चंचलता में भी करुणा है, उनकी शरद में भी शिक्षा है। हर शरद में छिपा है प्रेम का संदेश, हर हास्य में छिपा है भक्ति का रस, और हर रास लीला में छिपा है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अद्भुत माधुरी। यह है लीला माधुरी, वह कला जो हमें बताती है कि ईश्वर की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक आनंद का द्वार है। आइए इस अध्याय में हम अनुभव करें उस माधुरी को जो श्री कृष्ण की लीलाओं को अमर बना देती है, हर भक्तों के हृदय में अनंत आनंद भर देती है। आइए दोस्तों, तो सुनते हैं और भी प्यारा सा एक दूसरा सुंदर गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब नन्हे कृष्ण माखन चुराते थे तो यशोदा मैया उन्हें बांधने का प्रयास करती, परंतु कृष्ण की लीला इतनी अद्भुत थी कि रस्सी कभी छोटी पड़ जाती। यह केवल बाल लीला नहीं बल्कि यह सीखा थी कि ईश्वर को बांधना किसी के बस की बात नहीं। इसी प्रकार वृंदावन की रास लीला में कृष्ण ने अगणित गोपियों के साथ नृत्य किया और गोपियों को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ है। ये लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, हर हृदय में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। यही है लीला माधुरी, वह कला जो हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीलाएं केवल कथा नहीं बल्कि भक्तों के जीवन में आनंद और भक्ति का अमृत भरने वाली दिव्य अनुभूति है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और भी प्यारा सा मन को बहलाने वाला श्री कृष्ण का एक गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा की 16 कलाएं श्रृंखला के इस अध्याय में जिस कला का रसपान कर रहे हैं वो है लीला माधुरी। लीला माधुरी हमें यह स्पष्ट करती है कि जीवन स्वयं ईश्वर का खेल है। हर सुख दुख, हर चुनौती और हर आनंद सब कृष्णा की लीलाओं का ही हिस्सा है। जब हम इन्हें भक्ति और प्रेम से स्वीकार करते हैं तो जीवन स्वतः ही आनंदमय और मुक्त हो जाता है। यह व्याख्या में सिखाती है कि ईश्वर लीलाएं केवल कथाएं नहीं बल्कि हमारे जीवन का दार्शनिक आधार है। हर घटना में छिपा है एक संदेश, हर अनुभव में छिपा है एक शिक्षा और हर एक क्षण में छिपा है ईश्वर का स्पर्श। यही है लीला माधुरी, वह कला जो हमें जीवन की खेल की तरह देखने और उसे प्रेम से जीने की प्रेरणा देती है। एक सुनते हैं प्यारा सा सुंदर और एक गीत।
1: यमुने चतीरी का।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नंद गोकुल मरो भगवान, अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण स्वयं भगवान है। उनकी प्रत्येक लीला केवल बाल क्रीड़ा नहीं बल्कि भक्तों को मोक्ष और आनंद प्रदान करने का दिव्य साधन है। गोकुल में माखन चोरी, वृंदावन में रासलीला और गोपियों के संग मधुर हास्य, इन सब में छिपा है ईश्वर का अद्भुत संदेश। कृष्ण की लीलाएं हमें ये अनुभव कराती है कि भक्ति केवल साधना नहीं बल्कि आनंद और मुक्ति का मार्ग है। हर लीला में छिपा है प्रेम, हर क्रीड़ा में छिपा है भक्ति का अमृत और हर क्षण में छिपा है ईश्वर का साक्षात्कार। यही है नंद गोकुल का चमत्कार, जहां बाल कृष्ण की लीलाएं भक्तों के जीवन को आनंद और मोक्ष से भर देती है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। तो सुनते हैं एक प्यारा सा सुंदर श्री कृष्ण का गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, यह थी दूसरी कला लीला माधुरी। यह कला हमें यह सिखाती है कि जीवन को खेल समझकर भक्ति और आनंद से जीना ही सच्चा मार्ग है। हर सुख दुख, हर चुनौती और हर आनंद सब ईश्वर की लीलाओं के ही प्रसंग है। यदि हम इन्हें प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार करें तो जीवन स्वतः ही आनंदमय और मुक्त हो जाता है। अब हमारी श्रृंखला का अगला पड़ाव होगा वेणु माधुरी, यानी श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुरता। वो बांसुरी जिसकी ध्वनि से गोपियां मोहित हो जाती थी, पशु पक्षी शांत हो जाते थे और संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में डूब जाता था। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। तब तक के लिए ओम शांति, जय श्री कृष्णा।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो कुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: खाबों का सफर आरजे सनी के साथ।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबू का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, आइए आज के इस खाबू के सफर को बनाते हैं बहुत ही सुंदर यादगार। और कहते हैं, तुझे पलकों पे बिठाने को जी चाहता है, तेरी बाहों से लिपटने को जी चाहता है, खूबसूरती की इंतिया है तू, तुझे जिंदगी में बसाने को जी चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और खाबो के सफर को बनाएंगे यादगार। 1954 का एक गीत मैं आपको सुनाने वाला हूं अभी कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन आज 50s एंड 60s के गानों के साथ साथ जो अक्षर है वो है जे। जी हाँ, जे अक्षर के बहुत ही खूबसूरत गाने मैं आपको सुनाने वाला हूं। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में 1954 का एक फिल्म जिसका नाम है अमर, शकील बदायूं साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, नौशाद साहब का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना जिसके लिरिक्स है, जानने वालों से मुलाकात न होने पाए। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत नगमे को जो 1954 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी अगजानी कश्मीरी ने लिखा था और इसमें जो कलाकार है दिलीप कुमार, मधुभाला, निम्मी, मुकरी और जयंत। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, खाबों का सफर इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, दिलीप कुमार और मधुबाला पर पिक्चराइज किया हुआ गाना। तो आइए, 1957 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है प्यासा। जी हाँ, गुरुदत्त के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और SD बर्मन का संगीत सायर लुधियानवी ने इसके गाने लिखे थे। गुरुदत्त, वैदारमन, माला सिन्हा, जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है। और इस फिल्म की कहानी एक संघर्षशील कवि के ऊपर बताया गया है। धीरे धीरे उसकी कहानी जो है, उसकी जो कविता है वो बिकती नहीं, लेकिन आखिरी में एक वैश्या है उसकी कविताओं को सहायता देती है, उसकी कविताओं को सुनती है और फिर आगे ये कहानी बढ़ती है। तो आइए, एक खूबसूरत गाना 1957 प्यासा फिल्म का अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। साहिर लुधियानवी साहब का लिखा, गीता दत्त का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत, आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

इस प्यार का अंदाज कुछ ऐसा है, क्या बताए ये राज कैसा है। कौन कहता है कि आप चांद जैसे हो, सच तो ये है कि खुद चांद आप जैसा है। तो आइए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1959 में आई थी जिसका नाम था छोटी बहन। एक युवक के बारे में ये कहानी है। राजेंद्र की बहन मीना शादी करने के बारे में सोचती है, वो अपनी दृष्टि खो देती है और उनके चाचा उन दोनों को बेघर छोड़कर उनका घर कब्जे में ले लेना चाहता है और इस वजह से दोनों भाई बहन भयंकर संकट में आ जाते हैं। 6 फरवरी 1959 को रिलीज हुई थी। एलवी प्रसाद के निर्देशन में ये फिल्म बनी। नंदा, बलराज सहानी, मोहम्मद अली, शोभा कोटे और रहमान इस फिल्म के कलाकार हैं। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। जी हाँ, जाऊं।

0: बस कहते हो छोटे भी है।
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया हाथ से,
1: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया?
0: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? ये शर्म शेखर, मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है, बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। पलकों को जब जब आपने झुकाया है, बस एक ही ख्याल दिल में आया है कि जिस खुदा ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें धरती पर बेचकर वो कैसे जी पाया है। आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों के सफर में। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, बात करते हैं अब 1960 का, दिल अपना और प्रीत पराई। एक फिल्म आई थी, बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही और ये फिल्म किशोर शाहू ने बनाई थी। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के गीत और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। राजकुमार, मीना कुमारी, नादिरा, हेलन, ओम प्रकाश पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म उस समय बहुत हिट रही और इसके गाने भी सब बहुत ही पॉपुलर रहे। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना आपको सुनाने वाला हूँ, जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। शंकर जयकिशन का संगीत, दिल अपना और प्रीत प्राय। खुश रहो, खुशियां बांटो।

तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वही दौलत हो। किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुदा से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। तो आइए, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। खाबों के सफर में बहुत ही खूबसूरत गाना दिल अपना प्रीत पराई इस एल्बम से आपने सुना। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और फिल्म के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है अनुराधा। ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी। अनुराधा अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करती है। कुछ समय बाद पति से अनबन होने पर वह वापस आती है अपने घर में और पिताजी की बात को समझ पाती है। ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म, रविशंकर साहब का संगीत, और 1960 में ये रिलीज हुई थी, जिसमें कलाकार थे लैला नायडू, बलराज सहानी, अभी भट्टाचार्य, मुकरी और हरी। वही इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, शैलेंद्र साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया ये खूबसूरत गीत रवि के संगीत पर। आपके लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। तरस गए अपने दीदार को, दिल फिर भी आपका इंतजार करता है। हमसे अच्छा तो आपके घर का आईना है, जो हर रोज आपका दीदार करता है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और कैफी आजमी का एक लिखा गीत है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। खयाम साहब ने इस गाने को संगीत दिया था फिल्म शोला और शबनम, जो 1961 में रिलीज हुई थी। शोला और शबनम इस फिल्म को रमेश सहगल द्वारा लिखा गया था और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्शन दिया था। इस फिल्म के कलाकार धर्मेंद्र, तरला मेहता, अभि भट्टाचार्य, विजय लक्ष्मी और एम राजन मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाते हैं। और इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो अभी हम सुनेंगे, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझमें। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन लाइनों को सुनकर। मुझे अमर पाली जो फिल्म आई थी 1966 में उसकी याद आ गई। एक आदमी शत्रु की सेना में शामिल होकर उसे कमजोर करने की कोशिश करता है, पर वहाँ उसे अपने जीवन की खास हस्ती प्रेमिका मिलती है, फिर वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो आइए ऐसा ही कुछ इस फिल्म की कहानी है और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं वैजयंती माला, सुरेंद्र प्रेमनाथ, केएन सिंह और विपिन गुप्ता। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जिसे खास शैलेंद्र साहब ने लिखा था, लता मंगेशकर ने इसे गाया था और शंकर जयकिशन साहब ने इसे संगीत से संवारा था। तो आइए इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। सुर्ख आंखों से जब वो देखते हैं, हम घबरा कर आंखें झुका लेते हैं। क्यों मिलाए उन आंखों से आंखें, सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज ख्वाबों का सफर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सावन की घटा 1966 में ये फिल्म आई थी और ये फिल्म दो बचपन के दोस्तों पर आधारित है, गोपाल और सीमा। गोपाल और सीमा कई सालों के बाद मिलते हैं और उन दोनों के बीच प्रेम जागृत होता है। हालांकि सीमा के पिता उसकी शादी किसी और से तय करते हैं और फिल्म में यहाँ पर क्लाइमेक्स आता है। तो फिल्म के कलाकार मनोज कुमार, शर्मिला टैगोर, मुमताज, प्राण और मदन पुरी है। तो आइए शक्ति सावंत का ये खूबसूरत फिल्म, ओपी नैयर का संगीत, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, एच बिहारी साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया, ओपी नैयर का संगीत बद्ध, सावन की गढ़ा इस फिल्म का ये खूबसूरत नगमा, आपके नाम।

फूलों की वादियों में हो बसेरा तेरा, फूलों की वादियों में हो बसेरा तेरा, सितारों के आंगन में हो घर तेरा। दुआ है ए दोस्त कि एक दोस्त को कि तुझसे भी खूबसूरत हो सवेरा तेरा। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। और गुलजार साहब का लिखा, हेमंत कुमार साहब का गाया, हेमंत कुमार साहब का ही संगीत का एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं सुनाने वाला हूँ। राहगीर फिल्म का 1969 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, और तरुण मुजुमदार ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, हेमंत कुमार साहब ने इसे संगीत से संवारा था। गीतांजलि पिक्चर्स इस कंपनी ने इस फिल्म को रिलीज की थी। मुख्य कलाकार के रूप में त्रिलोक कपूर, याकूब खान, महबूब खान, अनवरी शहजादी, जोरा और महमूद। जी हाँ, आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना, जन्म से बंजारा हूँ बंदू मैं, आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। काटे नहीं कटते लमे इंतजार के, नजारे नजरे बिछाए बैठे हैं, नजरे बिछाए बैठे हैं रास्ते पे यार के। दिल ने कहा देखे वो जलवे हुस्न यार के, लाए हैं उन्हें कौन फलक से उतार के। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज। आइए एक और खूबसूरत फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा जो 1969 के बीच में रिलीज हुई थी, माँ का आंचल। कैफी आदमी का लिखा एक गीत है, बहुत ही खूबसूरत, आशा भोसले की आवाज में, मदन मोहन का संगी, माँ का आंचल। इस फिल्म का मैं अभी गीत सुनाने वाला हूँ और जगदेव बाबरी ने इस फिल्म का निर्माण किया था और इस फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, लीला मिश्रा, अनजान मुमताज और अभी भट्टाचार्य। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। जाते जाते दो लाइनें आपके नाम, तेरे हुस्न को पर्दे की जरूरत ही क्या है जालिम, कौन रहते हैं होश में तुझे देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत। आशा करता हूँ आपको आज के भी गीत बहुत पसंद आए होंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज के साथ। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी के साथ। सलाम नमस्ते, शब खैर, शुभरात्रि, आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माय वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ? कहते मैं उठा

0: ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: उपवास। लेखिका सुधाकुल। पात्र परिचय: दृष्टि, आकाश, वेदांत, पंकज, यश, सैंडी, विनोद, उन्नति।
3: देखो देखो, मेरी मम्मी ने सावन के उपवास रखे हैं, मेरे तो मजे ही आ गए।
4: तुम्हारे मजे कैसे आ गए?
5: अरे भाई, उनके लिए बर्फी आएगी तो मैं भी तो खाऊंगा।
6: तुम्हें तो उपवास में भी खाना सूझ रहा है।
7: उपवास का मतलब ही होता है कि अपने शरीर की पाचन मशीनरी को थोड़ा रेस्ट देना।
8: रेस्ट देना या फिर किसी और तरह के काम को देकर शायद चुस्त बनना।
6: अरे ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है।
8: हाँ, जैसे अनाज आदि को पचाने के काम से छुट्टी देकर केवल तरल पदार्थ या फल ही पचाना,
2: या फिर पाचन मशीनरी के कार्य का समय बदल कर भी तो उसे चुस्त बनाया जा सकता है।
3: कहीं तुम्हारा इशारा रोजों पर तो नहीं?
4: हाँ, वो भी और कई तरह के जैन व्रत भी। तो
5: मेरी माँ तो कई प्रकार के अनुव्रत रखती है।
6: वे क्या होते हैं?
7: अनु मतलब छोटे छोटे, जैसे कई बार कई दिनों तक सिर्फ गेहूं से बनी चीजें छोड़ देती हैं, और सब सेम रहता है उनका।
6: हाँ तो इससे तो कितना कुछ छूट जाएगा रोज खाने से।
2: कैसे?
8: ओहो, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। चलो ध्यान देते हैं कि हम रोज सिर्फ गेहूं से बना क्या क्या खाते हैं।
3: ये तो गेम बन गई।
4: पहले मैं बताता हूँ, रोटी।
5: ये तो सबसे आसान था।
6: ब्रेड
7: दूसरा आसान।
6: कभी कभी माँ आटे का हलवा बनाती है।
8: कई तरह के केक, गेहूं के आटे से बनी पूड़ियाँ,
4: कचौरियाँ,
2: कई तरह के बिस्किट्स, दलिया, सूजी, यहाँ तक मैदा भी।
3: ओ, फिर तो और भी तो कई तरह की चीजें हो गई, जैसे इन चीजों से बनी चीजें भी, जैसे बर्गर, पिज्जा, केक, पेस्ट्री और ना जाने कितने ही फूड आइटम्स।
4: तो अधिकतर तो फल, सब्जियाँ और दूध से बनी चीजें भी तो रह गई।
8: इसका मतलब अनुव्रत भी काफी शक्तिशाली हो गए कई चीजें छुड़वाने में।
3: अनुपम की तरह।
4: पर इससे एक बात तो तय है कि और कुछ हो ना हो, हम अपने भोजन को और ध्यान से खा सकते हैं। मतलब हमारा फोकस बढ़ता है।
5: मतलब ध्यान लगाने की क्षमता।
8: हाँ हाँ, ये कोई कम फायदा तो नहीं, ये ध्यान लगाने की बढ़ी हुई क्षमता जीवन के और पहलुओं में भी काम आती है।
6: वो कैसे?
8: देखो ना, ध्यान हर चीज में चाहिए, पढ़ाई लिखाई में तो है ही, किसी भी कला को सीखने में, किसी भी हुनर को अपनाने में।
7: और दीदी, किसी से बात करने समय उसकी बात अधिक से अधिक समझने में। इससे तो याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी।
8: वो तो है ही, बल्कि इच्छा शक्ति, निष्ठा, उद्देश्य तक पहुंचने का पक्का इरादा और फिर जब व्रत सफल हो तो संयम में रहने का आत्मविश्वास।
9: अरे वाह, क्या बात है, आत्मविश्वास बढ़ जाए तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है।
2: ये तो ऐसी चाबी है, इसे हर क्षेत्र के ताले खुल सकते हैं।
8: और सबसे बड़ी बात है, हम में बढ़ता है सब्र यानी कि पेशेंस।
3: इतना कुछ सिर्फ व्रत रखने से?
8: हाँ, तभी तो बापू कितने उपवास रखा करते थे। कहते हैं एक बार जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए केवल दिन में एक बार खाएंगे और वह भी केवल 5 खजूर।
3: ओह, सिर्फ 5?
8: हाँ, और उनके मित्र ने उन्हें कोई 7 खजूर दे दिए। सोचा बापू ध्यान नहीं देंगे और वे उन्हें कुछ ज्यादा ही खिला पाएंगे।
3: फिर
8: बापू ने खजूर देखा और कहा, मैंने 5 खजूर कहे थे, तुमने मुझे 7 दे दिए।
10: फिर
8: उनके मित्र ने प्यार से कहा, अब 5 और 7 में ज्यादा फर्क कहाँ है। ऐसा 1-2 दिन हुआ, बापू हर रोज 2 खजूर बाहर निकाल देते।
9: हाँ हाँ, उनका मित्र उनसे प्रेम करता था।
8: हाँ, जब बापू के टोकने पर भी उन्होंने खजूर कम लाने शुरू नहीं किए तो जानते हो बापू ने क्या किया?
9: क्या क्या?
8: उनमें से 2 खजूर तो पहले ही निकाल दिए और 1 दिन केवल 3 ही खजूर खाए और कहने लगे अपने मित्र से, जब 5 और 7 खजूर में कोई अंतर नहीं तो 5 और 3 में भी नहीं होगा।
11: ओ वाह!
8: हाँ हाँ, उनके मित्र ने फिर उनसे बहुत क्षमा मांगी और बापू के कहने के अनुसार ही चलने लगे।
3: बापू ने तो कई बार ब्रिटिश सरकार को भी अपने उपवास द्वारा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कितने लाभ हैं उपवास के।
4: क्या सभी धर्मों के लोग उपवास रखते हैं?
8: सभी धर्मों में उपवास की आवश्यकता बताई गई है।
5: हाँ दीदी, इसलिए शायद हर व्यक्ति अपने धर्म परंपरा के अनुसार उपवास या व्रत करता ही है।
8: ठीक कह रहे हो, पर असल में व्रत उपवास का संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिकरण से है।
5: इससे हमारा शरीर स्वस्थ भी तो रहता है।
6: क्या पता इसके महत्व को समझते हुए सभी धर्मों ने इसे धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ दिया है ताकि लोग उपवास के अनुशासन में बंधे रहें।
7: लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व के कारण भी उपवास यानी पेट को खाली रखना अच्छा है।
8: वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सभी सप्ताह में 1 उपवास जरूर रखना चाहिए।
6: कई बीमारियों से भी तो इससे छुटकारा मिलता है।
8: हालांकि हर बीमारी का इलाज उपवास नहीं है, लेकिन यह कई समस्याओं में कारगर रहता है।
9: इसका मतलब दीदी उपवास के तो अनगिनत फायदे हैं।
8: कहते हैं उपवास जितना लंबा होगा शरीर की ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ती है।
2: वाह, क्या बात है।
8: कहते हैं उपवास आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकता है कि आप अपने शरीर, जीवन और भूख पर अधिक नियंत्रण हासिल कर सकें। हमारा शरीर तो स्वनियंत्रित है।
11: मतलब कैसे?
8: मतलब ये खुद को ठीक करने वाली प्रजाति का हिस्सा है। देखते नहीं कहीं चोट लगे तो कैसे पहले खून बहता है, फिर जम के पपड़ी सी बन जाती है ताकि जल्दी से आराम मिले।
2: हाँ ये तो है।
8: उपवास के जरिए हमारा शरीर अपने मेटाबॉलिज्म को सामान्य स्तर पर ले आता है
3: और फिर इससे शरीर स्वस्थ रहता है।
4: निराहार रहने से?
8: उससे या एक समय भोजन लेने से या फिर
5: केवल फलाहार रहने से?
8: असल में इससे पाच तंत्र को आराम ही मिलता है।
7: और जब मेहनत जरूरी है तो आराम भी तो उतना ही जरूरी है ना?
8: यही नहीं, इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, अरुचि, सिर दर्द, बुखार आदि रोगों से भी आराम मिलता है।
11: वाह, कितना अच्छा है।
4: आध्यात्मिक शक्ति भी तो बढ़ती है।
5: मतलब?
4: मतलब जैसे ज्ञान, विचार, पवित्रता,
9: बुद्धि का विकास भी तो होता है।
6: इसी कारण तो उपवास, व्रत आदि को सभी धर्मों की पूजा पद्धति में शामिल किया गया है।
7: यानी से यस टू उपवास एंड नो बर्फी।
3: यस टू बर्फी भी, पर कभी कभी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर, पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारे तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आज तो कॉलेज की छुट्टी है, चलो इसका फायदा उठाती हूँ।
1: क्यों ना पुराने स्तंभ जी के पास चलकर एक नई कहानी सुन ली जाए।

0: वो रहे पुराना स्तंभ जी, पर ये क्या, ये उनके पीछे ये दो लड़के क्या कर रहे हैं? चलकर देखना पड़ेगा। हेलो हेलो, सुनिए, अरे अरे आप लोग, अरे आप लोग जा कहाँ रहे हैं?
1: हेलो मनु, कैसी हो?
0: मैं तो ठीक हूँ, पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने बुलाया तो चले गए।
1: क्या बताऊँ मनु, बस यही मेरा सबसे बड़ा दुख है।
0: लेकिन हुआ क्या पुराने स्तंभ जी?
1: ये लोग मेरे ऊपर अपना नाम लिख रहे थे, और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार होता है। देखो, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी कलाकारी मिलेगी तुम्हें।
0: अरे लेकिन कलाकारी ही करनी है तो ड्राइंग पेपर पे लेकर क्यों नहीं करते? हमारी ऐतिहासिक धरोहर को क्यों खराब करते हैं?
1: शायद उन्हें ये स्मरण ही नहीं होता कि जरा सा भी मुझ पे या किसी भी ऐतिहासिक धरोहर पर कुछ बनाना लिखना उसकी खूबसूरती को नष्ट करता है।
0: आई एम वेरी सॉरी पुराना स्तंभ जी, हम लोग आपकी बिल्कुल कद्र नहीं करते।
1: नहीं मनु, मैं अभी भी यही आशा करता हूँ कि लोग इस गलती को करना बंद करेंगे और ये समझेंगे कि ये उनके अपने प्यारे शहर पुणे की धरोहर है। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की कहानी सुनाता हूँ।
0: शिवाजी महाराज के पुत्र? हाँ हाँ जरूर।
1: तो सुनो,

0: संभाजी छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। संभाजी के जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ। संभाजी के जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही उनकी माता सईबाई का देहांत हो गया और राजे मात्र सुख से वंचित हो गए। परंतु जीजाऊ ने इस अभाव की पूर्ति की जिस जीजाऊ ने शिवाजी को तैयार किया, उन्हीं जीजाऊ ने संभाजी को भी संस्कार दिए।
1: अच्छा,
0: संभाजी की तारीफ में लोग कहते हैं कि वे शूर वीरता एवं सुंदरता की साक्षात प्रतिमा थे। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर संभाजी का प्रभुत्व था।
1: इतनी सारी भाषाओं पर?
0: लेकिन जिस तेजी से उन्होंने लेखनी चलाई, उसी तेजी से उन्होंने तलवार भी चलाई। मराठा साम्राज्य को 1680 से 1689 ईस्वी तक संभाला। 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी सूर्याबाई ने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजा राम का अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ में राज्याभिषेक कर दिया।
1: अच्छा,
0: परंतु इसके बाद भी संभाजी ने मराठा सेनापति हमीर राव मोहिते को अपने पक्ष में करके आक्रमण कर दिया। उन्होंने सूर्याबाई एवं राजा राम को कैद कर लिया और रायगढ़ पर अधिकार करके 30 जुलाई 1680 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया।

0: संभाजी ने नीलो पंत को अपना पेशवा बनाया और उन्होंने 1689 ईस्वी तक अपना शासन किया। कालांतर में संभाजी के विरुद्ध राजा राम, सूर्याबाई और अन्नाजी दत्ता ने एक संगठन बना लिया।
1: अच्छा,
0: परंतु संभाजी ने इस संघ को बर्बरता पूर्वक कुचलते हुए सौतेली माँ, सूर्याबाई और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मराठा सरदारों की हत्या करवा दी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देने के कारण संभाजी को मुगल सेनाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा।
1: अच्छा।
0: और लगभग 9 वर्षों तक वह निरंतर औरंगजेब की विशाल सेनाओं का सफलतापूर्वक सामना करते रहे।
1: इतने सालों तक?
0: बिल्कुल। संभाजी ने साहस और निडरता के साथ औरंगजेब की 8 लाख सेना का सामना किया और अधिकांश मुगल सरदारों को युद्ध में पराजित कर उन्हें भागने के लिए विवश कर दिया।
1: अच्छा।
0: और 24 से 32 वर्ष की आयु तक संभाजी ने मुगलों से लड़ाई की और एक बार भी वे पराजित नहीं हुए।
1: क्या बात है।
0: इसीलिए औरंगजेब दीर्घकाल तक महाराष्ट्र में युद्ध करता रहा, क्योंकि औरंगजेब का ध्यान संपूर्ण रीति यहीं लगा रहा। इस कारणवश संपूर्ण उत्तर हिंदुस्तान मुक्त रहा। यदि संभाजी ने औरंगजेब के साथ समझौता किया होता अथवा उसका अधिपत्य स्वीकार किया होता तो वह 2-3 वर्षों में ही पुनः उत्तर हिंदुस्तान में कोई न कोई कार्यवाही अवश्य ही करता।
1: अच्छा।
0: परंतु संभाजी राजे के संघर्ष के कारण औरंगजेब को दक्षिण भारत में ही रुकना पड़ा। इससे उत्तर में बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान में हिंदुओं की नई सत्ताएं स्थापित होकर हिंदू समाज को सुरक्षा मिली।
1: अरे वाह।
0: मराठों और अंग्रेजों में 1684 में जो समझौता हुआ उसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि अंग्रेजों को मेरे राज्य में दास बनाने अथवा ईसाई धर्म में कलंकित करने हेतु कोई का क्रय करने की आज्ञा नहीं मिलेगी।
1: अच्छा।
0: अब मैं आपको पुर्तगालियों से हुई मुठभेड़ के बारे में बताता हूँ मनु।
1: हाँ हाँ।
0: संभाजी ने किसी के आगे भी हार नहीं मानी, बल्कि सभी साम्राज्यों से लोहा लिया। फोंडा का गढ़ पुर्तगाली मराठा सीमा पर था।
1: अच्छा।
0: गोवा की पुर्तगाली सत्ता को उकसाने तथा उस सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए घेरा देने का प्रयास पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। उसमें फोंडा गढ़ महत्वपूर्ण था। उसका नाम था मर्दनगढ़।
1: अच्छा।
0: पुर्तगालियों ने मर्दनगढ़ के तट पर तोपों का वर्षाव चालू रखा। तट में और एक दरार पड़ी।
1: और वो क्या?
0: जब पुर्तगालियों ने घाटी से अंदर प्रवेश करने का षड्यंत्र रचा उस समय संभाजी महाराज राजापुर में थे।
1: ओह।
0: और उनका ध्यान इस लड़ाई पर केंद्रित था। महाराज ने फोंडा के मोर्चे पर स्वयं उपस्थित रहने का निश्चय किया। वे शीघ्रता से फोंडा पहुंचे।
1: और फिर क्या हुआ?
0: उनका हट और दृढ़ इच्छा इतनी दुर्दम्य थी कि उन्होंने 800 सवारों की सुरक्षा में 600 पैदल सैनिकों को भली भांति किले में पहुंचाया। पुर्तगाली उनके धैर्य और निडर मानसिकता को देखते ही रह गए। उन्हें उन पर आक्रमण करने का भान भी नहीं रहा। संभाजी महाराज युद्ध में सम्मिलित हुए यह देखते ही वायसराय ने अपने मन में ऐसा पक्का निश्चय किया कि यह युद्ध उसे बहुत महंगा पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: महाराज की उपस्थिति देखकर मराठों को होश आया। किलेदार येसाजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का योद्धा था।
1: ओह।
0: अब वह वृद्ध हो चुका था, परंतु उसमें युवक को हटाने की शूरता, धीरता एवं सुदृढ़ता थी। इस वृद्ध युवक ने पराक्रम की पराकाष्ठा की उसने अपने लड़के कृष्णा जी के साथ चुनिंदे सिपाहियों को साथ लेकर गढ़ के बाहर जाकर पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी।
1: अच्छा, पुर्तगालियों से लड़ाई की?
0: जिनके साथ वे लड़े उनको उन्होंने पूरी तरह पराजित किया, परंतु इस मुठभेड़ में येसा जी और उनके सुपुत्र कृष्णा जी को भयानक चोटें लगी। जब पुर्तगालियों ने वहां से लौटना शुरू किया तो मराठों की उपस्थिति में उन्हें तोप और बंदूकों को पीछे छोड़ वहां से पलायन करना पड़ा।
1: अच्छा,
0: छत्रपति संभाजी राजा की मृत्यु तक पुर्तगाली एवं छत्रपति संभाजी दोनों में युद्ध चलता ही रहा। तब तक मराठों ने पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहने वाला प्रदेश जीत लिया था। उसका बहुत सांझ मराठों के नियंत्रण में था। वीर संभाजी को मैं शत शत नमन करता हूँ।
1: मैं भी उनको नमन करती हूँ। जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने पुणे के लिए दिया, मुझे नहीं लगता कोई भूल सकता है।
0: तुमने बिल्कुल सही कहा मनु।
1: पता है पुराना स्तंभ जी, मैं सोच रही थी क्या मैं भी ऐसी वीर हो सकती हूँ। कभी कभी तो मुझे छिपकली से भी डर लगता है।
0: हम सब में कोई ना कोई डर होता ही है मनु, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम में वीरता नहीं है।
1: पर मैंने तो ऐसा कोई वीरता वाला काम ही नहीं किया पूरी लाइफ में।
0: देखो, ये तो इस पे निर्भर करता है कि तुम वीरता समझती किसे हो।
1: मतलब
0: ये कि अपने गुणों और मर्यादाओं में बने रहना भी वीरता है।
1: अच्छा, सच में? वैसे एक गुण तो लगता है मुझे, मैं ना सबसे प्यार से बात करती हूँ और कभी गुस्सा नहीं करती।
0: बस यही तो तुम्हारी वीरता है, इसमें कायम रहना।
1: यस, यानी मैं भी वीर हूँ। अच्छा, अब जाने का समय हो गया है, पर आपकी बात मैं याद रखूंगी।
0: चलो, फिर तो आज तुमको भी थैंक यू।
1: थैंक यू पुराना स्तंभ जी, और बाय बाय।

पुराने स्तंभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब अपने एक्सपर्ट से सुनते हैं कि वो संभाजी महाराज के बारे में हमें और क्या नई बात बताते हैं।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: चटक मटक इक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली, चोरी चोरी मुख मोरी, मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई, ने पकड़ी बांह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा र

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM।

यह कला हमें बताती है कि ईश्वर केवल उपदेशों से नहीं बल्कि अपनी मधुर लीलाओं से भी भक्तों के हृदय को जीतते हैं। हर लीला में छिपा है आनंद, हर क्रीड़ा में छिपा है प्रेम, हर मधुरता में छिपा है भक्ति का अमृत। तो आइए आज के इस अध्याय में डूब जाए उस माधुरी में जो श्री कृष्ण के लीलाओं को अमर बना देती है। तो दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। लीला माधुरी का अर्थ है कृष्ण की लीलाओं का आकर्षण। गोकुल में माखन चोरी, गोपियों से हास्य विनोद और वृंदावन में रास लीला, ये सब केवल बाल क्रीड़ाएं नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय आनंद के दिव्य रूप है। कृष्ण की हर लीला भक्तों के हृदय को आनंद और भक्ति से भर देती है। उनके चंचलता में भी करुणा है, उनकी शरद में भी शिक्षा है। हर शरद में छिपा है प्रेम का संदेश, हर हास्य में छिपा है भक्ति का रस, और हर रास लीला में छिपा है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अद्भुत माधुरी। यह है लीला माधुरी, वह कला जो हमें बताती है कि ईश्वर की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक आनंद का द्वार है। आइए इस अध्याय में हम अनुभव करें उस माधुरी को जो श्री कृष्ण की लीलाओं को अमर बना देती है, हर भक्तों के हृदय में अनंत आनंद भर देती है। आइए दोस्तों, तो सुनते हैं और भी प्यारा सा एक दूसरा सुंदर गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब नन्हे कृष्ण माखन चुराते थे तो यशोदा मैया उन्हें बांधने का प्रयास करती, परंतु कृष्ण की लीला इतनी अद्भुत थी कि रस्सी कभी छोटी पड़ जाती। यह केवल बाल लीला नहीं बल्कि यह सिखाती कि ईश्वर को बांधना किसी के बस की बात नहीं। इसी प्रकार वृंदावन की रास लीला में कृष्ण ने अगणित गोपियों के साथ नृत्य किया और गोपियों को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ है। ये लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, हर हृदय में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। यही है लीला माधुरी, वह कला जो हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीलाएं केवल कथा नहीं बल्कि भक्तों के जीवन में आनंद और भक्ति का अमृत भरने वाली दिव्य अनुभूति है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और भी प्यारा सा मन को बहलाने वाला श्री कृष्ण का एक गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा की 16 कलाएं श्रृंखला के इस अध्याय में जिस कला का रसपान कर रहे हैं वो है लीला माधुरी। लीला माधुरी हमें यह स्पष्ट करती है कि जीवन स्वयं ईश्वर का खेल है। हर सुख दुख, हर चुनौती और हर आनंद सब कृष्ण की लीलाओं का ही हिस्सा है। जब हम इन्हें भक्ति और प्रेम से स्वीकार करते हैं तो जीवन स्वतः ही आनंदमय और मुक्त हो जाता है। यह व्याख्या में सिखाती है कि ईश्वर लीलाएं केवल कथाएं नहीं बल्कि हमारे जीवन का दार्शनिक आधार है। हर घटना में छिपा है एक संदेश, हर अनुभव में छिपा है एक शिक्षा और हर एक क्षण में छिपा है ईश्वर का स्पर्श। यही है लीला माधुरी, वह कला जो हमें जीवन की खेल की तरह देखने और उसे प्रेम से जीने की प्रेरणा देती है। एक सुनते हैं प्यारा सा सुंदर और एक गीत।
1: यमुने चतीरी का।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नंद गोकुल मरो भगवान, अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण स्वयं भगवान है। उनकी प्रत्येक लीला केवल बाल क्रीड़ा नहीं, बल्कि भक्तों को मोक्ष और आनंद प्रदान करने का दिव्य साधन है। गोकुल में माखन चोरी, वृंदावन में रासलीला और गोपियों के संग मधुर हास्य, इन सब में छिपा है ईश्वर का अद्भुत संदेश। कृष्ण की लीलाएं हमें ये अनुभव कराती है कि भक्ति केवल साधना नहीं, बल्कि आनंद और मुक्ति का मार्ग है। हर लीला में छिपा है प्रेम, हर क्रीड़ा में छिपा है भक्ति का अमृत, और हर क्षण में छिपा है ईश्वर का साक्षात्कार। यही है नंद गोकुल का चमत्कार, जहां बाल कृष्ण की लीलाएं भक्तों के जीवन को आनंद और मोक्ष से भर देती है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। तो सुनते हैं एक प्यारा सा सुंदर श्री कृष्ण का गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, यह थी दूसरी कला लीला माधुरी। यह कला हमें यह सिखाती है कि जीवन को खेल समझकर भक्ति और आनंद से जीना ही सच्चा मार्ग है। हर सुख दुख, हर चुनौती और हर आनंद सब ईश्वर की लीलाओं के ही प्रसंग है। यदि हम इन्हें प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार करें तो जीवन स्वतः ही आनंदमय और मुक्त हो जाता है। अब हमारी श्रृंखला का अगला पड़ाव होगा वेणु माधुरी, यानी श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुरता। वह बांसुरी जिसकी ध्वनि से गोपियां मोहित हो जाती थी, पशु पक्षी शांत हो जाते थे और संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में डूब जाता था। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। तब तक के लिए ओम शांति, जय श्री कृष्णा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। भागती दौड़ती हमारी जिंदगी में कई बार हम जान ही नहीं पाते कि किस दिशा में भाग रहे हैं, और फिर एक लम्हे को एक पड़ाव पर रुकते हैं और पूछते हैं तुझे क्या चाहिए जिंदगी। जानते हैं कि क्या चाहिए हमें, नहीं, लेकिन यही तलाश है जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। और इसमें आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। शिवानी जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। भाग तो हम रहे हैं, कोई करियर के लिए भाग रहा है, कोई मोहब्बत के लिए भाग रहा है, कोई जिंदगी में यूं ही भाग रहा है,
1: शायद पता नहीं किस तरफ भाग
0: किस
1: रहे
0: तरफ भाग रहे हैं सच में, लेकिन क्या हम जान पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए।
1: एक्चुअली हमें पता है शायद क्या चाहिए, लेकिन कई बार हमारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि हमें क्या चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन बीच बीच में रुक करके देखना पड़ेगा कि क्या हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जो चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है एंड आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें बीच में रुक कर पूछना पड़ेगा कि एम आई ऑन द राइट वे। लेकिन अगर हम ये कहें कि मुझे रुक कर पूछने के लिए टाइम नहीं है,
0: मैं भागता ही जाऊंगा,
1: हाँ मेरे पास पूछने के लिए ही टाइम नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि हम जाना चाहते थे कहीं और पहुंचते हैं कहीं और फिर बाय देन इट्स टू लेट।
0: यस,
1: यू नो, एंड देन समटाइम्स टुवर्ड्स द फैग एंड हम कहते थे कि मुझे तो ये चाहिए था, ये चाहिए था, मुझे तो जीवन में बस ये चाहिए था। बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जो चाहिए था
0: वो
1: शायद अभी भी तलाश कायम है।
0: बिल्कुल। और अगर हम इस भागदौड़ की बात करें और इस इन छोटी छोटी मंजिलों की बात करें या अचीवमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहली जो अचीवमेंट अगर हम स्थूल रूप में देखते हैं तो वो ये कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे फिर पैसा चाहिए।
1: एक्चुअली एवरी स्टेप पर ना हमारा जो चाहिए का डेफिनेशन है वो चेंज होता है, विच इज नेचुरल। एक स्कूल गोइंग बच्चे के लिए है कि मुझे 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए, देन इट्स योर 12th, देन ग्रेजुएशन, देन इट्स योर जॉब, फिर आपको है फैमिली, फिर फैमिली शुरू हो गई तो इट्स अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो सब तो है ही और वो सब चलता भी रहेगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन ये सब कुछ करते हुए लेट्स से सपोज आपसे ही अभी पूछे कि डोंट थिंक टू मच, बहुत लॉजिकली एनालाइज मत कीजिए अपनी लाइफ को, लेकिन वैसे ही अगर आप अपने आप से पूछो कि एट द एंड ऑफ इट मुझे क्या चाहिए, या इवन राइट नाउ मुझे क्या चाहिए,
0: I'll say happiness.
1: खुशी आपने कहा, तो खुशी इज एक स्पॉन्टेनियस जो निकलता है हमारे अंदर से, बिकॉज हर एक को वो चाहिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो रिटायर्ड है, चाहे वो उसके बीच वाली जर्नी में है, लेकिन खुशी, शांति, प्यार, ये हम सब कुछ चाहिए। एंड हम जो कुछ कर भी रहे हैं ना, इट इज फॉर दैट ओनली। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सुबह से निकलते हैं, अपना करियर बना रहे हैं, आप भले सैलरी कहे उसको, डेजिग्नेशन कहे, स्टेटस कहे, लेकिन वो सब भी किस लिए चाहिए लोगों को?
0: हैप्पीनेस के लिए।
1: बिकॉज चाहिए हैप्पीनेस के लिए, एंड समवेयर वी थॉट के इन चीजों से हैप्पीनेस मिल जाएगी, तो हम इसलिए इन चीजों के पीछे हम चलते गए। और होना एक्चुअली ये हो सकता है कि हम ये सब कुछ जो हमें प्राप्त करना है, जो हमारे माइलस्टोन्स हैं लाइफ के, ये हमें सब चाहिए एंड वो स्टेप बाय स्टेप मिलते भी जाएंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान हैप्पीनेस हमारे साथ रहनी चाहिए।
0: ओके, यू सी, लाइक इट्स अ जर्नी,
1: इट्स अ
0: जर्नी, जो आप ये कह रहे हैं कि एक पूरा सफर है।
1: यू, वी हैव हर्ड आल्सो सो मेनी टाइम्स, हमने इतने सारे कोटेशंस पढ़े हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी, बट इसका भाव क्या है? यू नो, जैसे ट्रेन से भी ट्रैवल करें या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो हर एक पे लिखा जाता है वी होप यू हैव अ प्लेजेंट जर्नी। इट्स नॉट रिटन के वी होप दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन एनी हाउ। You see, suppose both of us are traveling together, तो ऐसा नहीं है कि जर्नी में कितनी भी मुश्किल हो बस किसी भी तरह हम बॉम्बे पहुंच जाएं। That's not the fun. The fun is कि हमारी पूरी जर्नी बहुत अच्छी गुजरे, हंसते खेलते बात करते, then we enjoy the process. It's like एक स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल लाइफ इज अ वेरी नाइस लाइफ, तो इट्स नॉट कि when I finish 10th standard I'll be happy, but उस पूरी स्कूलिंग के दौरान I should be happy. You know, it's not that when I get my job, then I will be happy.
0: इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें शिवानी, कि अगर मैंने एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, मैंने एक एमएससी में नौकरी करना चाह रही थी अच्छी पोस्ट पे, वहां मैं पहुंच गई और वो अचीव कर लिया, या कुछ और कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज थी और मुझे लगता है कि मुझे उससे वो मेरे खुशी का लम्हा होगा, वो खुशी मैंने पाई भी उस लम्हे, मैंने पाया उसे, लेकिन वो इतना क्षण भंगुर है, अगले ही पल कोई भी ऐसी खबर मेरी उस खुशी को दुख में बदल सकती है।
1: बिकॉज वो रियली खुशी नहीं है, इट इज एन अचीवमेंट एंड इट इज हमने एक लक्ष्य रखा कि मुझे ये करना है, एंड जैसे ही वो लक्ष्य को प्राप्त हुआ, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, लेकिन उसको हम खुशी के साथ नहीं मिक्स कर सकते।
0: हेल्थ और हैप्पीनेस के बीच में मैं क्यों कैसे जुड़ सकते,
1: एक जर्नी है जैसे, और ये जैसे आपने कहा ना जो साधन भी है कि हमने गाड़ी खरीद ली या हमने जो भी कुछ खरीद लिया, ये साधन भी पहली बात हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये साधन हमें खुशी दे रहे हैं, क्योंकि हम ये साधनों को बटोरने की होड़ में जो लगे हुए हैं, यू नो, एक के बाद एक चीज, आप देखो घर में भी एक लिस्ट बनी रहती है, ये लेना उसके बाद ये लेना, तो यू डोंट इवन गेट टाइम टू पॉज, आप एक चीज लेते हैं तो बाय दैट टाइम यू हैव अनदर लिस्ट रेडी, विच इज ओके, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन क्या ये चीजें हमें खुशी दे रही है, या इट इज इट द फीलिंग कि मैंने ये चीज प्राप्त कर ली जो मैंने डिसाइड की थी, वो हमें खुशी दे रही है। तो खुशी हमें वो चीज से नहीं मिल रही है, खुशी उस चीज को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को पूरा करने की खुशी मिल रही है। दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो इसका मतलब खुशी मेरी अपनी जेनरेशन थी, मैंने अपने आप उसको क्रिएट किया क्योंकि मुझे लगा मैंने लक्ष्य रखा वो पूरा हुआ, मुझे खुशी हुई, लेकिन वो चीज खुशी नहीं लेकर आई थी अपने साथ।
0: अगेन आई वांट टू आस्क इज लाइक हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली,
1: इट इज एनर्जी, इट इज अ फीलिंग। सी हैप्पीनेस इज अ फीलिंग। अगर मैं कहूं कि ये रिंग पहनी है, दिस इज गिविंग हैप्पीनेस, इट्स नॉट ट्रू, ये दे नहीं सकती है, चाहे ये सिल्वर की हो, गोल्ड की हो, इसमें एक डायमंड हो या दस लगे हो, ये खुशी नहीं दे सकती है, बट वी फील के ये पहनने से खुशी मिलेगी, बहुत अच्छी साड़ी पहनने से खुशी मिलेगी, बहुत अच्छे सोफे पे बैठे हैं तो खुशी मिलेगी, हियर समवेयर वी आर गोइंग अ लिटिल यू नो रॉन्ग, बिकॉज इसलिए आप देखो कि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं इन चीजों को बटोरने में, तो आज दिन ब दिन हमारी मेहनत बढ़ती जा रही है लाइफ, जैसे आपने कहा हम भाग रहे हैं क्योंकि एफर्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या खुशी भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ रही है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, यू नो लाइक डेफिनेटली हम भाग तो इतनी ज्यादा तेज स्पीड से रहे हैं, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे पिछले जनरेशन आराम से जिंदगी जीते हुए ज्यादा खुश थे, ज्यादा सेटिस्फाइड थे,
1: राइट? तो द एफर्ट हैज इंक्रीज्ड, लेकिन द रिजल्ट भी तो उतना ही बढ़ना चाहिए था, एफर्ट बढ़ा तो रिजल्ट भी बढ़ना चाहिए, और आज अगर हम देखें कि खुशी बढ़ने की बजाय और ही शायद
0: घट रही है,
1: घटती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज हमने कहीं दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। आप मेहनत एक चीज के लिए कर रहे हैं तो प्राप्त भी वही चीज होगी, आप ये नहीं समझे कि मैं मेहनत ये करूं प्राप्त दूसरी चीज हो, हम मेहनत अपने करियर में कर रहे हैं तो हमें एक अच्छी पे पैकेज, अच्छी सारी पर्क्स जो मिलनी चाहिए वो सारी मिल रही है, एंड इफ यू सी इन द लास्ट 10 इयर्स वी हैव रियली प्रोग्रेस्ड, जिस तरह के सैलरी स्ट्रक्चर्स और ये सब चीजें आज हमें मिल रही हैं, तो फिर वो 10 साल पहले नहीं थी, क्योंकि हमने एफर्ट किया, तो एफर्ट का हमेशा रिजल्ट मिलेगा ये हो नहीं सकता, लेकिन क्या हमने खुशी के लिए एफर्ट किया? नहीं, हमने इन मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए एफर्ट किया, और आज अगर आप धीरे धीरे देखें हम सबके घरों में ऑलमोस्ट सारी चीजें आई गई हैं,
0: लेकिन अगेन वी आर बिकमिंग डिसिल्यूजन्ड, यू नो, एफर्ट के बाद हमें रिजल्ट मिलने के बावजूद मे बी बिकॉज वी हैवंट रियलाइज्ड,
1: दैट्स बिकॉज द एफर्ट वाज फॉर समथिंग एल्स एक्चुअली, यू नो, इट्स लाइक मैंने चाहे थी खुशी, एफर्ट किया मैंने धन के लिए, धन तो मिल गया लेकिन खुशी तो मिली नहीं साथ में,
0: फिर से
1: लेकिन मैं एफर्ट तो खुशी के लिए कर रही थी, लेकिन मैंने एक जो कनेक्शन बीच में जोड़ दिया था कि जितना धन उतनी खुशी, जितने साधन उतनी खुशी, वो मेरी अपनी क्रिएशन थी, विच इज नॉट ट्रू, किसी भी गाड़ी के साथ, किसी भी मकान के साथ ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि यू नो दिस विल गिव यू हैप्पीनेस, आप गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस पढ़ लो, इट विल टेल यू व्हाट ऑल इट विल गिव यू, नोवेयर इज इट रिटन कि ये आपको खुशी देगा। इस सोफे को हमने लिया, हमने स्पेंड किया होगा ना इसको लेने पे, ये हमें आराम देगा, ये हमें खुशी नहीं दे सकता, हमने सोचा ये हमें खुशी देगा, फिर जब इसने हमें नहीं दी तो हम डिसिल्यूजन हो गए,
0: फिर हम और भागे,
1: हमने इतनी मेहनत, फिर हमने सोचा ये सोफे ने तो खुशी नहीं दी, अब हम कुछ और खरीदते हैं, हम कुछ और, सो इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन,
0: इट मींस वी आर मूविंग इन सर्कल्स, यू नो, देयर इज अ टोटल विशेस सर्कल,
1: वी वोंट रीच एनीवेयर,
0: या
1: बिकॉज हमें ये भी नहीं पता कि हम किस चीज की खोज में लगे हुए हैं, हमें चाहिए खुशी, हम खरीद रहे हैं आराम के साधन, आराम के साधन हमें आराम देंगे, विच इज फाइन, वो भी तो चाहिए, फिजिकल कंफर्ट चाहिए। हम इस पे कितने आराम से बैठे हैं अभी, लेकिन जरूरी नहीं है हम खुश हैं अंदर। हो सकता है हम जमीन पे बैठे हो, आई वुड प्रोबली नॉट बी एबल टू सिट इफ माई लेग इज हर्टिंग, बट हो सकता है आई कैन स्टिल बी हैप्पी। सो वी वांट टू मिक्स द टू थिंग्स। तो फिजिकल चीज हमें फिजिकल कंफर्ट देगी,
0: हैप्पीनेस नहीं,
1: हमें आंतरिक खुशी नहीं देगी। खुशी इज इंटरनल, इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट कंफर्ट। वी मिक्स द टू थिंग्स। अब क्या, जैसे आपका ये मकान है, आपका एक गार्डन इस तरफ है, एक गार्डन इस तरफ है, अगर आपको दोनों गार्डन्स इक्वली फ्लरिश होते हुए दिखाई देने, यू विल हैव टू स्पेंड इक्वल टाइम ऑन बोथ ऑफ देम ना, यू वाटर बोथ द साइड्स। अगर आप कहें कि मैं एक तरफ पानी डालूं और दोनों गार्डन बने, तो ये नहीं।
0: Okay.
1: अब इसी तरह हमें फिजिकल कंफर्ट भी चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, हमें खुशी भी चाहिए, शांति भी चाहिए। देयर टू डिफरेंट थिंग्स। हमने अपने 24 घंटे इस वाले तरफ लगा दिया और हमने ये सोचा इस तरफ जाते जाएंगे ये वाली चीज अपने आप आ जाएगी, ये वाला साइड सूख गया, ये वाला साइड बहुत फ्लरिश हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: वंडरफुल, बिकॉज यू नो इट एक्चुअली क्लियर्स अप द थिंग्स।
1: सो जिस पर आप एफर्ट करोगे यू विल गेट दैट। वी शुड नॉट थिंक कि यू नो हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा, इस पे कर रहे हो ये मिल रहा है, इस पे थोड़ा सा करेंगे ये भी मिल जाएगा।
0: बहुत सुंदर। अच्छा तो मतलब
1: दैट इज द थिंग,
0: हम दूसरे गार्डन की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने ये बात, तो सबसे बहुत अच्छी बात हमने जो रियलाइज की वो ये कि जिन कम्फर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस फिजिकल कम्फर्ट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं,
1: बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सी,
0: नो नो नो, डेफिनेटली
1: देयर इज नथिंग। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इसका मतलब यू नो ज्ञान योग मेडिटेशन मीन्स कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। फिजिकल कम्फर्ट है तो भी बहुत अच्छा, नहीं है कल को तो भी इट्स नॉट एन इशू।
0: हाँ, वो उस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर है
1: उसको यूज करते हैं, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये दो डिफरेंट चीज हो जाएंगे। यू नो आज मोबाइल है, हम यूज कर रहे हैं, आप किसी को देखो उसका मोबाइल थोड़ी देर आउट ऑफ रेंज हो जाए या यू नो नहीं चल रहा, डिस्चार्ज हो जाए, पैनिक होने लगते हैं। ये जो डिपेंडेंसी है दैट इज देन ड्रेनिंग अस आउट टोटली।
0: Okay, that's a nice way of actually handling the problems and realizing that what actually हम किसके लिए भाग रहे हैं।
1: Absolutely.
0: अब हमने एक बात तो ये कि जो फिजिकल अचीवमेंट्स हम ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम

0: है ना। वापस तो हमें फिर उसी रूटीन में आना ही है। इसमें हमें जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो हमारा रूटीन है वो थोड़ा सा बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेनियस है। तो दिस इज अ चेंज, इट्स नॉट हैप्पीनेस अगेन, इट्स अ चेंज फ्रॉम माई रूटीन। रोज वही वही खाना खा रहे हैं, रोज वही खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ डिफरेंट खाएंगे तो वो खुशी देगा। इट्स अ चेंज। लेकिन ये जो है पार्टी में जाना या इस तरह से करना, ये एक एक्साइटमेंट जनरेट करता है। इवन इफ यू सी द एनवायरमेंट इस तरह के लोग, इट्स एक्साइटमेंट, इट इज प्लेजर। एक होता है ये जो कर्म इंद्रिय हमारी, जिसको हम कहेंगे सेंशुअल प्लेजर, देखा कुछ मूवी देखी, बहुत अच्छा गीत सुना, बहुत टेस्टी कुछ खाया, इन सेंसेस से मिलने वाला सुख, ये सेंशुअल है, ये अभी है, अभी चला जाएगा। आप कुछ बहुत टेस्टी खा रहे हैं, आपकी इधर ही है अभी वो मुख पे, यू आर लाइकिंग द टेस्ट। कुछ अभी गलत सुन लिया, कुछ हो गया अचानक, कहाँ जाएगा वो टेस्ट सर? अभी तो मुख पे ही पड़ा, अंदर भी नहीं गया अभी। एंड उसका टेस्ट भी आप कितनी देर एंजॉय करते हैं? जस्ट टिल इट इज ऑन योर टंग, आफ्टर दैट इज फिनिश्ड, इट्स ओवर। लेकिन वो टंग पे अभी है और अभी आपने सुन लिया कि अचानक कुछ हो गया है गायब, तो वो चीज आपको खुशी तो नहीं दे रही।
1: यस, बिकॉज हम सुनते आ रहे हैं सदियों से कि खुशी जो है वो इटर्नल है, यू नो, इट हैज टू बी परमानेंट।
0: इट्स अ फीलिंग, इट इज एन इंटरनल फीलिंग। और ये जो चीजें हम जिसको उसके साथ मिक्स कर दिया, ये है प्लेजर्स, ये है एक्साइटमेंट, ये है फन, आप इसको फन कह सकते हैं, लेकिन ये इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है। और कई बार ये भी हो सकता है हम हॉलीडे पर भी जाके आ जाएं, बट वी वर नॉट इवन हैप्पी एट द हॉलीडे। हम हॉलीडे पे गए द फैमिली, बट हस्बैंड एंड वाइफ के वहां भी आपस में
1: डिफरेंस,
0: झगड़ा हो रहा है। आप डिनर पे रेस्टोरेंट में चले गए, वहां भी आपकी ओपिनियन क्लैश हो गई और सारा सब कुछ हो रहा है। तो खुशी का
1: जी,
0: तो खुशी एक एक्चुअली हमें अपने आप से पूछना होगा कि मेरे लिए खुशी क्या है, बिकॉज हम सब पूरी यात्रा में उसके लिए चल रहे हैं, द होल जर्नी इज फॉर
1: एक और लाइफ की। अगर हम जर्नी की बात करते हैं, एक और एस्पेक्ट जिसे हम हैप्पीनेस से जुड़े, एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज लाइक अल्टीमेटली व्हाट हैप्पीनेस इज, बट उससे पहले हम ये जानते जाएं कि जिसे हम खुशी मान रहे हैं, क्योंकि वो हमें खुशी दे नहीं रही, हम अभी भी भाग रहे हैं। अगर हमें खुशी मिल जाए तो हम शांत हो जाए ना, हम रुक जाए, हम रुक नहीं रहे हैं, हम कंटिन्यूस उसको तलाश रहे हैं। सो एक हमने ये जाना कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, फिजिकल अचीवमेंट्स, वो हमें खुशी नहीं दे रही, वो कम्फर्ट देती है। दूसरी तरफ इस तरह की एक्साइटमेंट दे रही है, इस तरह की आउटिंग्स, एवरीथिंग, बट अगेन हैप्पीनेस इज समवेयर, यू नो, वेयर
0: दीज आर ऑल्सो राइट, अगेन नन ऑफ देम आर रॉन्ग। सी, क्योंकि हो सकता है कि आप एक नॉर्मल रोज रोज रोज एक दिनचर्या करते हुए आपको एक चेंज चाहिए, गो फॉर द चेंज, but don't go with an illusion.
1: That's what I'm saying, you know, these are the that's illusions.
0: Important, go for the change, but not with the illusion ke, oh, that's happiness.
1: Again, another illusion which we are all living, I'm saying, we take it as ki ye sachai hi hai, aur wo hai love, relationship, you know. Usme hum ye sochte hain ki agar हम किसी से प्यार कर रहे हैं उससे बढ़कर खुशी नहीं मिल सकती, उससे ज्यादा खुशी नहीं, और वो एक इंडिविजुअल, यू नो, सारी मेरी खुशी उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो मेरे लिए, मतलब वो खुश है तो मैं खुश हूं तो वो खुश, ऐसा एक कॉम्बिनेशन। बट समवेयर आगे चलते हैं, अगर वो रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाता, मतलब वो मोहब्बत एक कन्वर्ट होती है रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप ही चलता है, वो भी हमें तकलीफ दे रहा है, हमें खुशी नहीं दे रहा।
0: संबंधों में भी, चाहे जो भी तरह का आप संबंध लो, चाहे एक पेरेंट चाइल्ड का भी आज एक रिलेशनशिप है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार से, इतनी मेहनत से बड़ा करते हैं, खुशी मिलती है उसमें भी, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन बाद में अगर वो बच्चा अपनी अपनी साइड ऑफ द रोल नहीं प्ले कर पाया, या अपनी जिम्मेवारी नहीं प्ले कर पाया, और वो कहीं अलग रहने लगा या किसी कंट्री से बाहर चला गया, तो वही पेरेंट्स दुखी होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं, उसी बच्चे के वजह से भी उदास होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये निकल आएगा, मैंने आपके लिए इतना किया, आपने इन रिटर्न मेरे लिए क्या किया। तो सारे रिलेशनशिप्स हमारे कंडीशनल हो गए, और कोई भी चीज जब कंडीशनल होगी वो हमें खुशी नहीं देगी। आप एक कर दो, रोड क्रॉस करते करते किसी को रोड क्रॉस करवा दो सिर्फ, ठीक है, समबडी इज ओल्ड या ब्लाइंड, एंड देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी। इट विल बी नॉट कि वो कुछ करेगा आपको, लेकिन आप खुद को एक अच्छी फीलिंग अंदर जनरेट होती है, बिकॉज आपने कुछ ऐसा किया जिसमें यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, लेकिन जहां एक एक्सपेक्टेशन फैक्टर आ जाता है, मुझे आपसे खुशी चाहिए, यू नो, हमारे रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा इशू वो ही हो रहा है कि मुझे उनसे प्यार चाहिए, मुझे उनसे खुशी चाहिए, लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा उनके पास है क्या वो।
1: बिल्कुल,
0: आप खुद अपने अपसेट हो, सपोज इस टाइम आप खुद परेशान हैं बिल्कुल, और मैं वेट कर रही हूँ सुबह से कि

0: कनुप्रिया से मिलूंगी मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं मिलूंगी मुझे बहुत खुशी मिलेगी. यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट टू गिव इट टू मी. रिलेशनशिप्स शुड बी मोर ऑफ गिविंग रादर देन ऑलवेज टेकिंग, क्योंकि इस समय वो समय ही नहीं चल रहा जो हम एक्सपेक्ट करें हमें औरों से कुछ मिलना चाहिए. हमारे पास वो चीज ऑलरेडी है, हमें अब वो औरों को बांटनी है.
1: ब्यूटीफुल.
0: अगर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मुझे खुशी मिल रही है, तो वो खुशी सामने वाले व्यक्ति से नहीं मिलती, मुझे उस व्यक्ति से इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है तो वो मुझे खुशी होती.
1: तो वो मैं ही कहीं इंटरनलाइज्ड, यू नो, ये पूरा
0: जो दुख भी मुझे मिलता है वो भी मुझे खुद ही मिलता.
1: हाँ, मैं ही
0: सामने वाला ना मुझे खुशी दे रहा है ना दुख दे रहा है, मुझे उससे मिलकर, उससे बात करके, उससे इंटरेक्ट करके जो जनरेट करना है वो मैं खुद जनरेट.
1: लेकिन हम ब्लेम गेम में तो कंटिन्यूस रहते हैं, यू नो, लाइक कि खासकर रिश्तों की अगर हम बात करें, हमने दो एस्पेक्ट्स तो जान लिए कि वो कुछ कुछ चीजें दे रहे हैं हमें, लेकिन खुशी हमें नहीं दे रहे हैं.
0: खुशी हम अपने इंटरेक्शंस में खुशी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सी, बट ये नहीं हम कह सकते कि उनसे हमें खुशी मिलेगी या वो ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी. फिर उससे क्या होगा, मेरी खुशी हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति पे या किसी ना किसी परिस्थिति पे डिपेंडेंट हो गई,
1: निर्भर हो जाएगी,
0: कंडीशनल हो जाएंगे. ये होगा तो खुशी होगी, ये इसने ऐसा किया तो खुशी होगी, उन्होंने अगर इस तरह मेरे से बात की तो खुशी होगी, आज अगर उन्होंने अच्छी तरह से बात की तो खुशी है, कल नहीं बात की गम.
1: बिल्कुल.
0: आपने मेरी महिमा कर दी तो खुशी है, आपने थोड़ी सी निंदा कर दी तो उदासी है. मतलब फिर मेरी खुशी तो सारा दिन
1: अप डाउन्स में रही ना.
0: तो दैट्स नॉट रियली हैप्पीनेस, इजंट इट?
1: इन फैक्ट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क. वी हैव नेगेटेड लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, वी रियलाइज्ड अचीविंग, यू नो, दीज अचीवमेंट्स या फिजिकल जो एस्पेक्ट्स हम ले रहे हैं उन्हें अचीव करना, उन्हें पा लेना, या फिर आपने कहा कि एक्साइटमेंट, पार्टीज में जाना, या दूसरी तरफ रिश्तों में भी खुशी जो है वो हमें तीनों में अभी तक नहीं मिली है. तो खुशी क्या है?
0: कई बार ऐसे नहीं होता, कई बार ऐसे नहीं होता, पॉकेट में अपनी चाबी पड़ी होती है, हम पूरे घर में ढूंढते घर में भी नहीं मिलेगी, ऑफिस में जाके ढूंढेंगे, और फिर कई बार हमारा पूरा परिवार हमारे साथ ज्वाइन कर लेता है कि आखिर वो कहाँ है. राइट, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ. एक छोटा सा बच्चा किसी लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होके कुछ ढूंढ रहा था, तो एक बुजुर्ग भाई वहां से आए, कहा आप कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? तो कहा मेरी चाबी घूम गई है यहाँ पे. तो वो भी उसको ज्वाइन किया और उसके साथ ढूंढने लगे. दोनों जने ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था. साथ में और एक कपल वॉक करते आया, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया. इस तरह से आफ्टर सम टाइम 7-8 लोग उस बच्चे को मदद कर रहे थे उसकी चाबी ढूंढने में. थोड़ी देर बाद एक बहुत ही अनुभवी माता जी वो आई वहां पे, कहा आप लोग सब इतनी मेहनत करके क्या ढूंढ रहे हो? कहा इन बच्चे की चाबी गुम गई है, वो ढूंढ रहे हैं. तो माता जी बहुत अनुभवी थी, उन्होंने बच्चे को कहा यहीं पे गिराई थी क्या पक्का? तो कहा नहीं माता जी, गिराई तो अंदर थी उधर. तो माता जी ने कहा यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो फिर? वहां बहुत अंधेरा है, यहाँ लैम्प पोस्ट थी ना, इसलिए हम यहाँ ढूंढ रहे थे.
1: ओके, तो जहाँ रोशनी दिखी जहाँ चकाचौंध, बहुत सुंदर बात.
0: तो जहाँ हमें रोशनी दिखी हम वहां ढूंढना शुरू कर दिया, और हम ढूंढते ढूंढते हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज हमारे साथ जुड़ गया उस चीज को ढूंढने में. लेकिन वो एक्चुअली जहां पर है शायद हमने वहां नहीं देखा, क्योंकि हमें वहां देखने में भी डर लग रहा है,
1: क्योंकि वहां अंधेरा है.
0: वहां अंधेरा है, बहुत समय हुआ वहां देखा नहीं है. बट इट्स हियर, इट्स क्लोजेस्ट टू मी एंड इट्स इजिएस्ट टू लुक फॉर. वो मेरी अपनी चीज है. व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? आपके लिए क्या होगी खुशी?
1: See, it's so difficult to say. Happiness is like if I can get what I want. I'm saying, at that time, today, whatever I want, if I get, I think that will be happiness.
0: Again, that will become conditional, na?
1: Haan.
0: Ye dekha, conditional ho gaya. Ki agar mujhe wo mila, to khushi hai. Nahi mila, to nahi khushi hai. Ab aise to ho nahi sakta na, ki aap saare jo apne conditions rakhoge, wo puri honge. For me, happiness would be, ki ye mujhe chahiye, aur isko dhoonne ke dauran, ya isko praapt karne ke dauran, mujhe khushi se isko praapt karna.
1: Journey bhi. जो तो जर्नी है आप,
0: बिकॉज खुशी वो प्राप्त करने में नहीं मिल रही है. खुशी एक आंतरिक स्थिरता है, स्टेबिलिटी. शांति भी क्या है? वही है. हम कहते हैं ना, ऐसा कुछ हुआ मेरी शांति भंग हो गई, मतलब शांति थी भंग हो गई. खुशी हम अभी आज हम कहते हैं खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए. कहाँ मिलेगी? मॉल्स में चले जाओ, लंदन घूमा, कहीं भी चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, ओशन में चले जाओ, नहीं मिलने वाली. इट्स समथिंग इनसाइड मी, इट्स ऑलरेडी देयर. एक्चुअली राजयोग मेडिटेशन जब हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो जो सबसे प्रोफाउंड रियलाइजेशन थी वो ये थी कि ये जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं, चाहे वो खुशी है चाहे शांति है, ये एक्चुअली चाहिए नहीं, ये एक्चुअली ऑलरेडी है. अब क्या करना, सिर्फ उसको मेंटेन करना, उसको पहले रिकग्नाइज करना, उसको अपनी अवेयरनेस में लाना है और उसको मेंटेन करना है. ये ध्यान रखना कि वो गुम ना हो, लीकेज ना हो किसी भी तरह से.
1: कैसे जाने, ये आपने बहुत सुंदर बात ये कही कि कस्तूरी गंध अपनी ही थी, यू नो लाइक
0: समवेयर,
1: लेकिन वो कहाँ है.
0: पहली बात तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना पड़ता है. अभी हम कहते रहेंगे मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, ढूंढते रहेंगे तो उसी स्थिति में रहेंगे. अब समझ में आ गया कि खुशी तो है ही ना, व्हाट एम आई राइट नाउ, क्या है, खुश तो हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, सिर्फ कि अगर कनुप्रिया ने कोई ऐसा शब्द कह दिया जो मुझे ठीक नहीं लगा, मैं अपसेट ना हो जाऊं, क्योंकि फिर वो जो खुशी मेरे पास है वो शायद थोड़ी सी लीकेज हो जाएगी. एक ग्लास है, हम कहते रहते हैं जी मैं खाली हूं अंदर, मुझे भरना है, खुशी से भरना है. बट वी हैव रियलाइज नाउ कि वो ग्लास एक्चुअली ऑलरेडी भरा हुआ है, वो फुल है. वी आर फुल ऑफ लव, वी आर फुल ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन हम बहुत छोटी छोटी बातों से उसको लीक होने देते हैं,
1: उसके छेद करते जा रहे हैं.
0: बिल्कुल, ये परिस्थिति ऐसी हुई, मैं अशांत हो गया, ये ऐसा हुआ, मेरा मन परेशान हो गया, हम उसको लीकेज बहुत जल्दी होने
1: देते हैं. तो इतने सालों में कहीं हम, क्योंकि हमने अवेयर ही नहीं हुए. आज अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, कि इतने सालों में हमने इतनी लीकेज तो नहीं कर ली कि कहीं वो सब निकल गई.
0: नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स अगेन जस्ट गोइंग बैक टू द अवेयरनेस, बिकॉज वो ऑलरेडी है, वी आर फुल इनसाइड. आप देखो, खुशी चाहिए भी क्यों, पहली बात, शांति चाहिए भी क्यों, क्योंकि एक्चुअली शांति हमारी अपनी ओरिजिनल नेचर है. वी लाइक पीस. हम कितना भी गुस्सा कर दे सारा दिन में, हमें फिर भी गुस्सा पसंद नहीं आता. हमें शांति पसंद आती है. जैसे ये शरीर पांच तत्वों का बना है, पानी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका. हम भाग कर आएंगे, हम कहेंगे पानी पिला दो, पानी चाहिए. उस समय चार लिक्विड्स और कोई पड़े हो, नहीं, पानी, एनीथिंग टू डू विद वॉटर, क्योंकि वॉटर का लेवल कम हुआ ना, तो वॉटर ही तो चाहिए फिर उसके लिए. तो अब शांति का लेवल कहीं कम लग रहा है, तो सारा दिन कह रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए. क्यों? क्योंकि हम शांति के बने हुए हैं. आई एम पीसफुल, तभी आज फील हो रहा है कि शांति चाहिए. अगर इफ आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट पीस, आई वुडंट इवन नो व्हाट पीस इज.
1: तो मेरा मूल में जो है वो खुशी,
0: दैट्स माय ओरिजिनल नेचर, दैट्स माय ओरिजिनल संस्कार. अगर आप अभी एक मिनट भी सिर्फ बैठो और अपने आप से कहो कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, क्या है, I am peaceful. That itself, just that thought that I am a peaceful being, it makes all the difference. And abhi tak hum bolte the, main gusse wali hu, main gusse wali hu, main gusse wali hu. To jo cheez ki awareness mein hum rahenge aur usko baar baar repeat karenge, wo reinforce ho jayega. Hum baar baar kahe main hu hi gusse wali, main hu hi gusse wali, to wo gusse ka sanskar और पक्का हो जाएगा. मेडिटेशन मींस रोज अपने आप से बात करके अपने आप को याद दिलाना कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप, दैट इज माय नेचर,
1: मैं हूँ ही हैप्पीनेस,
0: एब्सोल्युटली आनंद का स्वरूप हूँ मैं. हैप्पीनेस इज माय नेचर, आई डोंट वांट हैप्पीनेस, आई एम मेड आउट ऑफ इट, इट्स माय ओरिजिनल क्वालिटी.
1: वंडरफुल सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें खुशी का सही स्वरूप दिखाने के लिए. आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज इस पूरी श्रृंखला में हम खुद को तलाशेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हमारे अपने ही अंदर है. आज हमने जाना कि खुशी हमारे अपने पास है. अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो खुशी को हमसे दूर ले जा सकती है और कैसे हम उसे अपने अंदर कायम रख सकते हैं. आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, श्रृंखला का एक हिस्सा बन सकते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666555. अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में खुशी को फिर तलाशेंगे साथ मिलकर. नमस्कार.

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्यापूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
1: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार आला.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याच सोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूं आरजे शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रोते हो, कहते हैं हमारे मन में असीम शक्तियां हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में है. मन की शक्तियों को जगाए कैसे? मन जिसे दौड़ने वाले घोड़े की उपाधि दी गई है, इस पर लगाम लगाएं कैसे? मन पर अधिकार जमाएं कैसे? मन वही करे जो मैं आत्मा इसे आदेश दूं, पर यह होगा कैसे? मन है तो बहुत शक्तिशाली. मन का काम ही है विचार करना. हम मन को विचार करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में है, मन विचार करता ही रहेगा. मन के विचारों को कम किया जा सकता है, इसे सकारात्मकता की ओर, अच्छे विचारों की ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके विचारों को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता. मन में कम से कम विचार हो और सिर्फ अच्छे यानी सकारात्मक विचार हो, तो समझ लेना हम मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्वस्थ हैं. लेकिन मन में बहुत ज्यादा निगेटिव विचार चल रहे हैं, तो समझ लेना मन रूपी घोड़ा गलत पटरी पर भाग रहा है. इस पर परमात्मा की श्रीमत रूपी लगाम कसकर इसे सही रास्ते पर, सकारात्मक रास्ते पर दौड़ाने की जरूरत है. जब मन रूपी घोड़ा सकारात्मक रास्ते पर दौड़ता है, तो इसके अंदर उठने वाले विचारों की संख्या भी कम होती है, जिससे हमारी आत्मा की शक्ति खर्च नहीं होती, बल्कि सकारात्मक अच्छे विचारों के वजह से यह शक्ति बढ़ती है. लेकिन जब मन रूपी घोड़ा नकारात्मकता के रास्ते पर दौड़ता है, तो विचारों की संख्या ज्यादा होती है और निगेटिव विचारों से आत्मा की शक्ति घटती है. निगेटिव विचार आखिर है क्या जिससे हमारी शक्ति घटती है? निगेटिव विचार वो है जो विकारों से जुड़े हैं. जब भी मन में काम वासना के विचार आते हैं, या क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत के विचार आते हैं, यह सब विचार हमें निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा के रास्ते पर दौड़ाते हैं, जिससे आत्मा कमजोर हो जाती है. जब मन पर चिंतन करने लगता है, पर दर्शन करने लगता है, लोगों के अवगुणों को देखने लगता है, तब मन रूपी घोड़ा नकारात्मकता के रास्ते पर भागता है. जब हम लोगों के गलत कर्मों की चर्चा करते हैं, तब हमारी बहुत सारी शक्ति वेस्ट होती है, जिससे हम कमजोर हो जाते हैं, आत्मा की शक्ति घटती है. कमजोर होने से हमसे भी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आत्मा जितनी ज्यादा कमजोर होगी, उतनी ज्यादा गलतियां करेगी. हमें ये एहसास भी नहीं होता कि परचिंतन परदर्शन हमारे लिए कितना घातक है। ये हमें पल पल कमजोर कर रहा है। हम अपना कितना समय दूसरों के संस्कारों का, कर्मों का वर्णन करने में वेस्ट कर रहे हैं। दूसरों की गलतियां निकालते रहने से हम अपनी ऊर्जा को निगेटिविटी की ओर मोड़ देते हैं, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ निगेटिविटी के तरफ होगा, ऐसी आत्मा खुश कैसे रहेगी, शांत कैसे रहेगी। दिन भर लोगों के कर्मों का, संस्कारों का चिंतन करके हम सुखी नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते। मन तो गलत दिशा में भाग रहा है, उस रास्ते पर खुशी है ही नहीं तो मिलेगी कहां से। खुशी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए तो मन रूपी घोड़े को लगाम लगाकर सकारात्मकता के रास्ते पर मोड़ना होगा, क्योंकि इन्हीं राहों पर खुशियां, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता की प्राप्ति होती है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, हमें ये तो समझ आ गया कि नकारात्मक अंधेरों से घिरा हुआ रास्ता कौन सा है और रोशनी से भरा हुआ सकारात्मकता का रास्ता कौन सा है। जब हम परदर्शन पर चिंतन छोड़ स्वचिंतन परमात्म चिंतन करते हैं, तब मन रूपी घोड़ा सकारात्मकता के रास्ते पर दौड़ने लगता है। इसी रास्तों पर वो असीम सुख शांति का अनुभव करता है। जब तक मन दूसरों को देखते रहेगा तब तक कमजोर रहेगा, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा औरों के गलत कर्मों को देखने में खर्च हो रही है। लेकिन जब मन स्वयं को देखना शुरू करेगा, परमात्मा को देखना शुरू करेगा, तब उसमें शक्ति भरेगी। स्वचिंतन अर्थात आत्मा के सातों गुणों का चिंतन, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता। परमात्म चिंतन अर्थात परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, गुणों का चिंतन, परमात्मा के कर्तव्य का चिंतन, परमात्मा से हमारे संबंध का चिंतन। जैसे हम शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली आत्मा है, ऊर्जा है, उसी तरह आत्माओं के पिता परमात्मा भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो सभी में श्रेष्ठ है, परम है, इसीलिए हम उन्हें परम आत्मा कहकर बुलाते हैं। और वो सभी के पिता है, इसीलिए हम उन्हें परम पिता भी कहते हैं। जैसे हम आत्मा, प्रकाश पुंज, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का बिंदु है, उसी तरह हमारे पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का बिंदु, ज्योतिर्बिंदु है, इसीलिए तो हम उन्हें परम आत्मा कहते हैं। जब हम उस परमात्मा को निहारते हैं अपने मन बुद्धि की आंखों से, जो ज्ञान का सागर है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता का सागर है, उसके गुणों का चिंतन करते हैं, परमात्मा के कर्तव्य का चिंतन करते हैं। परमात्मा का कर्तव्य है सभी को विकारों से मुक्त करना, पतितों को पावन बनाना, सभी का कल्याण करना, हम सभी को दुखों से छुड़ाकर सुखों का रास्ता बताना, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, हमारी सद्गति करना, हमें पवित्र बनाने का कर्तव्य परमात्मा के अलावा कोई कर नहीं सकता। जन्मों जन्म काम वासना के दलदल में गोता खाकर आत्मा कमजोर हो गई है, ऐसे पतित आत्मा को पावन बनाने का कर्तव्य सिर्फ पतित पावन परमात्मा ही कर सकता है। कोई भी देहधारी मनुष्य पतित आत्माओं को पावन नहीं बना सकता। पतितों को पावन बनाने का सामर्थ्य केवल एक परमात्मा में ही है। जब मन स्वचिंतन परमात्म चिंतन करता है, तब मन रूपी घोड़ा सकारात्मकता की पटरी पर दौड़ता है। हम क्या दूसरों के अवगुणों का चिंतन वर्णन करें, अभी तो हमारे अंदर ही कितनी कमियां खामियां हैं। दूसरों को ही देखते रहेंगे तो अपने अंदर की कमियों को कब मिटाएंगे? पर दर्शन पर चिंतन तब तक नहीं छूट सकता जब तक आप दूसरों को क्षमा न कर दो। जब आप क्षमा करना सीख जाते हो तब आध्यात्मिकता की पहली स्टेज पर चढ़ते हो। क्षमा भी हम तभी कर पाएंगे जब हमें कर्मों का ज्ञान होगा। बिना किसी हिसाब किताब के हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। हमने ही हिसाब किताब बनाए ना, हमें ही चुकता करने हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। क्षमा किया तो सुख मिलेगा, नफरत की तो दुख मिलेगा। दुख चाहिए तो नफरत करो, सुख चाहिए तो माफ करो। जब हमें विश्व ड्रामा का ज्ञान मिलता है तब क्षमा करना आसान होता है। हर परिस्थिति में कल्याण समाया है, हर परिस्थिति कर्म और भाग्य रूपी फल के अनुसार ही हमारे जीवन में आती है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ RJ शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, हमारा मन कौन से रास्ते पर है ये हमें हमारी भावनाओं के जरिए पता चलता है। नकारात्मकता के रास्ते पर होगा तो मन में नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, काम, मोह, अहंकार की भावनाएं उठेगी, और सकारात्मकता की राह पर होगा तो मन में क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, सुख, शांति, आनंद, सद्भावना, शुभ भावनाएं उठेगी। रास्तों का पता तो चल गया, लेकिन जो मन कई जन्मों से निगेटिविटी के रास्तों पर दौड़ रहा है उसे लगाम लगाएं कैसे, यह प्रश्न है। उसे निगेटिव सोचने से रोके कैसे, सकारात्मकता की तरफ मोड़े कैसे। मन का लगाम है क्या? परमात्मा कहते हैं मन का लगाम है श्रीमत। श्रीमत यानी जो मत परमात्मा द्वारा प्राप्त होती है वही मन का लगाम है। श्रीमत मिलेगी ज्ञान को रोज स्टडी करने से, ज्ञान से ही परमात्मा मन हमें प्राप्त होती है। ज्ञान अर्थात कथाएं, कहानियां सुनना सुनाना नहीं है, ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, विश्व ड्रामा का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, परमात्मा द्वारा प्राप्त सच्चा गीता ज्ञान। इसके अभ्यास से ही हमें परमात्मा श्रीमत पता चलती है, और यही है मन रूपी घोड़े का लगाम। परमात्मा कहते हैं जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, और जो होगा वो भी सही होगा कर्मों के हिसाब किताब अनुसार। परमात्मा कहते हैं हम परिस्थिति में कल्याण समाया हुआ है। अभी हमें अगर कल्याण नजर भी नहीं आ रहा तो भी अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण समाया है। हर परिस्थिति में कल्याण है। अगर आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो तो आपको वो मिलेगा जो आपके लिए सही होगा, जिसमें आपका कल्याण समाया होगा। मन का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो परमात्मा के मन का होगा और उसमें आपका कल्याण ही होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। पायलट बनने के लिए उन्होंने अपने बहन के कंगन बेच दिए, लेकिन पायलट के इंटरव्यू में वे फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए। उनके मन में ख्याल आया कि अब वापस कैसे जाऊं, बहन के कंगन बेचकर यहां तक आया लेकिन रिजेक्ट हो गया। उनके मन में आत्महत्या का भी ख्याल आया, लेकिन उसी समय स्वामी शिवानंद ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा अपनी असफलताओं पर विलाप करना बंद करो, यह स्वीकार करो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर और बड़ा सोच रखा है। अपनी नियति को खोजो और आगे बढ़ो, नियति पूर्व निर्धारित है। इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने कलाम साहब की दिशा बदल दी। उन्होंने अपनी हताशा को त्याग दिया। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से जुड़ गए। इसके बाद वे भारत के महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन बने। हमारा भविष्य पूर्व निर्धारित यानी पहले से ही तय है। इसे हमने ही तय किया है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से, फिर चिंता किस बात की। परमात्मा ने इस विश्व ड्रामा को कल्याणकारी भव का वरदान दिया है। जो होगा कल्याण ही होगा। दुख भी आया तो यही सोचना है पूर्व जन्मों से चले आ रहे हिसाब किताब चुक्त हो रहे हैं, बोझ खत्म हो रहे हैं, फिर दुखी क्यों होना। बोझ उतर रहा है तो अच्छी बात है, भगवान साथ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों

0: ऑयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश खुश
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आध्यात्मिकता के राहों पर जब हमें परमात्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तब मन में विचार सागर मंथन चलता है। कई जन्मों के आसुरी संस्कारों को और ज्ञान से जन्मे दैवी संस्कारों के बीच मंथन चलता है। कभी आसुरी संस्कारों, विकारी संस्कारों के तरफ मन का खिंचाव होता है तो कभी दैवी संस्कार जो ज्ञान से जागृत हुए हैं उनकी ओर मन का खिंचाव होता है। और इस तरह मन के समंदर में आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच विचार सागर मंथन होता है। जब मन आसुरी विकारी संस्कारों की ओर मुड़ता है तब इस विचार सागर मंथन से जहर निकलता है। ऐसा जहर जिसे नष्ट करने की ताकत सिवाय परमात्मा शिव के अलावा किसी में नहीं है। परमात्मा शिव कहते हैं, बच्चे जब जब मन में ये आसुरी भावनाओं का जहर निकलेगा तब तब ये भावनाएं, ये जहर मुझे अर्पण कर दो, मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। इसीलिए हम परमात्मा शिव पर धोतरे का फूल भी चढ़ाते हैं। धोतरे का फूल हमारे अंदर उठने वाले नकारात्मक भावनाओं के जहर का प्रतीक है जो शिव के अलावा कोई और स्वीकार कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो हम शिव को भोलानाथ कहते हैं जो हमारे अंदर के कमी कमजोरियों को स्वीकार कर हमें जहर से मुक्त करता है। जब मन दैवी संस्कारों के ओर मुड़ता है तब विचार सागर मंथन से अमृत निकलता है। जब इस विचार सागर मंथन से अमृत निकलता है तब मेरा भोलानाथ शिव ये अमृत हमें पिलाकर हमारे अंदर के देवत्व को जगाते हैं। कितना भोला है मेरा परमात्मा, हमारे अंदर के जहर को स्वयं स्वीकार करता है और अमृत हमें पिलाता है। ज्ञान के विचार सागर मंथन से अनेक रत्न निकलते हैं। ये ज्ञान के रत्न हैं जिसे धारण करने से हम पद्मा पदम भाग्यवान बनते हैं। इस सागर मंथन से कामधेनु गाय निकलती है, अर्थात हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होकर हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, अर्थात अब कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती, इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस विचार सागर मंथन से उच्चे श्रवा घोड़ा अर्थात सात मुख वाला सफेद रंग का जादुई घोड़ा प्राप्त होता है। इसका वास्तविक अर्थ है इस मंथन से हम आत्मा के अंदर के सात गुण ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, आनंद, पवित्रता को जागृत करते हैं। विचार सागर मंथन से हमें ऐरावत हाथी भी प्राप्त होता है, अर्थात सतयुगी स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त होता है। इस मंथन से कौस्तुभ मणि भी प्राप्त होता है, अर्थात कोस्ट

मने माना एक अत्यंत बेशकीमती और चमकीला रत्न जिसे विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। इसका वास्तविक अर्थ है, जब ज्ञान चिंतन से हमारी आत्मा एक बेदाग मणि बन जाती है, तब हम विष्णु के गले की माला बनते हैं, अर्थात सतयुग में विष्णुपुरी में जन्म लेते हैं। सागर मंथन से कल्प वृक्ष की भी प्राप्ति होती है, अर्थात सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले हम कल्प वृक्ष समान बन जाते हैं। सागर मंथन से अप्सरा निकली ऐसा दिखाया गया है। इसी का अर्थ है, जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, तब हम स्वर्ग की परियों के समान बन जाते हैं। सागर मंथन से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है, ज्ञान विचार सागर मंथन से हमें सौभाग्य धन की प्राप्ति होती है। जिसके पास ज्ञान रत्न होंगे, उसके पास स्थूल धन आपे ही आ जाएगा। सागर मंथन से चंद्रमा निकला, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसका अर्थ है, जब हम ज्ञान से चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएंगे, तब हम परमात्मा के मस्तक में मस्तक मणि की तरह चमकेंगे। सागर मंथन से पारिजात वृक्ष निकला है, अर्थात बहुत ही सुगंधित और कभी न मुरझाने वाला दिव्य फूल। इसका वास्तविक अर्थ है, जब हम रोज ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, तब हमारे अंदर दिव्य गुणों के फूल मुस्काएंगे और हम कभी भी परिस्थितियों से मुरझाएंगे नहीं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि रोज हम ज्ञान सुने, उसका मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें। सागर मंथन से पांचजन्य शंख निकला, अर्थात विष्णु का दिव्य और पवित्र शंख, जो युद्ध और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसका वास्तविक अर्थ है, ज्ञान के मंथन से हमें जीवन के हर युद्ध में, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होती है। जब जब हम ज्ञान को याद करेंगे, ज्ञान का शंख बजाएंगे, अर्थात जीवन के परिस्थितियों में ज्ञान को यूज करेंगे, तब तब हमारी विजय होगी। सागर मंथन से धन्वंतरी वैद्य की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है, ज्ञान के मंथन से मन नकारात्मक विचार भावनाओं से मुक्त होने के कारण हमें शारीरिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। सागर मंथन से अमृत निकलता है, अर्थात ज्ञान मंथन से हमें सतयुगी अमरलोक के वासी बनने का अमृतत्व का वरदान मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सतयुग में किसी की मृत्यु नहीं होगी। नहीं, मृत्यु तो होगी, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होगी। दीर्घायुष्य मिलेगा, मृत्यु का दुख नहीं होगा, अल्पायु नहीं होगी। स्व के प्रति और परमात्मा के प्रति विचार सागर मंथन करने से खुशी शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान मंथन से मन शीतल हो जाता है, मन का दिव्य परिवर्तन होता है। मन में उठने वाले व्यर्थ विचारों को सकारात्मक और श्रेष्ठ विचारों में बदलना ही असली मंथन है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: तेरह अप्रैल 1919, अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा कर रहे हजारों निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों की सेना ने बेशुमार गोलियां बरसाई थीं। इस हत्याकांड का खलनायक था पंजाब का तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर। रिटायर होकर इंग्लैंड पहुंचने पर नरमेद रचने वाले इस व्यक्ति का नागरिक अभिनंदन किया गया। अंग्रेजों को लगा था कि हिंदुस्तान सब कुछ भूल जाएगा, मगर ये उनकी भूल थी। इस हत्या का बदला लेने का संकल्प एक ऐसे बालक ने किया जो हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी था। उस समय उसकी उम्र केवल 12 साल की थी। उस बालक का नाम था ऊधम सिंह। बड़े होने पर बदला लेने के विचार से ऊधम सिंह इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड जा पहुंचे। ये बात 13 मार्च 1940 की है। सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के तत्वावधान में अफगानिस्तान विषय पर एक भाषण का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम खत्म हुआ, भीड़ को चीरता हुआ एक भारतीय नौजवान उस जगह जा पहुंचा जहां हजारों लोगों के रक्त से रंजित हत्यारा माइकल ओडायर बैठा था। ये नौजवान कोई और नहीं ऊधम सिंह थे। ऊधम सिंह ने अपने पिस्तौल से दनादन 5 गोलियां छोड़ी और माइकल ओडायर को ढेर कर दिया। अंग्रेजों ने न्याय का नाटक रचा और आशा के अनुरूप ऊधम सिंह को मृत्यु दंड सुना दिया गया। ऊधम सिंह ने ये दिखा दिया था कि राष्ट्र के अपमान का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी अपने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार सकते थे।
2: मेरा बस चले ना तो वहीं जाके उनकी पूरी फैक्ट्री में आग लगा दूंगा।
3: हाँ, आग तो तू लगा देगा मगर तेरा बस ही नहीं चलता।
2: अरे यार, यहाँ हजारों की चपत लग गई है और तुमको मजाक सूझ रहा है।
4: यार तू बात ही ऐसी कर रहा है, अब वहाँ जाके आग लगा देगा। भाई प्रैक्टिकल होकर सोचना कि 7,000 की घड़ी के लिए तू फॉरेन जाएगा 20,000 खर्चा करके और वहाँ नई घड़ी क्लेम करेगा और उन्होंने घड़ी नहीं दी तो आग लगा देगा।
5: हाँ भाई, पैसा कोई मायने नहीं रखता, ये तो हक की लड़ाई है। कर बेटा कर, तू पहला आदमी होगा जो देश में हुए अपराध की विदेश में सजा देगा, वो भी बिना मुकदमा। बिना अदालत, फुल एंड फाइनल।
6: सही बात है।
7: क्या बात है भाई, आज तो तुम लोग मुकदमेबाजी कर रहे हो, वो भी विदेश में। क्या हुआ भाई, जरा मैं भी तो सुनूं।
4: अरे कुछ नहीं काका, इसने एक विदेशी घड़ी खरीदी, महंगी वाली, सस्ते में, मगर उसका यहाँ कोई सर्विस स्टेशन ही नहीं। अब वो घड़ी खराब हो गई तो दुकानदार कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई मैंने तो पहले कहा था कि यहाँ कोई सर्विस नहीं दे पाऊंगा।
7: अरे ये तो गलत बात हुई, देखभाल के खरीदना चाहिए कुछ भी।
2: अरे काका, वैसे तो 3-4 लोगों ने और खरीदी है मेरे परिचितों में, मगर मेरी ही घड़ी खराब होनी थी।
7: अब ये तो मशीन है बेटा, उसका क्या भरोसा, जब तक चले तो चले, ना चले तो परेशानी। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस घड़ी का कहीं भी कोई सर्विस स्टेशन नहीं है?
5: हाँ काका है तो, मगर विदेश में। हमने नेट से पता किया मगर 7,000 की घड़ी के लिए 20,000 का किराया लगाना पड़ेगा।
7: ये तो दिक्कत वाली बात है। और वो मुकदमा या ऐसा कुछ क्या कह रहे थे तुम लोग?
4: ये कह रहा है कि यदि घड़ी नहीं बदली तो वहां जाके विदेश में उसकी दुकान में आग लगा देगा।
5: तो मैंने कहा कि तू पहला आदमी होगा जो देश में हुए अपराध की सजा विदेश में देगा।
3: काका, गजनी है काका, आप कहां घूम गए?
7: अरे कुछ नहीं, जब तुमने कहा ना कि देश में हुए अपराध की विदेश में सजा, तो मुझे एक का एक याद आया, उधम सिंह। वो इस माटी का एक ऐसा शेर था कि जिसने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लंदन में जाके लिया था।
4: तो काका, आज उधम सिंह के बारे में ही हो जाए।
7: अच्छा, मैं जरा कुछ काम निपटा के अभी आता हूँ, तब तक तुम लोग चाय वाय पियो।
5: ठीक है काका।
6: यार, ये गजबीय काका की याददाश्त बहुत बढ़िया है, उनको ऐसी सैकड़ों बातें जबानी आ गई।
3: हाँ यार, अब शहीद उधम सिंह के बारे में मैंने पहले भी सुना है, मगर इस घटना से मैं उसको जोड़ नहीं पाया।
5: अब यार सुना तो समझे।
4: हाँ यार, यही तो काका की खासियत है कि किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को ऐसे एंगल से देखते हैं और ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाला इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकता।
7: अरे, किससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकते भाई।
2: है काका कोई जो आजकल हमारा हीरो है? क्यों भाइयों?
7: अरे कौन है वो, मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या है उसमें?
4: उसमें उसमें बहुत सी खूबियां हैं, और तो और आजकल हम सब अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं उन्हीं की वजह से। क्यों भाइयों?
7: अरे वाह, ऐसी बात है तो मैं भी तो उस महापुरुष के दर्शन करना चाहता हूँ। कहाँ रहते हैं वो, इसी शहर में या कहीं और, बताओ? अरे मुझे उससे कब मिलवाओगे?
5: अभी मिलवा दें। क्यों भाइयों?
4: काका, वो अभी यहाँ प्रकट हो जाएंगे, हम जैसे ही उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे वो प्रकट हो जाएंगे, मगर एक शर्त है।
7: वो क्या?
3: जब तक हम ना कहें आप आंखें नहीं खोलेंगे। चलिए आंखें बंद कीजिए।
7: अच्छा तो लो, कर ली।
8: हे हमारे पथ प्रदर्शक, मार्ग दीपक, हम आपके पवित्र चरणों में नजदानु होकर आपको प्रणाम करते हैं।
7: अरे अरे अरे, अरे ये क्या कर रहे हो? ओहो, मेरे पांव क्यों पकड़े हैं तुमने? अरे अरे, नहीं नहीं बेटा, उठ जाओ बेटा, उठो उठो।
4: काका, हमने कहा था ना, हमारे प्रणाम करते ही वो प्रकट हो जाएंगे। अरे, आप ही तो हैं वो।
7: अरे नहीं बेटा, मैं कहां इस लायक हूं, मैं तो बस।
6: क्या हुआ, हमसे कुछ गलती हुई क्या? यदि हुई हो तो हमको माफ कर दीजिए।
7: नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही तुम लोग भी ना एकदम
3: गधे हैं, है ना?
7: अरे नहीं, तुम लोग तो शेर हो, शेर जैसा शेर था उधम सिंह।
4: वाह काका, क्या कड़ी पकड़ते हैं आप भी, अब शेर से वापस उधम सिंह की कहानी को जोड़ दिया।
7: अब तुम कहते हो तो नहीं सुना था।
4: अरे नहीं नहीं काका, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी इसी बात की।
7: तारीफ कर रहे हो तो ठीक है।
6: तो काका शुरू कीजिए।
7: हाँ, वही तो सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। बात है लंदन के एक न्यायालय ओल्ड वैली क्रिमिनल कोर्ट की।

0: भाई मैं तो उस शेरदिल को देखना चाहता हूँ जिसने दिन दहाड़े इंग्लैंड में ही एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी।
1: हाँ सुना है भारत में हुए किसी केस का बदला लिया है।
2: आज सुना तो मैंने भी यही है, मगर उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्या बात है, वो सिर्फ बदला लेने के लिए ही हिंदुस्तान से यहाँ आया, ये जानते हुए कि यदि पकड़ा गया तो मौत निश्चित।
0: हाँ यही बात तो इस आदमी को खास बनाती है। और मैंने तो सुना है कि जिस केस का इसने बदला लिया है ना, वो घटना तो बरसों पुरानी है।
1: अब क्या कहें, मगर इसने जो किया है वो सचमुच में बहुत दिलेरी का काम है।
3: देखो देखो,
4: बाप रे, ये तो पूरा पहाड़ लगता है, काजल का पहाड़।
0: हिंदुस्तान के शेर के बारे में बहुत सुना था, मगर अब इसको देखकर उस शेर को देखने की इच्छा ही मर गई। वाह क्या शानदार व्यक्तित्व है।
1: ये तुमको कहीं से हत्यारा लगता है?
2: देखो तो, उसको पता है कि उसकी मौत कितने करीब, पास एक कदम का फासला है, मगर उसकी चाल ढाल से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी जश्न में शामिल होने आया है। इतना खुश रोबीला लग रहा है दूल्हे जैसा।
5: ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर रूढ़म सिंह, तुम्हें कुछ कहना है?
6: जी हाँ जज साहब, मैं चाहता हूं कि मुझे उधम सिंह नहीं राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से पुकारा जाए।
5: व्हाट, किस नाम से पुकारा जाए?
6: ओह सॉरी सॉरी जज साहब, मैं चाहता हूं कि मुझे राम मोहम्मद सिंह डिसूजा के नाम से पुकारा जाए।
5: ऐसा कैसे हो सकता है, पेपर्स में तुम्हारा नाम उधम सिंह के नाम से दर्ज है, और फिर सरकारी वकील साहब ने भी तुम्हारा नाम उधम सिंह बताया है।
6: जब सरकारी वकील साहब का कहा ही मानना है तो फिर किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत कहाँ रह जाती है जज साहब।
5: एक बात बताओ, तुम सिख हो या मुसलमान?
6: हिंदुस्तानी, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ।
5: और ये तुम्हारा नाम जो इतना लंबा है, इसका क्या मतलब है, क्या रहस्य है इसमें?
6: मतलब मतलब और रहस्य तो बस इतना है कि हिंदू का राम, मुसलमान का मोहम्मद, सिख का सिंह और ईसाई का डिसूजा मेरे नाम में सम्मिलित है। मेरा नाम प्रतीक है हिंदुस्तान की एकता का, इसीलिए मैंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह डिसूजा रख लिया है।
5: अच्छा अच्छा, तो ये नाम तुमने खुद रखा है। वैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम क्या रखा था?
6: ऑनरेबल जज साहब, वही जो सरकारी वकील साहब ने आपको बताया।
5: ओके, तो ये अदालत तुमको उधम सिंह के नाम से ही पुकारेगी।
6: जैसी आपकी मर्जी जज साहब।
5: मिस्टर उधम सिंह, अपनी सफाई में तुम कुछ कहना चाहते हो?
6: हाँ कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ ये कि माइकल और डायर को मैंने मारा है, और आप ये न्याय का नाटक ज्यादा लंबा ना चलाएं, बल्कि जल्दी से मेरे गले में फांसी का हार डाला जाए। That's it.
7: एवमस्तु, यह ऐसा ही कुछ लिखकर जज ने अपना काम काज पूरा कर दिया। वैसे भी करने कराने को बाकी ही क्या था। और 12 जून 1940 को इंग्लैंड की भूमि पर भारत का सपूत शहीद हो गया। हंसते हंसते उसने फांसी का फंदा चूम कर भारत के सम्मान को बहुत ऊंचा उठा दिया।
8: काका ये तो अधूरी बात हुई, पूरी बात बताइए ना।
9: हाँ काका, उधम सिंह की पूरी जीवनी बताइए कि वो कैसे क्रांतिकारी बने, उन्होंने क्या क्या किया, और भी बहुत सारी बातें।
7: बेटा ये सब शुरू हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में। वहां एक सभा हो रही थी जिसमें भाग ले रहे थे हजारों लोग, जिनमें आदमी, औरतें, नौजवान, बच्चे सभी थे।
3: साथियों, हमारी आज की ये मीटिंग अंग्रेजी सरकार की कोई खिलाफत नहीं है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। हम अंग्रेजी सरकार को ये बता देना चाहते हैं।
7: और तभी जनरल डायर अपनी सेना के साथ आतंक और निहत्ते लोगों को बरसाने लगा गोलियां। फायर!

बूंदों की आवाज, लोगों की भगदड़, चीख पुकार, शोर गुल। इस तरह लोग चीखते रहे, इधर उधर भागते रहे और जालिमों की गोलियां उनको निशाना बनाती। सरकारी कागज के मुताबिक सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन हकीकत में बिछी थी वहां 1000 से ज्यादा लाशें।

0: जितने लोग वहां मारे गए उससे दुगने से कहीं ज्यादा खून से लथपथ वहीं पड़े रहे। रात भर अंग्रेजी हुकूमत ने तड़पता छोड़ दिया उन्हें, और बूंद बूंद पानी तक को तरसते रहे बेचारे।
1: उन्हें पानी तक नहीं दिया किसी ने?
0: कौन देता बेटा, जालिमों ने उनके अपनों को मिलने तक नहीं दिया उनसे।
2: दया तक नहीं आई जालिमों को।
0: तुम दया की बात कर रहे हो बेटा? अरे अंग्रेज हुकूमत तो जश्न मना रही थी, जश्न जश्न हजारों घरों के चिराग बुझाने का, किसी बूढ़ी मां से उसका बेटा छीनने का, किसी बहन से भाई तो किसी का सिंदूर उजाड़ने का। अंग्रेजों को लगा कि उनके इस वहशियत के बाद हिंदुस्तानियों के दिलों में अब आजादी का ख्याल तक नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ 12 साल के उधम ने अपनी आंखों से देखा था वो खौफनाक मंजर, हिंदुस्तानियों की पीठ पे लगा वो खंजर, जिसने उसे मजबूर किया बागी बनने को।
1: लेकिन काका, 12 साल का लड़का तो कुछ ना कर सका होगा।
0: बेटा, उम्र जरूर कम थी उसकी, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। ये सच है कि उस वक्त तो कुछ न कर सका, लेकिन दिल ही दिल में जलती रही बदले की चिंगारी। बल्कि वक्त बेवक्त अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता ने उसके जख्मों पर नमक ही छिड़का, और वक्त के साथ साथ दिल में दबी बदले की वो चिंगारी शोला बन गई। वो शोला जिसकी तपिश अब जवान उधम सिंह को खुद जलाने लगी थी।
3: लेकिन काका, उधम सिंह के बड़े होते होते तो दोनों ऑफिसर देश या दुनिया से जा चुके होंगे।
0: ये सच है कि माइकल ओडायर वापस इंग्लैंड जा चुका था, और जलियांवाला बाग कांड करवाने के लिए उसे अंग्रेजों ने इनामों से नवाजा और 20,000 पौंड भी दिए। इन सारी बातों की खबर थी उधम सिंह को, वो तो बेताब था उससे बदला लेने को, और अब तो वो वक्त भी आ गया था जिसका उसे इंतजार था। जवान उधम सिंह की कदकाठी थी भी ऐसी कि लोग उसे देखे बिना न रहते। भरा पूरा शरीर, अच्छा कद,
1: वो सब तो ठीक है काका, पर उधम सिंह ने बदला लिया तो कैसे? अब वो तो थे हिंदुस्तान में, और माइकल और डायर बैठा था 7 समुंदर पार इंग्लैंड में।
0: अरे बेटा, जब आज इंसान चांद तक पहुंच गया है तो इंग्लैंड कहां दूर था, वो भी उधम सिंह के लिए। इंजीनियरिंग करने के बहाने जा पहुंचा वो इंग्लैंड, और वहां जाकर पल पल की खबर रखता था वो माइकल ओडायर की।
1: फिर क्या हुआ काका?
0: फिर क्या, एक दिन वो वक्त आ ही गया जब उधम सिंह की आंखों में बचपन से देखा सपना सच होने की कगार पर था। 13 मार्च 1940 को अंग्रेज अफसर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के एक कार्यक्रम में घर से ये कहकर निकला।
4: Yeah. I'm going for an important meeting there. I'll be back till tea time. Right? Okay, bye.
0: माइकल ओडायर उस सभा में पहुंचा जहां सभापति लॉर्ड जेट लिंग थे। सभा में अफगानिस्तान पर भाषण हो रहे थे।
5: Thank you.
0: और जैसे ही सभा के खत्म होने का समय हुआ, भीड़ को चीरता हुआ उधम सिंह वहां पहुंचा। और उसने आगे आकर उधम सिंह उस भगदड़ में भाग नहीं पाया और वो पकड़ा गया। लेकिन वो सपना, वो ख्वाब पूरा हो चुका था जो उसकी आंखों में बचपन से पल रहा था। पकड़े जाने का भी कोई अफसोस नहीं था उसे। डर के अंधेरे से नहीं, जीत के उजाले से चमक रही थी उसकी आंखें।
1: फिर क्या हुआ काका?
0: होना क्या था, फिर वही न्याय का नाटक। मुकदमा चला उधम के खिलाफ लंदन की ओल्ड वैली क्रिमिनल कोर्ट में।
5: मुझे यही कहना है कि माइकल ओडायर को मैंने मारा है, और न्याय का लंबा नाटक ना चलाकर जल्दी फांसी का हार मेरे गले में डाल दिया जाए।
6: लेकिन तुमने माइकल ओडायर को क्यों मारा?
5: क्योंकि वो इसी लायक था। माइकल ओडायर मृत्यु दंड का ही अधिकारी था। ना मुझे कोई चिंता है और ना मौत का डर। अरे बुढ़ापे तक जिंदा रहने से फायदा ही क्या? देश के लिए यदि कोई जवानी में ही मरता है तो ये तो अच्छी बात है। मैं भी यही कर रहा हूं अपनी मातृभूमि के लिए। मैं अपने जीवन की भेंट दे रहा हूं।
0: फिर क्या हुआ काका?
7: फिर क्या, वही हुआ जो वो चाहता था। 12 जून 1940 को उसने फांसी का फंदा चूमा और अमर हो गया।
8: वाकई काका, अशफाकुल्ला, उधम सिंह, बिस्मिल और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान देकर हमें एक कीमती आजादी दी है।
9: चाचा, ये लोग तो महान थे ही, पर आप भी कम नहीं।
0: अरे भाई मैं क्यों?
3: और क्या काका, आप हमें इतनी अच्छी जानकारियां जो देते हैं, आखिर आपके पास इतनी जानकारी कहां से आई?
0: अरे तुम लोगों के पास तो कॉलेज की लाइब्रेरी है, और मेरे पास तजुर्बा है बेटा। देखा है मैंने वो वक्त, सुना है अपने बुजुर्गों से, वो गुलामी की तपती धूप भी भोगी है और आजादी की ठंडी छांव भी। शायद इसीलिए एहसास है मुझे अपनी आजादी की कीमत का।
8: अब तो हमें भी एहसास हो गया है, और हम भी वक्त पड़ने पर देश के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे।
9: बस आप वादा कीजिए कि आप हमें हर बार यूं ही किसी दिलेर देशभक्त के बारे में बताएंगे।
0: हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन आज का कोटा खत्म। अब अगली बार आना तब बताऊंगा किसी सपूत के बारे में। जय हिंद।
10: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आज मैं कुछ पढ़ के पहले सुनाना चाहता हूँ।
2: जरूर।
1: लेट योर पास्ट मेक यू इनटू अ बेटर पर्सन, नॉट अ बिटर पर्सन।
2: सो ट्रू।
1: और उसके नीचे एक लाइन ऐड करते हैं, ये तो बहुत बार सुना है लेकिन नीचे की लाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन लेटिंग गो यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम पेन। यू फ्रीइंग योर ओन सेल्फ फ्रॉम पेन बाय लेटिंग गो। एक और पढ़ लो। द मोर एंगर टूवर्ड्स द पास्ट यू कैरी इन योर हार्ट, द मोर एंगर टूवर्ड्स द पास्ट यू कैरी इन योर हार्ट, द लेस केपेबल यू आर ऑफ लविंग इन द प्रेजेंट।
2: मंत्र फॉर लाइफ।
1: मंत्र फॉर लाइफ,
2: इजंट इट?
1: सही बात है। आप हमेशा बोलते हैं आज का मंत्र, आज का, ये तो लाइफ का है।
2: एक्चुअली इफ यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर पास्ट मेक्स अस अ बिटर पर्सन टुडे
1: एंड ऑल्सो वी आर इन पेन।
2: या बिकॉज इन वी आर इन पेन दैट्स व्हाई इट मेक्स अस अ बिटर पर्सन। जितने हम दर्द में हैं उतनी हमारी एनर्जी दर्द वाली कड़वी होती जा रही है ना, क्योंकि पास्ट में अगर मेरे साथ कुछ अनुभव वैसे नहीं हुए और उसको मैंने लेट गो नहीं किया तो आई एम बिकमिंग अ बिटर पर्सन। अब जैसे आपने पिछली बार कहा, लेकिन अगर उन्होंने अगली बार भी ऐसा किया तो, लेकिन वो अगर नहीं सुधरे तो, लेकिन उनके मैनर्स अच्छे नहीं है, इट्स अ फैक्ट, इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने वो गुस्सा पकड़ के रखा
1: तो
2: अगली बार तक वो तो बदले नहीं लेकिन मैं बदल गया,
1: मैं तो बिटर हो गया।
2: इट सेज ना, इफ यू होल्ड द एंगर अबाउट द पास्ट
1: सो नाउ आई बिकम बिटर, ऑल्सो आई एम इन पेन
2: एंड लेसर लविंग ना।
1: ओह यस,
2: दैट वॉज द लाइन ना, कि अगर आप पुरानी बात के गुस्से को, की नाराजगी को पकड़ के रखते हैं तो आपके प्यार की जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो रही है। तो वो बदले नहीं बदले वी डोंट नो, बट हम तो बदल गए। बट इसीलिए टुडे वी सी ना, पहले आई वॉज मोर अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, टुडे आई डाउट पीपल। आई वॉज मोर अ लविंग पर्सन, टुडे आई एम अ बिटर पर्सन। क्यों? क्योंकि पास्ट को अभी तक छोड़ा नहीं है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ा, इतनी बार सुना, सोचा, आज कर देते हैं उसको। करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सोच सोच के, क्योंकि अंदर मन में एक रनिंग कमेंट्री की तरह चलता रहता है, द माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अवेयर होना कि अंदर कौन सी क्वालिटी चल रही है, क्योंकि मेजोरिटी टाइम्स इफ यू सी कि जो मन में चल रहा है वो पास्ट की बातें हैं, जो बीत गया, बीत गया चाहे कई साल पहले या कुछ क्षण पहले, वो ही मन में चल रहा है। तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि मेजोरिटी समय जो हमारे थॉट्स हैं वो पास्ट के बारे में चल रहे हैं, दूसरी बात हमें ये समझ में आ जाती है कि हमारे थॉट्स से ही हमारा फ्यूचर क्रिएट होने वाला है,
1: क्योंकि कार्मिक अकाउंट एंड प्लस
2: मेरा नेक्स्ट रिस्पॉन्स भी तो मेरी अभी की थॉट के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा ना। तो जो मेरा पास्ट है वो मेरी थॉट्स में चल रहा है और जैसी मेरी थॉट्स हैं वैसे मेरा फ्यूचर बनने वाला है,
1: मैनिफेस्ट होगी ना थॉट,
2: मैनिफेस्ट होगी थॉट, विच मीन्स मेरा पास्ट ही हर बार मेरा फ्यूचर बन रहा है। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि पास्ट की बात को डिलीट करना होगा आज, नहीं तो कई बार हमारा पूरे जीवन की क्वालिटी ही वही बीत जाएगी।
1: फिर हम क्यों नहीं समझते कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है?
2: ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है। एंड ये लाइन इतनी पावरफुल है कि पुरानी बात की नाराजगी पकड़ी रखी, आई बिकम अ लेसर लविंग पर्सन। सपोज मेरे अंदर ये पावर थी, ये क्वालिटी थी प्यार देने की, प्यार करने की, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने की, पर किसी ने मेरे साथ ऐसे किया, कुछ गलत बात की, कुछ गलत व्यवहार किया, आई गॉट हर्ट। इस हर्ट को पकड़ के रखा, मेरी सोच उनके बारे में बदल गई, नेक्स्ट टाइम आपने कहा मेरा व्यवहार भी बदल जाएगा, तो आई बिकेम अ लेसर लविंग पर्सन ना। तो वो नहीं बदले, हम बदल गए एंड बदल गए उस डायरेक्शन में विच इज नॉट राइट फॉर अस। तो थोड़ी सी अगर मेहनत करें आज अपने साथ, ये सिर्फ बोलने से ही नहीं हो जाएगा, हाँ लेट गो चलो खत्म हुआ, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
1: लेसर लविंग के साथ साथ आई टू बिकम अ पर्सन हु स्टार्ट्स स्लाइटली डिसलाइकिंग द अदर पर्सन। लविंग तो छोड़ दो, yeah. मैं तो और जीरो के भी नीचे आ गया।
2: Right. वही लेसर लविंग है ना एक्चुअली।
1: तो बड़े सॉफ्टली बोल दिया प्यार से इसने। तो मैं तो डिसलाइक में आया, स्टार्ट नॉट लाइकिंग दैट पर्सन। नॉट लाइकिंग इज कितना बुरी बात है, नॉट लविंग इज स्टिल ओके। तो जीरो से नीचे आ गया, बॉर्डर से भी नीचे चले गया।
2: मुझे अब वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, लेकिन उसमें
1: और थॉट्स भी उसके साथ साथ चलती है, ये थॉट है और ये मुझे पसंद नहीं आदमी।
2: ओवरऑल आपकी एनर्जी फील्ड भी तो लेसर लविंग होती जाएगी।
1: आपका ऑरा भी गया।
2: और किस लिए? क्योंकि किसी ने ठीक से बात नहीं की थी, किसी ने उल्टा जवाब दे दिया,
1: और गलती उनकी,
2: बात तो उनकी थी, नुकसान हमने अपना कर लिया क्योंकि हमने उस पास्ट के एक्सपीरियंस को लेट को नहीं किया। ये एक शक्ति है जिसको हमें सारा दिन यूज करना, और ये पावर हम सबके पास है। कांस्टेंट वो कमेंट्री जब चलती जाएगी, हमें हर बार स्टॉप करके उसको फुल स्टॉप बोल के उस सोच को बंद करना ही होगा, इवन अगर वो एक फोर्सफुल स्टॉपिंग है।
1: फोर्सफुल स्टॉपिंग को थोड़ा सा आप समझाएंगे?
2: फोर्सफुल स्टॉपिंग मीन्स अगर मेरे अंदर वो कमेंट्री बार बार चल रही है, मैं बार बार मन को अगर सिर्फ कहूँ स्टॉप स्टॉप, बस हो गई बात, स्टॉप, इवन इफ आई हैव टू से इट 1000
1: टाइम्स। ग्रैंडचिल्ड्रन को बोलता हूँ स्टॉप इज नॉट अ टॉय।
2: डू यू गिव अप ऑन दैट?
1: नो, जब वो मेरे आईपैड से खेलते हैं तो मैं बोलता हूँ स्टॉप नॉट अ टॉय,
2: फिर करते
1: फिर नजदीक जाते हैं, नॉट अ टॉय नॉट अ टॉय, दिस इज नो, दिस इज नानाज, दिस इज दादाज, दिस इज लैपटॉप, दिस इज नॉट अ टॉय,
2: बोल
1: हजारों बार
2: एंड फाइनली सीख जाएंगे।
1: तो फिर दिस इज नॉट अ टॉय नाना, दिस इज नॉट अ टॉय दादा, नो दिस इज नॉट अ टॉय, वही आपके टॉय भरे पड़े उसमें से खेलो
2: बस।
1: अच्छा, फिर हट जाते।
2: मन एक बच्चा है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप प्लेइंग विद माई सेल्फ, नहीं कष्ट देना मैंने अपने आप को इतना, नहीं सोचना मैंने बार बार इतना, हो गई बात, खत्म हुई, पूरी हुई।
1: कितना बेटर है देन फीलिंग गिल्टी कि बार बार ना मैं इसका सोचता हूँ, बार बार ना मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल आते, लोग ऐसे बोलते हैं, बार बार ना मेरे मन में बुरे बुरे पुरानी वही हर्ट आती रहती, अरे उससे अच्छा तो ये स्टॉप,
2: ये सोचना भी तो मेरी पावर को भी डिप्लीट होगा।
1: तो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये कितना बुरा है ये वर्सेस व्हाट यू आर टीचिंग टुडे।
2: स्टॉप मीन्स अपनी थॉट्स को ब्रेक लगाना ही है,
1: फुल स्टॉप।
2: मेनी टाइम्स यू आर थिंकिंग लाइक दिस, ये शक्ति है गाड़ी की, जैसे ब्रेक लगती है। आप देखो गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है, इंजन ऑन है, एक्सेलरेटर पर हमने पैर रखा हुआ है, कंटिन्यूस एनर्जी कंज्यूम हो रही है,
1: इंजन इज रनिंग,
2: ना गाड़ी आगे जा रही है ना गाड़ी पीछे जा रही है, सिर्फ वहीं खड़े हुए चलती जा रही है,
1: इंजन गर्म हो जाते हैं,
2: यहाँ चलती जा रही है, चलती जा रही है, सोचता ही जा रहा है, सोचता
1: फ्यूल भी जाता है, शक्ति भी जाती है।
2: दैट इज सोल पावर। तो इमीडिएटली पैर कहाँ लगाना पड़ेगा?
1: ब्रेक पे,
2: शिफ्ट द ब्रेक, इवन इफ इट इज फोर्सफुल, स्टॉप स्टॉप।
1: इंजन स्विच ऑफ नहीं कर सकते?
2: वो तो मेडिटेशन में करेंगे ना, वो अभी वो हम करेंगे ना धीरे धीरे, कि कैसे जितना हम माइंड को साइलेंट पिक करते जाएंगे तब तो ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी अभी करनी है। नहीं स्टॉप हो रहा उस समय अपने माइंड को किसी और चीज अच्छी की तरफ लेकर जाए, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा सुने, सोच को बदले, उस सोच को चलने ना दे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि उसकी संख्या को तो क्या करते जाए कम कर, नहीं तो बैठे बैठे बैठे बैठे इतना घंटे चल गए।
1: उसको सत्ता ही नहीं देना है, तो उसको पावर ही नहीं देना है,
2: उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं देना, उसको खत्म करना है। एंड बार बार अगर हम लेट गो को एक मंत्र की तरह भी रिपीट करेंगे ना, ये भी तो थॉट है ना, आई एम गोइंग टू लेट गो, लेट गो. ये भी तो हम माइंड को क्या कर रहे हैं,
1: बोल सकते हैं,
2: लेट गो.
1: नाइस मात्रा.
2: रिलीज, लेट इट गो,
1: लेट गो.
2: इस बात को जाने दो. हम मन को सिखा रहे हैं, वो मानेगा. ये देखो, ये जो कॉन्वर्सेशन चलती है ना अंदर, ये एक ऑटोमेटिक मोड में चल रही है. हम कॉन्शियसली क्रिएट नहीं कर रहे, वो क्रिएट क्योंकि स्टोर्ड है, वो पास्ट मेमोरी से चल रही है. प्रेजेंट में हम ये थॉट को कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे, लेट इट गो. जैसे कोई और आपको बोलता
1: है, नॉट अ टॉय, नॉट अ टॉय, बच्चे को बोलता हूँ मैं, जैसे लेट इट गो,
2: रिलीज,
1: रिलीज,
2: एंड लिटरली विजुअलाइज इट,
1: गोइंग.
2: इसको विजुअलाइज करें, ये मेरी पास्ट की मेमोरी
1: डिलीट हो रही,
2: पास्ट का मेरा दर्द, पास्ट का मेरा अनुभव, टुडे आई लेट इट गो, इट विल वर्क.
1: बाद में ट्रैश में जाके भी डिलीट कर लेना,
2: सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट, इट्स गोन. परमात्मा से कनेक्ट करें एंड विजुअलाइज करें कि परमात्मा से वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर आ रही है, मुझ आत्मा से मेरे चारों तरफ ये जा रही है, और ये पावरफुल वाइब्रेशन, वो जो पुरानी मेमोरी, वो पुराना दर्द जो मैंने पकड़ के रखा है, इट्स आउट, इट विल वर्क. इसको कॉन्शियसली रोज करना है. इसको अगर हम रोज सुबह करें और जब वो बात याद आए उस क्षण तुरंत उसी टाइम करें.
1: अगर मैं ये थॉट को रोज सुबह याद करके लेट गो बोलता रहूं तो रोज याद रहेगी ना ये बात?
2: कुछ बातें बहुत पावरफुल मेमोरीज हैं.
1: ओके.
2: तो उनके ऊपर कॉन्शियसली वर्क करके उनको लेट गो करना है. यू नो, छोटी छोटी बातें नहीं होती, कुछ बड़ी बातें होती हैं कई बार जीवन की, जिसने हमारे ऊपर बहुत डीप प्रभाव डाला होता है, और जिनके बारे में हमें पता है कि मुझे सारा दिन में वो याद आ ही जाती है. तो उसको सुबह एक बार बुलाकर लेट गो करना इज फाइन. क्योंकि जब हम लेट गो कर रहे हैं, हम उस सारी बातों को नहीं याद करने वाले. I'm not going to sit and, you know, rewind that whole conversation of the past, उस दिन फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ. We're not going to do that. वो सब नहीं हम करने वाले. हम कहेंगे सुबह सिर्फ बैठेंगे और हम कहेंगे वो वाली मेमोरी, वो वाला दर्द, वो वाला अनुभव, लेट गो. I am a peaceful, powerful soul. It will work. एक ग्रूव में वो वाली थॉट्स चल रही है, अब हम एक नया ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं. नए ग्रूव क्रिएट करने के लिए कॉन्शियसली अटेंशन से थिंकिंग को दूसरी तरफ लेकर जाना है. अगर हम बार बार अपनी सोच के ऊपर इस तरह से वर्क करेंगे, पुरानी मेमोरीज डिलीट होती जाएंगी, नई रिकॉर्डिंग्स बनती जाएंगी. ये लेट गो की पावर आत्मा की शक्ति को कई कई कई गुना ज्यादा बढ़ाती है. इसमें हम पुरानी बातें भी लेकर आ सकते हैं वापस. कई बार बचपन में कुछ हुआ होता है, हम अभी तक नहीं भूले होते उस बात को. क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम उसको लेट गो नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो हमें रोज याद नहीं आती अभी, लेकिन पास्ट का कोई दर्द है जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड. कई बार बचपन में किसी के पेरेंट ने उनको, यू नो, फ्रेंड्स के सामने या फैमिली के सामने कुछ ऐसा कह दिया होता है विच दे फील वेरी ह्यूमिलेटेड. वो दर्द वो भूल नहीं पाते उस दिन का. किसी बच्चे को टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा बेंच पे खड़े हो जाओ, या कुछ ऐसी बात कह दी विच वॉज ए डीप डीप इंसल्ट. कई बार किसी बच्चे को अब्यूज या कोई ऐसी चीज अनुभव की है जीवन में, दे आर नॉट एबल टू डिलीट दैट मेमोरी. लेकिन अगर वो सब लेट गो नहीं किया, फिर ऑफकोर्स बड़े होकर जो जीवन में बातें तो आ ही रही हैं, कभी ऑफिस में कुछ हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है
1: जीवन का. सिस्टर, मैं एकदम लिविंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस मुझे है आप जो आप कह रहे हैं, एंड इट्स आई नो इट मोर देन एनी डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट. क्योंकि मेरी मदर को जब पाकिस्तान से भागना पड़ा इस पार्टीशन में, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना ज्वेलरी, अपने सामान, अपने रिश्ता सब, मतलब अटैचमेंट छोड़ के खाली हाथ भागो, तो सारा टाइम उनके ब्रेन में वहां से निकले. हम तो राज करते थे, वी वेर सो रिच, गाड़ी फोर्ड थी, इम्पोर्टेड ये था ये था. बाद में लोगों से शक्कर मांग के रोटी पे खाई. पुत्र मैंने, मैम हमारा तो पूरा दिन यही बोलती रही, तो क्या करूं, मेरे थॉट्स चलते रहते. रिश्तेदार इंडिया में, रिश्तेदार आए तो उन्होंने हमको वहां सर्वेंट क्वार्टर में सुला दिया, जगह नहीं है बोला, मतलब ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फाइनली द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, जो कि 70s 80s में जाके जो नहीं होने वाली चीज, ब्लड कैंसर हो गया। थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, पेन ले लेके
2: कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर तो शॉक, ये बॉडी इतनी स्ट्रांग, इतनी हेल्दी, और वही ब्लड कैंसर,
2: क्योंकि इतना सोचने से इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा ना, इतना कॉन्स्टेंटली अगर यू नो, ये एक ऑब्सेसिव थॉट बन जाती है।
1: ये देख के भी मुझे तो सीख लेना चाहिए।
2: एक्चुअली हम क्या सोचते हैं, समय के साथ वो बात अपने आप भूल जाएगी। ये दुनिया में भी कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर, मतलब समय बीतने दो, वो भूल जाएंगे।
1: होता तो है सिस्टर, ये
2: दर्द अगर रहा, दर्द अगर रहा नहीं भूलते हैं फिर। समय के साथ बात, अगर वो दर्द नहीं हील हुआ, तो जैसे आपने कहा ना कि इतने साल तक भी वो वही चीज कहते गए, तो समय तो बीत गया होगा ना उसके बाद कितने साल।
1: और फिर कुछ ऐसी चीज टीवी पे देख ली या फिर किसी और से सुन ली, तो फिर वापस वो
2: क्योंकि बहुत डोमिनेंट थॉट है ना वो। ऐसे एक्सपीरियंसेस को किसी के लिए वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है, यू नो, जैसे पार्टीशन, या आज के समय में जैसे हम देखते हैं कोई नेचुरल कैलामिटी,
1: चाइल्ड अब्यूज की भी तो आपने,
2: चाइल्ड अब्यूज, मैन मेड डिजास्टर, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक है, ऐसी चीजें भी आज हो रही हैं। ऐसी चीज को भी जो विटनेस कर लेता है उसके ऊपर बहुत डीप ट्रॉमा है वो। अब किसी के लिए वो चाहे इतनी बड़ी चीज हो, किसी के लिए छोटी सी बात भी ट्रॉमा होती है। कि एक सपोज किसी के लिए रिश्ते में रिजेक्शन, किसी के लिए एक ब्रोकन मैरिज, किसी के लिए मैरिज में अब्यूज, किसी के लिए इन लॉज से इंसल्ट, अलग अलग, अभी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल।
1: आई मीन लव करके शादी करने के बाद आदमी बोलता तो आई डोंट लव यू, आई लव द अदर पर्सन,
2: सो रिजेक्शन
1: कितना बैठ जाते हैं अंदर लेके डीप।
2: अब समय बीत जाएगा, 10 साल आगे बढ़ गए हम, 20 साल आगे बढ़ गए, लेकिन उस बात को अगर लेट को नहीं किया है, कॉन्शियसली उसको अपने चित से, अपनी एनर्जी फील्ड से नहीं निकाला, तब वो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर करेगी। इसलिए मेडिटेशन में ये बहुत पावरफुल टेक्निक है कि हम कॉन्शियसली बैठकर उस चीज को निकालें। यू नो, एक तो हम मेडिटेट कर रहे हैं कि आत्मा, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, परमात्मा से पावर, पर कॉन्शियसली उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को निकालना है मुझे, उस पर वर्क करना है, एंड वो इट विल गो। इट विल, कोई भी चीज को हम जाने के लिए कहेंगे, फाइनली इट विल गो, एंड वो करते करते वी विल फाइंड कि थोड़े दिन में।
1: इसमें एक बात पूछती थी, जाने के लिए कहेंगे और नहीं जानता है, क्योंकि हम लोग विलिंगली उसको नहीं जाना चाहते हैं। आर वी स्टार्ट एंजॉइंग दैट पेन?
2: इट्स नॉट दैट वी एंजॉइंग दैट पेन, वी फील दैट बीइंग इन पेन बिकॉज ऑफ दैट इज नेचुरल।
1: कभी कभी सेल्फ पिटी अच्छी भी लगने लगती है, आदत पड़ जाती है।
2: सेल्फ,
1: मेरे साथ जी वो हुआ था जी, मेरे साथ जी ऐसे हुआ था,
2: विक्टिम फीलिंग, विक्टिम फीलिंग, बेचारा मैं, आई गिव माई सेल्फ द राइट टू बी इन पेन।
1: जो मिला बोले, जो मिला बोले।
2: जितनी बार बोलेंगे, अगर उस इंसिडेंट को बार बार रिपीट करेंगे, तो जितनी बार रिपीट करेंगे तो ग्रूव और भी पक्का होता जाएगा। जो चीज सोचने से इतनी पक्की हो जाती है, वो बार बार वर्णन करने से कितनी पक्की हो जाएगी फिर।
1: ये जो लेटिंग गो वाली, उसके लिए भी विल चाहिए ना कि आई वॉन्ट टू लेट गो।
2: अगर नॉलेज मिल गई कि उससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है, अगर नॉलेज मिल गई कि आई हैव द पावर टू लेट गो।
1: नहीं, बट क्या होता है ना, माइंड ऐसा है, समझो मैं बोलूं आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ दिस थॉट, फिर लेकिन वो आदमी उससे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उसको माफ तो नहीं करूंगा, चलो मैं लेट गो कर दू, लेकिन
2: आई एम गोइंग टू लेट माई पास्ट मेक मी अ बेटर पर्सन।
1: आई अंडरस्टैंड दैट,
2: सो नाउ लेट मी टेक दैट,
1: आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ।
2: प्रैक्टिकल लाइफ,
1: लोग बोलते हैं मैं उसको माफ तो कर दूंगी लेकिन भूल नहीं पाऊंगी, इसका क्या मतलब?
2: क्योंकि मैंने मतलब उस दर्द को नहीं छोड़ा ना, आई हैव नॉट लेट गो ऑफ द पेन।
1: तो दैट मीन्स लेट गो के लिए भी एक विल बनानी पड़ेगी, समझ करनी पड़ेगी कि ये लेट गो क्यों करना है।
2: लेट गो करना है क्योंकि आपने अभी कहा कि आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ, तो प्रैक्टिकल प्रूफ दिखता है कि मन के दर्द का असर शरीर पर किस बीमारी के रूप में निकल कर आ जाता है। और ये भी कितनी सारी स्टडीज हैं और प्रैक्टिकल प्रूफ्स हैं कि मन की सही सोच ने बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया है। इट गिव्स द माइंड बॉडी कनेक्शन। तो जब हमें इतना कुछ अब समझ में आ रहा है, इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, इतना कुछ हमें हर जगह से मालूम पड़ रहा है, फिर भी हम उस पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे।
1: पता क्यों? क्योंकि आपके कहने के मुताबिक एक इतना गहरा ग्रूव और पैटर्न और हैबिट और उसको आप क्या कहती हैं, संस्कार बन गया है।
2: लेकिन मेडिटेशन वो टेक्निक है कि हम एक नया ग्रूव अब बनाना शुरू करेंगे। पुराना बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी हम हमेशा उसी में रहेंगे।
1: बट मुझे तो हमेशा यही सूट करता है, माई माइंड ऑलवेज आस्क फॉर रीजनिंग। अब रीजनिंग दे दी, ये हुआ, मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ, दुनिया के साथ हुआ, और थॉट के
2: साथ बॉडी पे असर पड़ रहा है,
1: के साथ बॉडी पे इतना बुरा असर पड़ता है कि एक थॉट आपने उस दिन बताया था ना, कितने 10,000 crore
2: सेल्स इन द ब्रेन कनेक्टेड टू 10,000, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी। तो कितने कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क तो कितना बड़ा है ना ये पूरा, तो कितना असर। और हम इतना आराम से बैठ के 15 मिनट ऐसे ही सोच लेंगे, अनअवेयर ही बैठे बैठे कितना सोच जाता है। हम कोई कॉन्शियसली बैठ के रीजन करके सोचने नहीं बैठते कि अब मैंने उनके बारे में सोचना है इतनी देर, उतना कॉन्शियसली रीजन करके
1: नहीं, नहीं सोचने की बात कर रहा हूँ,
2: उसकी रीजनिंग करनी है।
1: उसकी रीजनिंग होती है कि इसके बारे में मुझे क्यों नहीं सोचना है, क्या नहीं करना है, पर पास्ट इज पास्ट, लेट गो लेट गो लेट गो। ये चीज टेक्स सो मच ऑफ टाइम।
2: नेवर माइंड व्हाट डजंट टेक टाइम एंड अटेंशन, व्हाट डजंट टेक टाइम एंड अटेंशन।
1: हमको बड़े होते होते
2: कौन सी चीज बिना मेहनत के बनी है,
1: पेड़ पौधे भी
2: आज स्कूल का एग्जाम पास करने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक संस्कार बदलने में थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे? आज दिन और रात जागते हैं एक एग्जाम पास करने के लिए, एक संस्कार चेंज करने के लिए रोज 10 मिनट नहीं निकालेंगे अपने ऊपर वर्क करने के लिए?
1: और उस एग्जाम पास करके जो डिग्री मिलेगी, जो नौकरी मिलेगी, जहां पर ये संस्कार चेंज करेंगे तो उसके बिना भी उससे अच्छे लोग प्यार करेंगे, दे वुड वॉन्ट यू,
2: दे वुड वॉन्ट
1: बिकॉज यू विल बी सो लाइक्ड। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल चीज थॉट आया देखो आपसे ये, कि व्हेन यू आर लाइक्ड बाय पीपल, बाय योर फैमिली, बाय योर स्टाफ, पीपल अराउंड यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग।
2: That is what we had said, ना कि अगर थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे आपकी पूरी दुनिया बदलेगी, योर वर्ल्ड विल चेंज। तो हमें ये कॉन्शियसली लेट गो करना ही है। जैसे आपने कहा ना, एक ग्रूव बन जाता है, वो पुराने जमाने में वो वाले प्लेयर्स नहीं होते थे, तो उसके वो जो एक पिन होता था, वो पिन अटक जाती है, तो वो उसी लाइन को चेंज चेंज चेंज करके रिपीट करते जाएंगे
1: और उसका ग्रूव भी स्ट्रॉन्गर बनता जाता था।
2: ये यहाँ हो जाता है,
1: थोड़ा सा उसको टैप करके धक्का मारना
2: पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, लेकिन जब तक नहीं उठाया उसने वहीं अटके रहना। कितनी देर वो पिन अटके,
1: थोड़ा आगे करते,
2: थोड़ा
1: नॉन स्टॉप चलता था वहीं वहीं,
2: कितनी देर चल सकता है वहां पे जब तक उठाएंगे नहीं? इसका मतलब कितनी देर यहाँ चल सकता है जब तक उस ग्रूव से उठाएंगे नहीं, वो चलता रहेगा अपने आप। एंड अब जबकि समझ में आ जाता है कि आत्मा अपने संस्कार लेकर जाती है, तो फिर तो इस जीवन काल के बाद भी वो उसी ग्रूव पे चलेगा। वाई टुडे चिल्ड्रन आर एक्सपीरियंसिंग रिजेक्शन। अभी रिसेंटली इस 6 महीने के अंदर ही दिल्ली में हमारे पास 3 suicide cases, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 13। तीनों केस में इंसिडेंट क्या था, टीचर ने कुछ कह दिया, स्कूल के वॉशरूम में जाकर अपने को इमोलेट किया एक 13 साल की लड़की ने। देखा जाए टीचर ने ऐसा क्या इतना कहा होगा और इतना भी क्या कह दिया होगा जो ये किया, बिकॉज एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट उस दिन वो टीचर ने क्या कहा था,
1: रिएक्शन कर
2: वो बहुत पहले का
1: deep
2: कोई पास्ट, डीप रूटेड वूंड है, बहुत डीप, किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा, अनरिजॉल्व्ड इशू, वो पेन, वो वूंड, वो आत्मा कैरी कर रही थी और किसी ने आकर उस वूंड पे ऐसा कुछ ट्रिगर किया है कि आपका उस समय वो रिएक्शन हो गया।
1: जैसे बोलते बबल इतना बड़ा हो गया था, उस पिन लगा और फट गया।
2: बहुत इम्पोर्टेंट है लेट गो करना। ये सिर्फ हमारे इस जीवन में नहीं, ये हमारे साथ आगे चलता है, और आगे तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे पास वो संस्कार क्यों है। फिर हम कहेंगे आई ऑलवेज गेट रिजेक्टेड, मुझे ही सब रिजेक्ट करते हैं, आई एम नॉट लव्ड बाय एनीबडी। कई लोग कहते हैं आई एम नॉट वांटेड बाय एनीबडी, नोबडी वांट्स मी, कोई कहते हैं नोबडी रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि डीप ग्रूव उसी पे अटक गया है वो पिन। उसी पिन पर अटकने से अब उस हर एक्सपीरियंस में वो वही वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कहा, नोबडी रिस्पेक्ट्स मी, थोड़ा सा किसी ने कुछ लाइन कह दी, नोबडी लव्स मी, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आते हैं उनके मन में, क्योंकि वो पिन वहां अटका हुआ है। तो कॉन्शियसली लेट गो, ये करना ही है।
1: चलिए फिर एक मेडिटेशन करते हैं।
2: लेट्स सिट बैक कंफर्टेबली, आई द बींग पावरफुल शक्तिशाली आत्मा, मेरी हर थॉट मेरी चॉइस है, चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ था, बात चाहे कितनी भी बड़ी थी, दर्द उस समय जितना भी गहरा था, आई द सोल हैव द पावर टू डिलीट, release the pain, let go of the experience, today isi shan us baat ko, us soch ko, us dard ko let go, it's leaving me and going away, dekhe us negative energy ko, mujhse bahar nikal kar, it's out, it's over, past, full stop. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much.
2: Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you.
3: In letting go of the past, we are freeing ourselves of pain. The more anger towards the past we carry in our heart, the less capable we are of loving in the present. Often we are thinking about the past, which could be many years old or just a few minutes. Our thoughts create our present response and karma, which then influence our future destiny. So, holding on to our past influences our future. When the inner conversation of the past repeats on the mind, consciously create new thoughts. Let go, let go, release, let go. Visualize the past impression, leaving the subconscious mind. This can be done daily and repeatedly when the mind relives the past. Like we teach a child, we need to teach our mind right thinking. Past experiences are recorded as, why did this happen to me? How can I ever be happy? My pain is my destiny. During meditation, connect to God, the ocean of knowledge and love, and replace these impressions with, I am a pure, powerful soul. God loves me. I have the power to forgive. I love every soul.
4: If you wish to discuss your problem
2: or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: एक बहुत प्यारा इंसान तलत महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इंसान तो मैं क्या बताऊँ कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो तलत साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आज तो कॉलेज की छुट्टी है, चलो इसका फायदा उठाती हूँ।
1: क्यों ना पुराने स्तंभ जी के पास चलकर एक नई कहानी सुन ली जाए।

0: वो रहे पुराना स्तंभ जी, पर ये क्या, ये उनके पीछे ये दो लड़के क्या कर रहे हैं? चलकर देखना पड़ेगा। हेलो हेलो, सुनिए, अरे अरे आप लोग, अरे आप लोग जा कहाँ रहे हैं?
1: हेलो मनु, कैसी हो?
0: मैं तो ठीक हूँ, पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने बुलाया तो चले गए।
1: क्या बताऊँ मनु, बस यही मेरा सबसे बड़ा दुख है।
0: लेकिन हुआ क्या पुराने स्तंभ जी?
1: ये लोग मेरे ऊपर अपना नाम लिख रहे थे, और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार होता है। देखो, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी कलाकारी मिलेगी तुम्हें।
0: अरे लेकिन कलाकारी ही करनी है तो ड्राइंग पेपर पे लेकर क्यों नहीं करते? हमारी ऐतिहासिक धरोहर को क्यों खराब करते हैं?
1: शायद उन्हें ये स्मरण ही नहीं होता कि जरा सा भी मुझ पे या किसी भी ऐतिहासिक धरोहर पर कुछ बनाना लिखना उसकी खूबसूरती को नष्ट करता है।
0: आई एम वेरी सॉरी पुराना स्तंभ जी, हम लोग आपकी बिल्कुल कद्र नहीं करते।
1: नहीं मनो, मैं अभी भी यही आशा करता हूँ कि लोग इस गलती को करना बंद करेंगे और ये समझेंगे कि ये उनके अपने प्यारे शहर पुणे की धरोहर है। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की कहानी सुनाता हूँ।
0: शिवाजी महाराज के पुत्र? हाँ हाँ जरूर।
1: तो सुनो,

0: संभाजी छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। संभाजी के जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ। संभाजी के जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही उनकी माता सईबाई का देहांत हो गया और राजे मात्र सुख से वंचित हो गए। परंतु जीजाऊ ने इस अभाव की पूर्ति की जिस जीजाऊ ने शिवाजी को तैयार किया, उन्हीं जीजाऊ ने संभाजी को भी संस्कार दिए।
1: अच्छा,
0: संभाजी की तारीफ में लोग कहते हैं कि वे शूर वीरता एवं सुंदरता की साक्षात प्रतिमा थे। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर संभाजी का प्रभुत्व था।
1: इतनी सारी भाषाओं पर?
0: लेकिन जिस तेजी से उन्होंने लेखनी चलाई, उसी तेजी से उन्होंने तलवार भी चलाई। मराठा साम्राज्य को 1680 से 1689 ईस्वी तक संभाला। 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी सूर्याबाई ने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजा राम का अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ में राज्याभिषेक कर दिया।
1: अच्छा,
0: परंतु इसके बाद भी संभाजी ने मराठा सेनापति हमीर राव मोहिते को अपने पक्ष में करके आक्रमण कर दिया। उन्होंने सूर्याबाई एवं राजा राम को कैद कर लिया और रायगढ़ पर अधिकार करके 30 जुलाई 1680 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया।

0: संभाजी ने नीलो पंत को अपना पेशवा बनाया और उन्होंने 1689 ईस्वी तक अपना शासन किया। कालांतर में संभाजी के विरुद्ध राजा राम, सूर्याबाई और अन्नाजी दत्ता ने एक संगठन बना लिया।
1: अच्छा,
0: परंतु संभाजी ने इस संघ को बर्बरता पूर्वक कुचलते हुए सौतेली माँ, सूर्यबाई और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मराठा सरदारों की हत्या करवा दी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देने के कारण संभाजी को मुगल सेनाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा।
1: अच्छा,
0: और लगभग 9 वर्षों तक वह निरंतर औरंगजेब की विशाल सेनाओं का सफलतापूर्वक सामना करते रहे।
1: इतने सालों तक?
0: बिल्कुल। संभाजी ने साहस और निडरता के साथ औरंगजेब की 8 लाख सेना का सामना किया और अधिकांश मुगल सरदारों को युद्ध में पराजित कर उन्हें भागने के लिए विवश कर दिया।
1: अच्छा,
0: और 24 से 32

0: वर्ष की आयु तक संभाजी ने मुगलों से लड़ाई की और एक बार भी वे पराजित नहीं हुए।
1: एक बार भी पराजित नहीं हुए, क्या बात है।
0: इसीलिए औरंगजेब दीर्घकाल तक महाराष्ट्र में युद्ध करता रहा, क्योंकि औरंगजेब का ध्यान संपूर्ण रीति यही लगा रहा। इस कारणवश संपूर्ण उत्तर हिंदुस्तान मुक्त रहा। यदि संभाजी ने औरंगजेब के साथ समझौता किया होता अथवा उसका अधिपत्य स्वीकार किया होता तो वह 2-3 वर्षों में ही पुनः उत्तर हिंदुस्तान में कोई न कोई कार्यवाही अवश्य ही करता।
1: अच्छा,
0: परंतु संभाजी राजे के संघर्ष के कारण औरंगजेब को दक्षिण भारत में ही रुकना पड़ा। इससे उत्तर में बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान में हिंदुओं की नई सत्ताएं स्थापित होकर हिंदू समाज को सुरक्षा मिली।
1: अरे वाह।
0: मराठों और अंग्रेजों में 1684 में जो समझौता हुआ उसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि अंग्रेजों को मेरे राज्य में दास बनाने अथवा ईसाई धर्म में कलंकित करने हेतु कोई का ग्रह करने की आज्ञा नहीं मिलेगी।
1: अच्छा,
0: अब मैं आपको पुर्तगालियों से हुई मुठभेड़ के बारे में बताता हूँ मनु।
1: हाँ हाँ।
0: संभाजी ने किसी के आगे भी हार नहीं मानी, बल्कि सभी साम्राज्यों से लोहा लिया। फोंडा का गढ़ पुर्तगाली मराठा सीमा पर था।
1: अच्छा।
0: गोवा की पुर्तगाली सत्ता को उकसाने तथा उस सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए घेरा देने का प्रयास पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। उसमें फोंडागढ़ महत्वपूर्ण था। उसका नाम था मर्दनगढ़।
1: अच्छा।
0: पुर्तगालियों ने मर्दनगढ़ के तट पर तोपों का वर्षाव चालू रखा। तट में और एक दरार पड़ी।
1: और वो क्या?
0: जब पुर्तगालियों ने घाटी से अंदर प्रवेश करने का षड्यंत्र रचा, उस समय संभाजी महाराज राजापुर में थे।
1: ओह।
0: और उनका ध्यान इस लड़ाई पर केंद्रित था। महाराज ने फोंडा के मोर्चे पर स्वयं उपस्थित रहने का निश्चय किया। वे शीघ्रता से फोंडा पहुंचे।
1: और फिर क्या हुआ?
0: उनका हठ और दृढ़ इच्छा इतनी दुर्दम्य थी कि उन्होंने 800 सवारों की सुरक्षा में 600 पैदल सैनिकों को भली भांति किले में पहुंचाया। पुर्तगाली उनके धैर्य और निडर मानसिकता को देखते ही रह गए। उन्हें उन पर आक्रमण करने का भान भी नहीं रहा। संभाजी महाराज युद्ध में सम्मिलित हुए, यह देखते ही वायसराय ने अपने मन में ऐसा पक्का निश्चय किया कि यह युद्ध उसे बहुत महंगा पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: महाराज की उपस्थिति देखकर मराठों को होश आया। किलेदार येसाजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का योद्धा था।
1: ओ।
0: अब वह वृद्ध हो चुका था, परंतु उसमें युवक को हटाने की शूरता, धीरता एवं सुदृढ़ता थी। इस वृद्ध युवक ने पराक्रम की पराकाष्ठा की। उसने अपने लड़के कृष्णा जी के साथ चुनिंदे सिपाहियों को साथ लेकर गढ़ के बाहर जाकर पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी।
1: अच्छा, पुर्तगालियों से लड़ाई की?
0: जिनके साथ वे लड़े उनको उन्होंने पूरी तरह पराजित किया। परंतु इस मुठभेड़ में येसाजी और उनके सुपुत्र कृष्णा जी को भयानक चोटें लगी। जब पुर्तगालियों ने वहां से लौटना शुरू किया तो मराठों की उपस्थिति में उन्हें तोप और बंदूकों को पीछे छोड़ वहां से पलायन करना पड़ा।
1: अच्छा।
0: छत्रपति संभाजी राजा की मृत्यु तक पुर्तगाली एवं छत्रपति संभाजी दोनों में युद्ध चलता ही रहा। तब तक मराठों ने पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहने वाला प्रदेश जीत लिया था। उसका बहुत सांझ मराठों के नियंत्रण में था। वीर संभाजी को मैं शत शत नमन करता हूँ।
1: मैं भी उनको नमन करती हूँ। जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने पुणे के लिए दिया, मुझे नहीं लगता कोई भूल सकता है।
0: तुमने बिल्कुल सही कहा मनु।
1: पता है पुराना स्तंभ जी, मैं सोच रही थी क्या मैं भी ऐसी वीर हो सकती हूँ। कभी

0: मुझे, मैं ना सबसे प्यार से बात करती हूँ और कभी गुस्सा नहीं करती।
1: बस यही तो तुम्हारी वीरता है, इसमें कायम रहना।
0: यस, यानी मैं भी वीर हूँ। अच्छा, अब जाने का समय हो गया है, पर आपकी बात मैं याद रखूंगी।
1: चलो फिर तो आज तुमको भी थैंक यू।
0: थैंक यू पुराना स्तंभ जी, और बाय बाय।

0: ऐकलत का
1: गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। ये कृष्ण भजन जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसको मोहम्मद रफी ने गाया, मोहम्मद शकील ने लिखा और नौशाद अली ने बनाया, ये कृष्ण भजन आज भी हर पवित्र जगह पर, हर घरों में ये दोहराया जाता है, इसलिए कि इसमें वो जज्बात, वो कृष्ण भक्ति मौजूद है और ये राग मालकोस पर आधारित है। जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने तमाम साजिंदों से ये कहा कि कल ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है और कृष्ण भजन है, सब लोग पाक साफ और पवित्र होके आना। उसी तरह सब लोग हाजिर हुए और गाना साहब उसी पाकीजगी से, उसी पवित्रता से ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। और एक साहब थे लल्लू भाई, जो आते थे लोगों को पेमेंट करने के लिए, उनके ऊपर कैफियत तारी हो गई। आखिर में वो रक्स कर रहे हैं, ये कृष्णा कृष्णा ये कहते जा रहे हैं, और साहब गाना खत्म हो गया, रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो उसी कैफियत में थे, वे खुद हो गए थे, उनको थामना, उनको संभालना मुश्किल हो गया था। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये वो राग मालकोस की खूबी थी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी कहा कि नौशाद साहब ये राग मालकोस की खूबी है, देखिए इसमें लल्लू भाई के ऊपर जो कैफियत तारी हुई, तो ये इसमें न मेरा कमाल है। मैंने कहा और मेरा भी कमाल नहीं, ये राग मालकोस का कमाल है। ये वो बुनियादी राग है जो हमारे ग्रंथों में हमारे भगवान शिव की रचना है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दुल्हन खूबसूरत है, कितना यानी कि बाय गॉड कितना हसी मुहूर्त है, सेहरे की जरूरत है, दूल्हा मुझे बनाओ यारो आओ, लेकिन ठहरो।

0: अब मैं लता की तारीफ करूं? ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है।
1: हमें वो पुराने दिन, जैसे जैसे लता ने कहा कि पुराने दिन याद आते हैं कि हम जब ट्रेन में सफर करते थे, ये भी चली जा रही थी और मैं भी चला जा रहा था, न ये हमें पहचाने न हम इन्हें पहचाने, ये हमें देख रही थी मैं भी इनको देख रहा था। और फिर वो उतरी एक जगह, बॉम्बे टॉकीज जाना था तो ट्रेन से उतरी तो मैं भी वहीं उतरा क्योंकि हमारे भाई की कंपनी थी भाई, और वहां पहली मर्तबा लता जी गई तो वो मुझे देख रही, मैं इनको देख रहा हूँ। वो तांगे में बैठी, मैं भी तांगे में बैठा तो मेरे को यूं देखती है। अब वो तांगा चला तो मैं भी

वाला साथ में, दोनों तांगे एक जगह पहुंचे बॉम्बेट होगी, फिर वो उतरी तो फिर मुझे ही देख रही है, मुझे कौन आदमी है वो समझ में फॉलो कर रहा हूँ। मैं डर गया, मैंने कहा मैं भी सीधा अली सीधे जाके वहां खेमचंद प्रकाश जी जो हमारे गुरु जी थे वहां जाके बैठ गई, तो कुछ बोला होगा कि देखिए ये तब से चले आ रहे पीछे कौन है, तो खेमराज जी ने बोला करे बेटी ये किशोर है अशोक का छोटा भाई, तो वहां हम लोगों की मुलाकात हुई।

देखे ना मैम साहब, बराबर पहुंचा दिया ना।

संगीत की दुनिया के साथ अब मेरा रिश्ता अपने 50 साल पूरे कर रहा है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूं तो कई यादें उभर रही हैं। कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं, खास तौर पे याद आ रहे हैं वो लोग जिनके साथ मैंने गाया, जिन्हें गाते हुए सुना। ऐसे सुरीले लोगों को मैं अपने सुरों की श्रद्धांजलि के अलावा दे ही कह सकती हूं। मैं ये साबित नहीं करना चाहती कि मैं इन महान कलाकारों से अच्छा गा सकती हूं, बल्कि ये कहूंगी कि इन 50 सालों में मैंने उनसे जो सीखा है उसे ही पेश करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूं। बचपन में या तो मैं अपने पिताजी को गाते हुए सुना करती थी, या मुझे पसंद था सहगल साहब का गाना। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनसे मिलूं, बातें करूं, उनका गाना सुनूं और अपना गाना सुनाऊं। ये सपना सपना ही रह गया, पर उनके सुरों का असर 50 सालों से मेरे संगीत के साथ साये की तरह चल रहा है।

0: जय लाला जी।
1: शाबाश प्यारे, आज तो जी खुश कर दिया तेने, बड़े मौके से माल लाया। बोल क्या दूं?
2: मजूरी।
1: मजूरी? पहले मजूरी एक पंजा। क्या कम है? तू भी क्या याद करेगा, ये रहा दस्सा। अबे तो क्या घर लुटा दूं? बोल क्या चाहिए तुझे?
2: इक्का।
1: एक रुपया?
2: पूरा एक। मेरी रोजी हलाल की खाए हराम की छोड़े, माँ कहती है।
1: अरे जा बुद्धू, जैसा तू है वैसी तेरी माँ है। आजकल तो लोग काम करते हैं कम, दाम मांगते हैं ज्यादा,
2: इसीलिए दुखी हैं जैसे तुम।
1: और तेरे जैसे मूर्ख काम करते हैं ज्यादा, दाम मांगते हैं कम,
2: इसीलिए सुखी हैं जैसे हम।
1: अरे चल चल, देखे सुखी की सूरत।
0: लाला जी मेरी सूरत पे ना जानना, यह है पते की बात। ये देखो, ये रही रोजी। बोलो हाँ। रोजी रोज कमाई रोज खाई, लेकिन ये फालतू माल जी का जंजाल, जो कमाए सो पछताए, जो खाए सो मर जाए, बाकी रहे हाय हाय। लेकिन हाय हाय हाय हाय।
1: अब क्या दीवाने, बड़ा मेडल लगाया फिरता है और ऊपर चपाते की बात कर।

0: 15, 16, 17
1: इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बनके

जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबियत हित की जाए।

0: वाली हो लेकिन मोटी नहीं चलेगी,
1: दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे वाली हो, हर दामाद बना कर रखे मुझको जिसका

0: बड़े हुए संसार में हमसे प्यार करे ना कोई, मेरी भी कोई धन्नो हो दुख सुख मेरा बांटे जो।
1: धन्नो
0: हाँ धन्नो, मेरी भी कोई धन्नो हो दुख सुख मेरा बांटे जो, धो दे एक कहारे के जो अगले पिछले पाप फिलफिला तू।

करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।